क्या है बात, अरे एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, छे साथी खेल खेले छूट जाए साथ, खेलो खेलो और खेलो।

0: गई हो गई हो गई गई गई। नाम है जिसका राखी जिसने की चालाकी रह गई थी नहीं बाकी।
1: पावसाचे थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
0: अश्विनी ये
1: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
1: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा
3: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका effect कितना लंबा जाएगा। तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति शाह इन पीछे की दर्शक का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम ज्ञान की कुछ बातें ज्ञान के तेजों से छुड़ा कर लाई हूँ। आज हम चर्चा करते हैं नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप। तो आज का हमारा विषय है नारी के भिन्न भिन्न रूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं आदिकालीन में नारी जो थी उनको देवी स्वरूप में दिखाया गया है। वह पवित्रता सुख शांति समृद्धि से भरपूर है, लेकिन उससे संपन्न होते हुए भी अनासक्त और इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में है। हर प्रकार से बाहरी तथा आंतरिक सुंदरता से सुसज्जित संतुष्ट सुरक्षित और निश्चिंत है। उस समय की सुंदरता का आधार जो है आत्मिक स्थिति और आत्मिक सशक्तिकरण है। वहाँ हर आत्मा संपूर्ण पवित्र देवभाव से मुक्त तथा अपने मूल स्वरूप की स्थिति में रहती है और देव ही योग बल से प्राप्त होने के कारण कंचन समान पवित्र होती है। इस काल में नारी और नर को समान भाव से दिखा गया है। इसी कालचक्र का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। नारी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री राधा श्री सीता आदि देवियों के रूप में आज भी दुनिया में याद किया जाता है। आदिकालीन नारी की स्वरूपों की पूजा होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मध्यकालीन की जो नारी थी इनका क्या स्वरूप है। इस समय नारी जो है अपने जीवन के मूल सत्य को भूलने लगती है और देवभान का जो है संस्कार इमर्ज हो जाता है, यानी कि मूल जो उनकी बातें हैं यानी कि आत्मा को वो भूलने लगती है और देह के जो संस्कार है वो इमर्ज होने लगते हैं। फलस्वरूप उसकी आंतरिक जो शक्तियाँ छिन्न होने लगती है। एक तरफ जहाँ आदि काल में नारी को पूज्य माना जाता था, मध्य काल में उसे भोग की वस्तु समझा जाने लगा। नारी के प्रति लोगों की सोच दृष्टि प्रीति बदलने लगी। अनेक रूढ़िवादी प्रथाएं बनी जिन्होंने नारी को बहुत ही कमजोर बना दिया। उसका जो है स्वाभिमान नीचे गिरने लगा। उसे सत्य बोलने भी डर लगने लगा। हर समय अपनी सुरक्षा की चिंता रहने लगी और वह स्वयं को पुरुषों से कम समझने लगी और स्वयं को वो पुरुषों पर निर्भर समझने लगी। परंतु यह भी सत्य है कि नारी कोई शरीर का नाम नहीं है, नारी मानव शक्ति। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप। समाज को इतनी विकट परिस्थितियों में भी नारी ने उसकी आंतरिक शक्तियों को लोप नहीं होने दिया है। समय समय पर नारियां जो है नारियों के द्वारा अनेक चमत्कारी चरित्र दिखाए गए हैं। आत्मविश्वास की धनी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की कूटनीति के खिलाफ जमकर लोहा लिया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। हंसते हंसते वीरगति की प्राप्त किया। ऐसे ही वीरता की धनी रानी दुर्गावती ने दो बार शत्रु की विशाल सेना को धूल चटा दी। रानी कर्णावती को उसकी वीरता के कारण चित्तौड़ की क्वीन कहा जाता है। ऐसी अनेक वीरांगनाओं से इतिहास भरा हुआ है जिन्होंने नारी के अंदर के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष किया है। राजमाता जीजाबाई ने अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पुत्र को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। मदर टेरेसा का हृदय दया और करुणा से भरा था। आपने अपना सारा जीवन गरीबों को खाना खिलाते तथा बेघर लोगों की मदद में लगा दिया। कोढ़ और प्लेग से पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा की। समाज कल्याण की भावना से भरपूर सावित्रीबाई फुले ने आजीवन महिला शिक्षा का प्रचार किया। इन सभी ने अपने अंदर छिपे देश प्रेम, समाज सुधार, करुणा, दया जैसे भावों को प्रत्यक्ष किया और समाज के सामने उदाहरण मुक्त बनी। रानी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी थी जिसकी सुंदरता पर मोहित होकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को मारकर पद्मावती को जबरदस्ती अपना बनाना चाहा, लेकिन रानी पद्मावती अनेक नारियों के साथ जलते हवन कुंड में स्वाहा हो गई, अर्थात जौहर किया। अपने सतीत्व की रक्षा की पर पुरुष की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का त्याग कर दे, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद। मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। महाराज का विषय है नारी के भिन्न भिन्न रूप। तो आज हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी अनुगामी मीराबाई को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपनी अगाध भक्ति से भगवान को भी वश में कर लिया, अपने स्नेह और भावना के बंधन में बांध लिया, बिना कुछ सोचे पल में झूठी दुनिया और झूठे देह के नातों से बुद्धि निकाल परमात्मा में मन लगाया और भगवान की मदद के अनेक अनुभव किए। नारी के अंदर छिपे ईश्वर प्रेम, दृढ़ विश्वास और त्याग भावना जैसे गुणों को अपने जीवन से उन्होंने प्रत्यक्ष किया। नारी का आज की आधुनिक रूप है, जैसे वर्तमान समय नारी का जो बाह्य रूप है उससे सशक्त बनी है, काफी हद तक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी समझा है। उसने अनेक क्षेत्रों में जो उपलब्धियां प्राप्त की है वाकई तारीफ के काबिल है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, सानिया नेहवाल ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति और वर्तमान समय भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो जीवन के अनेक संघर्षों के बाद 2022 में इस मुकाम पर पहुंची। देश विदेश की ऐसी अनेक नारियां हमारे सामने है जिन्होंने नारी के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष किया है। नारी अगर ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है नारी के भिन्न भिन्न रूप। आज हम देखते हैं कि यह भी सत्य है कि समाज ने एक बहुत बड़े नारी वर्ग को अपने मूल सत्य का ज्ञान नहीं है, अपनी आंतरिक शक्तियों के स्रोत परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। यह वर्ग अपने को दैहिक सत्ता समझ देह अभिमान के प्रति इनकी मूर्ति में लगा है, अपना अनमोल समय शक्ति संकल्प को झूठ की प्राप्ति में व्यर्थ गवा रहा है। अपने सत्य आत्मिक स्वरूप से बेखबर नारी अपने को बाह्य रूप से आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अतः जरूरत है कि आज नारी के स्वाभिमान को जगाया जाए, उसके मूल रूप आदर्श रूप और पूज्य स्वरूप का उसे बोध कराया जाए, ताकि वह परमात्मा की जो भी उनके संबंध है परमात्मा से बुद्धि जोड़कर अपने महान लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपने आदिकालीन पूज्य जो उनके स्वरूप है उसको प्राप्त कर सके। निसंदेह

نزدیکتر به محاکمه های ایشوری بشه بیده ایس دیشانی قری کر رہا ہے یہاں کی شکچھا کا مکھ اُدیش ناری کے اندر کی سوابھیمان کو جگانا انہیں شریشٹھ سنسکاروں کا سنچن کرنا اور اسے آنترک روپ سے سشکت کرنا ہے یہاں دی جانے والی شکچھا के द्वारा अलग अलग स्वमानों का अभ्यास कराया जाता है जिससे सोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होता है। राजयोग के अभ्यास द्वारा जो नारी के मूल सत्य है उसे परिचित कराया जाता है। नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारियों ने कायम की है। लाखों भाई बहने समानता के भाव को लेकर खुद को सशक्त बनाने के लिए यहाँ निरंतर राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार। ॐ शान्तिः।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। रिश्तों को तलाशते हम एक नए रूप में देखते आ रहे हैं इस श्रृंखला में, और अभी तक जो हमने बातचीत की है उसमें कई रिश्तों को एक नए रूप में देखकर ऐसे लगता है कि अभी तक हम जिस स्वरूप को देख रहे थे उससे कहीं भिन्न है, और जैसे ही एक नजर देखने का अंदाज बदला जिंदगी बहुत मधुर हो गई। पति पत्नी का रिश्ता सबसे सुदृढ़, सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत रिश्ता, लेकिन आज उस रिश्ते में बहुत सी दरारें नजर आती हैं। किस तरह से विश्वास को कायम रख सकते हैं हम अपने इस रिश्ते में? विश्वास है क्या, उसके सही मायने हमने जाने थे अपनी पिछली कड़ी में। एक बार फिर उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हर बार की तरह बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सत्य शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो आपने कहा था कि विश्वास करना या ट्रस्ट करना मेरा अपना अपनी फैकल्टी है, मैं चाहती हूँ तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, अदरवाइज मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही कि मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है। और उसके साथ भी आपने एक और बात ये कही थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं कह रही हूँ, तो मुझे लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको थोड़ा सा और एक बार हम रिवाइज करते हैं।
1: इसका एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखे कि सारा दिन में कितनी बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सोच कुछ और रहे हैं लेकिन बोलते कुछ और है, या जिसको हम नाम देंगे लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है। यू नो, नॉर्मली वी विल हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट, वी आर वेरी गुड एट जस्टिफिकेशन फॉर आर बिहेवियर, एंड दैट्स व्हाई वी सेड के नोबडी इज रॉन्ग। जो हमने बात की थी कि कभी भी जब हम डील, यू नो, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है उस गलत को भी सही बोलने के लिए। तो हम जो भी इस तरह से अपने मन और वचन में जब डिसइंटीग्रिटी लाते हैं, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन है। मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं उस तरह से नहीं कह पा रही हूँ, और उसके लिए मैं जस्टिफिकेशन ये दे देती हूँ, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो फिर मैं आपके लिए सोचना शुरू करती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगेगा, और मैं अपनी थॉट को चेंज करके आपके अच्छे लगने के अनुसार बोलना शुरू करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, विच इज फाइन, जिसको हम शायद वर्ड्स दे देंगे कि दिस इज केयर और दिस इज कंसर्न, बट इट इज चीटिंग, आई एम लाइंग टू यू, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, इट्स प्लेन वर्ड्स, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, चाहे हम उसको कितना भी पॉलिश करने की कोशिश करें कि ये आपके अच्छे के लिए था या आपको, मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, और ये मुझे पता है कि अभी मैं झूठ बोल रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट विद

0: myself. I am not saying what I'm thinking. Ab jab aap mujhse kuch bolenge jo mujhe acha lag raha hai, lekin kahin na kahin mere man mein doubt aayega ki ye mujhe sunne mein to acha lag raha hai, but kya ye sachmuch feel aise kar rahe hain? Kya sachmuch sach yahi hai? Aur tab mujhe doubt aane lagega ki aap jhoot bol rahe hain. And then how can I trust you? Kyunki ek sankalp bhi ye aana ki aap jhoot bol rahe hain is not a trust, it's a doubt. कि आप झूठ बोल रहे हैं. एंड देन फिर हमें बार बार वेरीफाई करवाना पड़ता है कि आप सच बोल रहे हैं. क्या सचमुच यही बात
1: आप झूठ बोलते हैं? नॉट राइट.
0: कोई और बात नहीं है? पूरी बात यही थी? छुपाया तो नहीं है? सो मच डाउट. ट्रस्ट ये होना चाहिए कि इवन इफ आई फील कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार कह दिया ऐसा है, एंड इफ आई क्लेम दैट आई ट्रस्ट यू, देन ऐसा है. तब तक भले मैं अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट से चल रही हूँ कि ऐसा है या नहीं, लेकिन आपने अगर एक बार कह दिया ऐसा है, एंड इफ आई से आई ट्रस्ट यू, देन ऐसा है, बिकॉज आई एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग. लेकिन आई कैन नॉट डू दैट क्योंकि आई एम नॉट डूइंग दैट. तो जिस तरह मेरा अंदर का मैकेनिज्म वर्क करता है, ऑब्वियसली मैं औरों को भी उसी की परछाई में देखती हूँ कि सबका मैकेनिज्म ऐसे ही वर्क करता है.
1: इस पे और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों से बीच में एक मेरे को इससे सवाल उपज रहा है कि जब आपने हमने ये कहा कि मैं अगर आपको ये बात कह दूं जो मेरे दिल में है, आप हर्ट हो जाएंगे, तो क्या मैं अपना वो थॉट कन्वर्ट कर सकती हूँ?
0: सी, हर्ट क्या करता है? अगेन हमने देखा कि एनर्जी है, थॉट एनर्जी भी, वर्ड एनर्जी भी, दोनों साउंड एनर्जी, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं. अब हमारी थॉट एनर्जी तो हर्ट वाली है, क्योंकि मेरे मन में संकल्प तो ऐसा कोई है जो आपको हर्ट करने वाला है. अब आई एम सेइंग कि मैं बोल को चेंज कर देती हूँ ताकि आपको हर्ट नहीं होगा.
1: तो क्या मैं संकल्प को चेंज कर सकती?
0: संकल्प को चेंज करना है. किसके संकल्प को चेंज करना? अपने. कि हर्ट वाले संकल्प को हटाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो ही वाली बात आ गई ना, थॉट को छोड़, वर्ड को छोड़, एनर्जी ट्रैवल कर रही है. ऊपर से तो हम बहुत अच्छे हैं, रिश्ते फिर भी दूर होते जा रहे हैं. रिश्तों में वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सोचा कि मैंने बोला तो वही जो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने सोचा वो नहीं जो उनको अच्छा लगेगा. तो अगर सच में औरों के बारे में सोचना चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा ही सोचे, देन थिंक प्योर, नॉट ओनली टॉक पॉजिटिव. Not only think positive, think pure, absolute purity. कि अपवित्रता का अंश भी जब संकल्प से हट जाएगा, तब वो thought, word, action में integrity आ जाएगी. तो अगर कहीं disintegrity आ रही है, तो उसको ये झूठ बोल के उसको finish नहीं कर दो, क्योंकि हमने double नुकसान किया. जो hurt वाली energy थी वो तो पहुंची गई, वो पहले पहुंची, फिर उसके बाद झूठ बोला, तो भले दूसरे को शब्द अच्छे सुनाई दिए, पर दूसरे को हमारी वाइब्स आ जाती है डिसइंटेग्रिटी की, कि ये सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे. जैसे हमें औरों की वाइब्स आती है, तो औरों को भी हमारी वाइब्स आती है, चाहे हम कितनी भी अच्छी तरह से उसको बोल लें. तो डबल नुकसान हुआ ना, एक पेनफुल एनर्जी भेजी, दूसरा डिसइंटेग्रिटी अपनी दिखाई, तो वो हमारे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? एक है कि हम औरों पे ट्रस्ट करें, दूसरा है हम विश्वास के पात्र कैसे बने कि दूसरे हमारे पे ट्रस्ट करें. जितना हमारे अंदर इंटेग्रिटी होगी, दोनों काम हो जाएंगे. एवरीथिंग कम्स बैक टू माई सेल्फ एंड नॉट टू द वर्ल्ड.
1: इनफैक्ट वंस आई स्टार्ट ट्रस्टिंग समबडी, द अदर पर्सन विल एक्चुअली केयर फॉर दैट ट्रस्ट.
0: इट बिकम्स वेरी वैल्यूएबल. विश्वास बहुत वैल्यूएबल चीज है. दूसरा कुछ ऐसा गलत करना ही नहीं चाहेगा जिससे उसके विश्वास पर कोई परिवर्तन आए. तो वो उल्टा आप करेंगे अगर कोई अभी वो विश्वास के लायक भी नहीं है. परमात्मा और आत्मा का संबंध, शिव बाबा इस समय कलयुग के अंतिम समय पर आते हैं. हम आत्माएं बिल्कुल पांच विकारों से पूरी घिरी हुई है, टोटली पवित्रता का अंश भी नहीं है, सुख शांति दिखाई नहीं दे रही है हमारे अंदर. परमात्मा आके हम पे संपूर्ण विश्वास करते हैं कि तुम आत्माएं ही वो 100% जो चार्ज होनी है उस तक पहुंचेंगी. जब शिव बाबा सबसे पहली बात ये हमें कहते हैं कि यू वर दैट 100% प्योर, यू आर गोइंग टू बिकम 100% प्योर, इवन वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट आवरसेल्फ्स. नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट हम इस यात्रा पर कैसे शुरू हुए? ही सेड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू विल डू इट. तो परमात्मा का विश्वास बच्चों पर, तो बच्चे वो करके दिखाते हैं जो उनको खुद नहीं पता था कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है. परमात्मा जिस

0: पथ का आधार लेते हैं, जो हमने देखा कि साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा फिर ये विद्यालय स्थापन हुआ, उन्होंने भी यही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया, यही ज्ञान उन्होंने यूज किया कि विश्वास करते जाओ। जब बच्चे उनके सामने आते थे, आत्माएं उनके सामने आती थी, उनके अंदर शायद वो विशेषता नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते थे आप कर सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो। दैट एनर्जी, नॉट वर्ड्स, पर वो एनर्जी ट्रांसमिट करना उस आत्मा को एम्पावर कर देता है। ट्रस्ट करने से हम एम्पावर कर देते हैं दूसरे को, और डाउट करने से हम डिसएम्पावर करते हैं। कई बार दूसरा कर भी रहा होता है सही राह पर, लेकिन हम इतना डाउट करते हैं, इतना डाउट करते हैं कि वो भी उस राह से हट कर, क्योंकि हम वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो अलॉट डिपेंड्स ऑन मी व्हाट एनर्जी आई वांट टू ट्रांसमिट। विश्वास करें, कोई धोखा नहीं देगा।
1: अगेन यहाँ ये विश्वास किया, मैं 100% विश्वास करती हूँ, मतलब कहीं भी अगर हम कहते हैं करता हूँ, मुझे 100% फेथ है कम्प्लीट द वे यू नो इट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूँ। जहाँ धोखा हो गया तब क्या होगा, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया हूँ ना, मैं पूरी तरह से मान के चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, और बाय चांस गलत हो गया।
0: सी विश्वास अर्थात क्या, कि मैं आप पे ये विश्वास करती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, वही आप सोच रहे हैं, दिस इज विश्वास। विश्वास ये नहीं है कि आप जो कर्म करेंगे उसमें 100% परफेक्शन अचीव करेंगे, दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रस्ट। ट्रस्टिंग इज ट्रस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन, बाकी वो एक इंसान है, उसकी कुछ कैपेसिटीज है, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज है, आप उसको टास्क उसकी कैपेबिलिटी देख कर देंगे। ऐसे नहीं कि हाँ आपको ये काम करना है, मैं विश्वास करता हूँ, और फिर उसने वो गलत किया तो हमने कहा आपने वो विश्वास तोड़ दिया। कोई हमारा विश्वास तोड़ नहीं सकता, एज लॉन्ग एज वो आकर हमें ये कह पाए कि मेरे से ये गलती हो चुकी है, तो विश्वास कायम है, चाहे वो बड़ी से बड़ी गलती क्यों नहीं करके आया।
1: अगेन गलती और विश्वास तोड़ने में
0: फर्क है, आपके लिए जो गलती लग रही है,
1: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि गलती कर देना और विश्वास टूट जाना, दोनों में फर्क है।
0: मतलब यस एब्सोल्युटली फर्क है। इट्स लाइक लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, या एक पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चे से गलती हो सकती है, उस गलती के लिए उसको ये ना कहा जाए कि आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। लेट्स से मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप 90% लेकर आए, और मैं पूरा साल यही सोचती रही एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा 90% लेकर आएगा, और बच्चा 80% लाया या 60% लेकर आया। लेट्स से हम कहते हैं मैंने आप पर इतना विश्वास किया, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया।
1: चलिए, परसेंटेज तो उसके हाथ में नहीं है, उसने कहा मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कभी ऑकुट पे नहीं जाऊंगा, मैं कभी चैटिंग नहीं करूंगा, या मैं कुछ और भी चीज कुछ गलत नहीं करूंगा, और मैंने किया।
0: तो आपने किया वो विश्वास तोड़ना नहीं होगा, लेकिन अगर आपने किया और सच नहीं बताया तो वो भी विश्वास तोड़ना नहीं होगा, लेकिन वो भी फिर कारण ये है कि मैं शायद आपको राइट तरह से रिसीव ना कर पाती जब आप सच बोलते, इसलिए आपने झूठ बोला। मैंने आप पर विश्वास किया, ये मेरी चॉइस है। अब आप क्या करते हैं वो आपकी चॉइस होगी, फिर आपके कर्म को मैं किस तरह से परसीव करूंगी, अगेन वो मेरी चॉइस है। तो आपने अगर सिगरेट पी, या आप चैटिंग कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अब मेरी कॉन्शियसनेस उस इमेज को कैसे परसीव करती है। मी एज एन इंडिविजुअल आई वुड गेट हर्ट मोर इफ आई हैव टू गेट हर्ट इज ओनली इफ द अदर पर्सन डजंट टेल द ट्रुथ, नॉट बिकॉज आपने ये कर्म किया। क्योंकि आपने ये कर्म किया कुछ सोच कर किया, पीयर प्रेशर में आके किया, या कुछ भी किया,
1: कोई ना कोई जस्टिफिकेशन। एक्चुअली अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस देती हूँ उस व्यक्ति को,
0: तभी तो
1: कुछ नहीं होगा। हाँ,
0: रिलेशनशिप ऐसा बनता है जो वो आकर आपको हर बात सच बताएंगे, बड़ी से बड़ी गलती भी आकर सच बताएंगे, अगर उनको पता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो गलती की है। तो विश्वास कहाँ टूटा, उल्टा ऐसे इंसिडेंट्स जब होते जाते हैं तो हमारा विश्वास एक दूसरे के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। विश्वास ये चीज है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड मुझे करेंगे। मैं अगर कोई गलती करती हूँ और आपके सामने आऊं, अब मुझे क्या आप पर विश्वास है कि आप मेरी गलती को स्वीकार करेंगे। ये विश्वास है, ये विश्वास चाहिए कि आप मुझे फिर से उसी प्यार के साथ स्वीकार करेंगे। ये अगर है तो मैं आकर आपको गलती बताऊंगी, फिर से अगर आप मेरे से उसी तरह से प्यार से चलेंगे, रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग।
1: लेकिन फिर मैं बार बार वही गलती करूँ।
0: नहीं, कभी नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि आपको बहुत प्यार और पॉजिटिव एनर्जी मिली है, आपको एम्पावरिंग एनर्जी मिली है, आपको डिसएम्पावरिंग एनर्जी नहीं मिलती है। आप मेजोरिटी घरों में देखो, कब झूठ बोलना पड़ रहा है एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ को कब झूठ बोलना पड़ रहा है एक दूसरे से, जब पता है कि सच को सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा। टुडे इफ अ हस्बैंड गोज आउट फॉर डिनर अपनी कंपनी के बाद, ऑफिस के बाद, वो कंपनी के किसी कोलीग के साथ डिनर पे चले गए, ठीक है, घर आके क्या बोलेंगे? घर आ गए 10-11 बजे, दो ऑप्शन है, या तो आप बोल दो कि मैं अपने किसी कोलीग के साथ डिनर पे चला गया, या आप बोल दो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था,
1: वो ज्यादा आसान लगा,
0: तो वो ज्यादा आसान लगा, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला उसको कैसे रिसीव करेगा। अगर आपको ये पता है कि आपकी वाइफ बोलेगी अच्छा आप डिनर पे चले गए, वंडरफुल, हाउ वाज द डिनर, यू विल कम एंड से कि आप डिनर पर गए थे। लेकिन अगर आपको ये पता है, सी वी नो आर रिस्पॉन्सेज ना, क्योंकि हम एक साथ बहुत रहते हैं, कि आपकी वाइफ कहेगी क्यों, क्या, किसके साथ, कैसे, मैं वेट कर रही थी, ऑल दोस, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, ये वो, तो आप आकर बोल देंगे कि आई वॉज लेट एट वर्क, मैं बहुत काम था, 10 बजे तक काम कर रहा था, फिर आप वो एक बार बोलेंगे,
1: फिर
0: दो बार
1: पड़ गए, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे साइकिल।
0: अब ऊपर से वो रिश्ता ठीक ही लग रहा है, वाइफ भी बहुत खुश है, हस्बैंड देर तक काम कर रहे थे, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थके हुए, ऊपर से तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन उस रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं है, और छोटा सा इंसिडेंट उस रिश्ते को शैटर कर सकता है, क्योंकि बहुत झूठ एक दूसरे के साथ बोलना पड़ रहा है। अब अगर हस्बैंड ये एक्सक्यूज दे कि मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि वो दुखी होगी, या वाइफ ये क्वेश्चन करे, तो हमें एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करना है, हस्बैंड विल हैव टू चेक कि मैंने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मेरे अंदर सच बोलने की ताकत नहीं थी, या क्योंकि मुझे लगा कि डिनर पर जाना राइट नहीं था, व्हाटएवर, तब मैं झूठ बोल रहा हूँ। एंड वाइफ अपने पर्सपेक्टिव से अगर देखे, तो मुझे एक्सेप्ट करने की पावर नहीं थी कि आफ्टर वर्क वो कहीं डिनर पर जा सकते हैं। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे का राइट एंड रॉन्ग,
1: कि उसे सही लगे या वो बहुत कहेंगी तो इसलिए चलो उनको वो हर्ट ना हो जाए। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसी पर्सपेक्टिव में, ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, आज का वो दौर है जब दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर हैं, और देखा ये जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा ही बाहर हैं, ज्यादा हम अपने ऑफिस में वक्त गुजार रहे होते हैं घर की बजाय, तो यहाँ एक इनसिक्योरिटी अगेन, यू नो, कि वो इतनी देर तक बाहर हैं, जैसे कि वाइफ के लिए कि वो किसी और कलीग के साथ है, दैट कलीग कैन बी अ मेल, कैन बी अ फीमेल, एंड देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स हैपनिंग, यू नो, फॉर द मेल ऑल्सो, फॉर द हस्बैंड ऑल्सो, कि वो इतनी देर तक बाहर हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहीं बाहर कॉफी पीने गई हैं, चाय पीने गई हैं, इतने बजे आ जाना चाहिए था। तो ये सारा जो यहाँ जो मिसट्रस्ट है बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट कि आप लेट आए हैं या नहीं, आप कहाँ किसके साथ हैं, दैट इज अ मेजर, जिसको बहुत टाइम बाद जाके बोला जाता है, यू नो, ये सवाल बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है। अगेन आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा होता है, क्योंकि मुंह से बोलना बाद में जाता है,
0: लेकिन मन में बहुत पहले से क्रिएट किया होता है, और वो क्यों क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमने कहा रिश्ते की फाउंडेशन ट्रस्ट है। तो जहां, इसीलिए हमने बताया कि शिव बाबा ने कहा अगर एक संकल्प भी संशय का है, तो अभी आप संशय वाले साइड पर है, आप ट्रस्ट नहीं बोलो, मतलब आज हम क्या कहते हैं, आई ट्रस्ट यू, लेकिन दिन में कम से कम 10 संकल्प डाउट वाले क्रिएट करते होंगे उस व्यक्ति पे। तो आई ट्रस्ट यू का भाव क्या, कि एक भी संकल्प मिसट्रस्ट का नहीं। अब जब इस तरह के संकल्प आए, तो ये कहीं ना कहीं मेरी फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर है, और कहीं ना कहीं मेरा परसेप्शन उस चीज को देखने का, कि आप अपने कोलीग्स के साथ जाते हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट और व्हाट इज राइट इन दैट, आई हैव टू चेक माई सेल्फ एंड समहाउ एक डायलॉग, कि हम अपनी फैमिली में या अपने रिलेशनशिप में डिसाइड करें कि हमारे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, क्योंकि वी आर नोबडी टू डिसाइड कि समाज के लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, कि किसी को किसी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नोबडी इज देयर टू गिव, यू नो, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। मेरे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, एंड फॉर माई स्पाउस राइट एंड रॉन्ग क्या है, आई नीड टू सिट एंड डिस्कस, एंड वो भी इस भाव से नहीं कि मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए, या द पर्सन विल से ठीक है, आई विल कम बैक होम एंड टेल यू कि मैं लेट काम कर रहा था, क्योंकि आई नो कि आपके हिसाब से ये राइट नहीं है। टू पीपल डिस्कसिंग कि इसमें राइट और रॉन्ग क्या है, वो तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम

0: सोच के बैठेंगे कि आप भी राइट है, मैं भी राइट
1: हूँ.
0: नाउ डिस्कस, नाउ डिस्कस एंड क्रिएट अ पैरामीटर फॉर योर हाउस, इवन फॉर अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. हमारे परिवार के लिए वैल्यू सिस्टम जो है उसमें राइट एंड रॉन्ग हमारे परिवार के लिए क्या होगा वो हमें आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, नॉट इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को नहीं डिसाइड करना चाहिए. अभी क्या हो गया, दो लोग अपना राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन अलग क्रिएट कर ली, तो इनके लिए कुछ और राइट है, इनके लिए कुछ और राइट है, और इनको झूठ बोल बोल के इनका राइट सुनाते रहते हैं. पेरेंट चाइल्ड में भी यही है. पेरेंट सोचेगा इंटरनेट पे चैटिंग नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो राइट है. बच्चा सोचेगा करनी चाहिए, तो वो करता रहता है, इनको बताता रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो नीव क्या बन रही है. और यही अगर दोनों बैठे और बच्चा उनके साथ डिस्कस करे कि उसके लिए वो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट डज ही गेट आउट ऑफ इट, एंड दे ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फिर वो उसको गाइड भी कर सकेंगे कि इसमें नुकसान क्या होंगे. आप अगर चैट, इट विल बी सो ब्यूटीफुल. वो बच्चा जो जो चैट करेगा वो आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगा जब उसे पता होगा कि दे डोंट फील इट्स रॉन्ग. We should always have a common right and wrong definition in the family. अभी तक क्या हो रहा था, हम अपना right and wrong दूसरे पर impose कर देते हैं, कि जैसे parent child पर impose कर देगा या husband wife एक दूसरे पर impose कर देते हैं, फिर हम expect करते हैं कि वो हमारे right and wrong के definition के हिसाब से चलते रहे, तो वो फिर उनके पास option क्या होता है, या तो वो हमें झूठ बोलते रहते हैं, और फिर जिस दिन उनका झूठ पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं आपने हमारे विश्वास को तोड़ दिया, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी आपको उस डेफिनेशन के हिसाब से चलना था, आपकी अपनी क्या चॉइस है उसके बारे में हमने नहीं सोचा कि आपके राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन क्या था.
1: एक्चुअली दैट रियली मेक्स सेंस, यू नो, उससे कोई ऑप्रेस्ड फील नहीं करेगा, और यू नो ये सचमुच का लोकतंत्र.
0: यस, एंड एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल टू बी देमसेल्व्स विद ईच अदर. हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी देमसेल्व्स. उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, छुपाना नहीं पड़ेगा. यू नो पेरेंट चाइल्ड भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज इसकी वजह से आ जाती है क्योंकि हमें एक दूसरे से कितनी बातें छुपानी पड़ती है.
1: इनफैक्ट अब ये भी हो सकता है कि जब हम बच्चे को ये बता रहे हो कि आप लेट नाइट नहीं आना है, हम सिर्फ एक ये रूल बना दें कि नो लेट नाइट पार्टीज, नो टॉकिंग ऑन फोन, उसकी बजाय इफ वी हैव अ डिस्कशन एंड देन गॉड इट कैन बी एक्चुअली वेरी गुड.
0: वी हैव टू गिव द फ्रीडम टू ईच अदर टू डिसाइड आर राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड देन कम टू अ म्यूचुअल डिसीशन कि ठीक है हमारे लिए ये राइट है. ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जहां राइट एंड रॉन्ग अलग अलग है, कि हस्बैंड का राइट वाइफ के लिए रॉन्ग है, या पेरेंट का राइट बच्चे के लिए रॉन्ग है, या वाइस वर्सा. तब देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चीटिंग cheating with each other in relationships. क्योंकि क्या करें, तब हम बोलते हैं कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. हम एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपकी राइट की इमेज अलग है और मेरी राइट की इमेज अलग है. हमारे पास दो ऑप्शन हम क्रिएट कर देते हैं, या तो झूठ ही बोल देते हैं एक दूसरे को, या फिर दूसरे की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते. लाइक बच्चे को कुछ करना है तो बोलेगा मुझे करना ही है, भले आपको गलत लगे. तो जिद, या झूठ बोल देते हैं या जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं. तो इन दो प्रोसेस क्या होता है, दोनों में से एक जना तो परेशान रहता है.
1: तो आज के दौर में अगर हम जिस एक एक ऐसे परिवार को तलाश रहे हैं, एक ऐसे रिश्ते को तलाश रहे हैं जहां ये मुश्किलें ना हो, सो आई थिंक डिसीजन हैज टू बी कम्बाइंड, यू नो, क्यूमुलेटिव डिसीजन होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम क्योंकि इस वक्त बात हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ही कर रहे हैं, देखा ये गया है कि जब तक कम्युनिकेशन जारी रहती है, जब तक बातचीत जारी रहती है, तब तक सब ठीक है. प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जहां एक चुप हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को बहुत देर बाद पता चलता है कि व्यक्ति चुप हो गया, या कहीं ना कहीं वो दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं. तो वो कायम कैसे रखी जाए, जहां लगे कि मेरा हस्बैंड बात नहीं कर रहे हैं, डाउट होना शुरू हो जाता है यहां वाइफ को कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर, जो इतनी बातें करते थे वो बात क्यों नहीं कर रहे. सो उस बैरियर को कैसे ब्रेक किया जाए.
0: कहीं भी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए एक रिश्ते के अंदर, क्योंकि वो एक क्रैक जैसे बनना शुरू हो जाता है. पहली बात, ये कम्युनिकेशन गैप शुरू कैसे होता है, जैसे आपने कहा विदड्रॉ करना हम शुरू कर देते हैं जब हमें कहीं फील होता है कि दूसरा हमारी पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता, तो हम अपने पर्सपेक्टिव को अपने तक ही रखना शुरू कर देते हैं. कई बार क्या होता है, हम आते हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन आप हमारी बात सुनने की बजाय अपना ही ओपिनियन सारा बोलकर और हमारा अपना ओपिनियन हमारे ऊपर इम्पोज कर देते हो, और फिर आपको लगता है आपकी बात हो गई. देन स्लोली स्लोली आई विल मूव अवे कि आप मेरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो, तो मैं अपना थॉट अपने तक रखना शुरू करता हूँ. सो द रीजन

0: वो दिस इज लैक ऑफ लिसनिंग, एक दूसरे को सुनने की शक्ति। हमारे को ज्यादा आदत बोलने की है कि हम बोले और दूसरा हमारी बात सुने, और उसमें भी हमारा थॉट ऑलरेडी बना हुआ है कि ये मेरी बात माने। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। मे बी आई डोंट नो वेदर इट्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री या क्या है, लेकिन आपने मेरी बात मानी, और अगर मैंने आपकी बात मानी तो इट्स लाइक मैं आपको चार बार सुना दूंगी कि मैंने आपकी बात मानी थी ना उस दिन, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। It shouldn't be there in a relationship ideally. Ideally it should be what's the best.
1: Yeah, in fact मैं मानू तभी ही जब मुझे भी वो सही लग जाए। अच्छा, जब मुझे सही लग जाए तो वो आपकी बात कहाँ रहेगी?
0: कहीं नहीं। वो तो एक म्यूचुअल डिस्कशन में निकल कर एक डिसीशन निकला। तो कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपके मन में जो भी आए, यू नो, कई बार कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी आता है क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ वो शायद आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, एंड तब हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं सामने वाले के लिए, और हम सोचते हैं बोलूंगी तो इनको बुरा लगेगा।
1: नहीं, और हम चाहते नहीं कि उस वक्त कुछ भी हो, यू नो, वो सिचुएशन अभी ठीक रहे। कितनी बार देखा गया है क्योंकि हम रिश्तों में प्रॉब्लम ना आए कि चलो चलो अभी चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, निकल जाने दो, वक्त निकल जाने दो, लेकिन थॉट तो रहेगा,
0: थॉट तो रह जाएगा बिकॉज एनर्जी यहाँ है। तो कहीं अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को बुरा लगने वाली है वो बात, लेकिन अगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है तो प्लीज स्पीक इट आउट, डोंट बॉदर, क्योंकि अभी थोड़ा सा बुरा लगना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म वी विल गेट इन टू दिस हैबिट कि ये बात इनको अच्छी नहीं लगती, लेट मी कीप इट टू माई सेल्फ। वो भी ऐसे ही सोचने लगेंगे कि ये बात इनको नहीं अच्छी लगती, लेट मी कीप इट टू माई सेल्फ। धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हो जाएंगी विच वी विल स्टार्ट कीपिंग टू आर सेल्फ, एंड देन वी हैव मूव्ड अवे। सो शेयर, स्पीक इट आउट एवरीथिंग, चाहे उनको बुरा भी लगे, लेकिन अगर यहाँ ऑनेस्टी होगी तो बुरा नहीं लगेगा।
1: इनफैक्ट एक और बात जो अभी मुझे समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बोलना, लेकिन उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है सुनना।
0: वो ही टोटल है कि दूसरा जो कहना, सुनना तो, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, सुनना विद दिस इंटेंशन कि आप सही कह रहे हैं। हम सुनते तो बहुत बार है, अच्छा बोलो बोलो और क्या बात है, बोलो बोलो, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं कि आप अपना सारा बोलो और फिर मैं आपको बोलूं कि आप पूरी तरह से रॉन्ग थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आप रॉन्ग है। तो सुने लेकिन विद दिस थॉट कि आप राइट कह रहे हैं, देन इट विल बी अ गुड हेल्दी डायलॉग।
1: अगेन एक अलग पर्सपेक्टिव इस पूरी बातचीत में आज हमारे सामने आया है शिवानी की, किसी भी रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते हमारे बहुत नजदीकी हैं, मतलब इतने प्यारे होते हैं रिश्ते, और रिश्तों पर ही हमारी पूरी जिंदगी मुझे लगता है टिकी है। अगर आगे चलेंगे हम प्रोफेशन में भी जाएंगे, वहां पे भी रिश्ते ही होते हैं। सो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वही ऊर्जा का ऊर्जा के साथ जो संपर्क है, या आत्मा का आत्मा के साथ, या फिर हम कहें तो जिस लिबास में है हम, उस लिबास के साथ भी एक इंट्रैक्शन है। तो उस इंटरेक्शन को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। हजबैंड वाइफ के रिश्ते में जो एक नई बात बहुत सुंदर जो समझ के आई है परिवार की, कि डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ शुड बी कॉमन। जो आदर्श या जो बातें सही और गलत मेरे परिवार के लिए हैं, वो सबकी साझा होनी चाहिए और सबके एक मत के साथ होकर सामने बैठी जानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये दिस कैन एक्चुअली चेंज लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। अच्छा लगता है जब हम उन्हीं रिश्तों को एक नए नजर, एक नए अंदाज से देखते हैं, और जब साथ बैठकर हम खाना खा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तब इधर उधर मुंह करके क्यों बैठे, क्यों कॉन्फ्लिक्ट में रहें, क्यों नहीं हम हार्मनी में रह सकते, और उसके छोटे छोटे जो हमें एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उन्हें हम अगेन इम्प्लीमेंट करके, जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जरूर सोल्यूशन सामने आएंगे। अगर आपके पास कोई बात है, कोई सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में रिश्तों को यूं साथ किस तरह से मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और मधुर कर सकते हैं, इन्हें जानने का प्रयास करते रहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। ओम शांति।

पूरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। आपकी जिंदगी का एक लम्हा चुराते हैं, एक वो पड़ाव जब आप ऑफिस से घर पहुंचे, थके हारे घर पहुंचे तो क्या देखते हैं दरवाजा खोलने पर कि दोनों बच्चे घमासान युद्ध में भिड़े हुए हैं। कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ऐसे में आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? कहीं ना कहीं गुस्सा अंदर से बाहर आता है और उस पागलपन में आप भी पागल हो जाते हैं। कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन वो गुस्सा आपके हाथ से या आपके सामने आ ही जाता है। क्या इस गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये गुस्सा जायज है? क्या गुस्सा जो है वो हमारे हाथ में है? गुस्सा क्या हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है? क्या कारण होते हैं गुस्से के? डिप्रेशन से जुड़े कितने ही मुद्दों को हमने अपनी पूरी श्रृंखला में तलाशा है, जानने की कोशिश की है कि क्या कारण है कि डिप्रेशन होता जाता है। आज हमने आपसे वादा किया था कि हम गुस्से के ऊपर कुछ ज्यादा बातें करेंगे। क्यों आता है गुस्सा, क्या कारण होते हैं और किस तरह से उसे हम अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। उसी सिनेरियो की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब की। गुस्सा जो है, अभी तक हम कई बार ये कहते थे कि वो

0: जेन्युइन है, वो आता ही है, कितनी भी कोशिश कर ले गुस्सा आ ही जाता है, स्वतः हो जाता है। अब ये सिचुएशन अगर हम देखते हैं कि अपने ही बच्चे यू नो कि आपस में भिड़े हुए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे लेकिन गुस्सा आ जाता है, वो जो पागलपन जब दिखता है तो हम भी कहीं उसमें पागल होने लगते हैं, क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं?
1: डेफिनेटली कर सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भी ये आवश्यक नहीं है कि आप गुस्सा करो। ये भी थोड़ा सोचो कि भी गुस्से से क्या उसमें बेनिफिट होना है, आप भी डिस्टर्ब होंगे और बच्चे पीसफुल नहीं होंगे।
0: ये हम जानते हुए भी कि गुस्सा मुझे नहीं करना है, वो जो आ जाता है, जो आता ही एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ की तरह मान लेते हैं हम कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे मुझे स्नीज करना ही है तो मैं मानती हूँ कि स्नीज अगर मैं करूंगी या छींकूंगी तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सिमिलरली अगर ये सब कुछ मैं देख रही हूँ तो मुझे गुस्सा आएगा ही, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं? गुस्सा जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में,
1: वास्तव में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, वो आपका एक प्रकार से रिएक्शन है। अभी यही सीनेरियो आप देखो कि जैसे आपके घर में हुआ, पड़ोसी के घर में ये होता हो तो आपको गुस्सा नहीं आता। सीन तो वही है परंतु यहाँ पर आपकी इमोशंस अटैच, आप चाहते थे कि मैं घर जाऊं तभी सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, शांति से बैठे हैं, पर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, इसके कारण आपको गुस्सा आया। तो जो मूल कारण है गुस्से का कि जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तब आपको क्रोध आता है।
0: बिल्कुल, एक ये कारण बहुत बड़ा सा हमारे सामने आता है कि जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं तब हमें गुस्सा आता है। सिस्टर शिवानी, हमारी इच्छा के कारण नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा, गुस्से को हम जायज मान लेते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा नहीं लोग, मैं तो सही कह रही हूं, क्यों ये सही तरीका नहीं है, ऐसे लड़ना थोड़ा अच्छी बात है, तो सही तरीके से जीना चाहिए इन्हें, तो ये क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे और इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है।
2: जो आपने कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करें, क्योंकि मेजोरिटी लोग ये समझते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिएक्शन है, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सामने सीन है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। क्या ये सेम रिएक्शन आप हर टाइम करेंगे जब भी वो सीन आपके सामने आएगा? नहीं। जिस दिन आप ऑफिस से बहुत अच्छे मूड में आ रहे हैं आपका जो डिस्टर्बेंस लेवल होगा वो कम होगा, जिस दिन आप बहुत अपसेट हैं किसी बात से उस दिन आप छोटी सी बात को देखकर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। अगर वो एक रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री एक्शन होता, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, स्व इच्छा से या ऑटोमेटिक है, अगर वो ऑटोमेटिक होता तो वो बाहर की परिस्थिति के अनुसार हमेशा हो जाता, जैसे ही झगड़ा देखा ऑटोमेटिक रिएक्शन, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभी कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। हमारी जो इंटरनल एनर्जी लेवल हम उस दिन कैरी कर रहे हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अक्यूमुलेट हो गई है, ये बाहर की परिस्थिति सिर्फ एक ट्रिगर होती है, और वो भी हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स बनी हुई है कि इनको अगर ठीक करना है अभी तो गुस्सा ही करना पड़ेगा, ये बहुत बिगड़े हुए हैं, इनको अगर चुपचाप बिठाना है तो एक जोर से चिल्ला दो अभी चुपचाप बैठ जाएंगे। दीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो हमने क्रिएट करके रखे हैं, दिस ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। लेकिन वो सब कुछ इतनी फास्ट हो जाता है कि वी थिंक दैट यू नो ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। उस समय शायद हम लॉजिकली सोच के गुस्सा नहीं करते, ऑब्वियसली हम वी डोंट गो थ्रू दैट प्रोसेस, लेकिन हमने वो प्रोसेस बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है अंदर कि दिस इज द वे इट वर्क्स। इस आप इवन जैसे स्कूल में देखिए, टीचर एंटर करती है, बच्चे जोर जोर से शोर मचाते हैं, वो उन्होंने एक लॉजिकल सोच के प्रोसेस बनाया कि और जोर से चिल्लाती हैं, यू नो लाउडर देन द नॉइज ऑफ द क्लास टू से प्लीज कीप क्वाइट, एंड यू नो समटाइम्स व्हेन यू कांट शाउट सो लाउडली आपको डस्टर लेकर जोर जोर से यू नो टेबल पर बैंग करते हैं। तो नॉइज है, उसको आप नॉइज से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट मैसेज आर वी गिविंग द पीपल कि आप डिस्टर्ब हैं तो मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूं आपके साथ,
0: और मैं अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं या है एक डिस्टर्बेंस तो उसे लाउडर डिस्टर्बेंस ज्यादा स्ट्रांगली अगर मैं करूंगी तो वो मैं कंट्रोल में ले लूंगी।
2: इट्स लाइक सेइंग कि ये पोल्यूशन कर रहे हैं, इनकी पोल्यूशन को खत्म करने के लिए मुझे और पोल्यूशन करनी है। इट जस्ट वोंट वर्क लाइक दैट, यू नो। सो इट्स पीस विच विल फिनिश दैट रेस्टलेसनेस रादर देन एंगर विच विल फिनिश दैट।
0: सो अगेन यू नो ये जो हमारे मिथ है, हमारे जो रॉन्ग बिलीफ है कि ये एक रिएक्शन है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मुझे पता ही नहीं चला, ये इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। कई तरह के गुस्से होते हैं, हम उन कारणों पे आते हैं कि डॉक्टर साहब की क्या क्या वजह है जो गुस्सा हमें आता है। बेसिकली
1: पहला कारण तो जिस परिस्थिति में भी हमने देखा

0: कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, एक छोटा सा फायदा भी है, किसी ने मेरे वर्कशॉप में भी कहा कि जब मैं गुस्सा करता हूँ ना तो मैं औरों को मैन्युपुलेट कर पाता हूँ। मैं गुस्सा करता हूँ मेरी इच्छा अनुसार होता है, आई एम एबल टू कंट्रोल अदर्स, तो इसलिए भी लोग गुस्सा करते हैं। भले एक शॉर्ट टर्म है परंतु वो छोटा सा ही फायदा है, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है,
1: लेकिन ये प्रैक्टिकल में दिखाई देता है ना होते हुए।
0: हाँ, ये बात
1: सही है। दैट्स व्हाई बिल्ड अप द बिलीफ सिस्टम, इट्स द इजीएस्ट वे टू गेट वर्क डन। आप चला दीजिए और काम हो जाएगा।
2: सबॉर्डिनेट्स के साथ, खासकर अगर हम घर पे देखते हैं,
1: नहीं, इवन हस्बैंड वाइफ के साथ, इवन पेरेंट्स चाइल्ड के साथ, किसी के साथ भी इट वर्क्स ना।
0: बट हाउ इट वर्क्स, अगर नहीं आप साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म थोड़ी देखो कि क्रोध से डर निर्माण होता है और डर के कारण आप लोगों को चेंज कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं। परंतु डर जो है वो बहुत ही एक कमजोर मोटिवेटिंग फैक्टर है। डर से लंबा समय काम नहीं हो सकता। जैसे आप चाहो कि भी मेरे डर से बच्चे पढ़े, तो जब तक आप उनके सर पे खड़े हैं वो पढ़ेंगे, परंतु जैसे ही आप और कुछ करने लगे वह भी दूसरे काम।
2: और जैसा कि आपने कहा कि मोटिवेटिंग फैक्टर, यू नो, सो मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कोशिश करें ना कि दूसरा काम कर पाए। सो उसके लिए अगर वो मोटिवेटिंग फैक्टर पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बिकॉज अगेन बीच, ये तो हम कहते ही आ रहे हैं कि थॉट द डेस्टिनी है, या बीच से फल तक अगर हम जाते हैं तो द बीच हैज टू बी
1: द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप काम तो करवा लेंगे शायद, लेकिन रिलेशनशिप का क्या हुआ? चाहे वो पेरेंट चाइल्ड है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी फाउंडेशन तो कमजोर होती जा रही है ना। हर टाइम आपने एंगर को एक मोटिवेटर यूज किया या फियर को मोटिवेटर यूज किया, नेगेटिव ब्रिक आप रखते जा रहे हैं अपनी फाउंडेशन के ऊपर। काम ऊपर लेवल पे जो काम है वो होता जा रहा है, हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फाउंडेशन बहुत कमजोर है, तो एक दिन वो
2: रिलेशनशिप भी ब्रेक हो जाएगा एंड दूसरी तरफ प्रोपोगेट हो जाएगा यही थॉट प्रोसेस।
0: अगर आप भी नहीं हो रहा है, अगर आप सच में,
1: इट एक्चुअली विल नॉट हैपन,
0: क्योंकि ना व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं करेगा।
2: जी,
0: जैसे ना आप बच्चा पढ़ रहा है लेकिन जबरदस्ती पढ़ रहा है, कहां तो ये भी पॉसिबल आपको गालियां दे कि भी कैसी माँ है, मुझे खेलने नहीं देती है। यही बात सबॉर्डिनेट के साथ भी होगी,
1: और वो काम कर रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी के साथ अंदर,
2: कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव के साथ पूरा हो रहा है। तो दिस एंगर, सो ओके, वन फैक्टर विच कम्स टू आवर माइंड, लाइक हमने जब कहा बात, टू कंट्रोल अदर्स, दैट क्रिएट्स एंगर।
0: नो, टू कंट्रोल अदर्स यू बिकम एंग्री।
2: हाँ, वी बिकम एंग्री।
0: और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, मैंने कईयों को पूछा भी है, आप भी अगर कभी लोगों को पूछेंगे, कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि मैं चाहूं वैसे ही होना चाहिए, थिंग मस्ट गो माई वे। आप देखना, जिसकी भी ये अगर पर्सनालिटी है तो उसको सदैव ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं। मैं चाहूं कि सदैव मेरी इच्छा के अनुसार हो, ये 100% पॉसिबल नहीं है, और जब भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और इसके पीछे भी जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि जब वो व्यक्ति छोटा होता है तब माता पिता ने उनकी हर इच्छा को पूरी की है। उसने पानी मांगा तो उसे दूध दे दिया गया, कभी भी उसे फ्रस्ट्रेशन या तो ना नहीं कहा गया, और इसके कारण बचपन में ये स्थिति बन गई कि थिंग मस्ट गो माय वे, और बड़े होने के बाद भी वही जो साइकोलॉजिकल एक सेटअप रही और उसके कारण गुस्सा ज्यादा आता है।
1: क्या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि बचपन में आई डिड नॉट गेट थिंग्स माय वे, शायद जब मेरे पास पावर नहीं थी, अब जब मेरे पास पावर आई है, आई टेंड टू,
0: कैन
1: यू नो, दीज आर व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, कि पेरेंट, यू नो, पेरेंटल कैसे अपब्रिंगिंग है वो कैसे हमारी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती है आगे। कई बार अगर बिल्कुल मेरी, यू नो, मेरी मर्जी अनुसार अगर नहीं हुआ, आई डिड नॉट गेट टू डू थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू, फिर जब मैं उस एज पर पहुंचती हूँ, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग माई वे, आई वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीबडी, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
2: अगेन द पॉइंट विच कम्स इज लाइक वी वाई वी हैव टू नो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज समवेयर दिस इज नॉट गुड। सी, व्हेन आई रियलाइज कि मैं इस वजह से एंग्री हूँ कि मेरी तरह से काम होना चाहिए, सो फर्स्ट इज द रियलाइजेशन हैज टू सेट इन, या मुझे खुद ही एहसास होना जरूरी है कि मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ, तभी तो फिर मैं कारणों पे जाऊंगा। बेसिकली वंस आई अंडरस्टैंड द रीजन, कैन आई हेल्प इट नाउ?
1: या बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि nobody else will be able to do it the same way like me. Because everybody is unique, everybody is different, and if everybody started doing things the way I do, the world will be very boring. सब लोग एक ही तरह से अगर काम करने लगे

0: गए, एक ही तरह से सोचने लग गए, द वर्ल्ड विल बी वेरी बोरिंग. आज ये दुनिया इतनी सुंदर इसीलिए है क्योंकि आप अलग हैं और मैं अलग हूँ. अगर आप और मैं एक तरह करने लग गए, वी वोंट बी एबल टू सिट लाइक दिस.
1: डॉक्टर साहब, मैं भी एग्जाम्पल एक ही देना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े अफसर से मैं एक जगह एक दिन मिली और वो अपने एक सबॉर्डिनेट को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे थे. एक लड़की थी, टाइपिस्ट थी उनकी, और वो बाहर गई और उसके बाद वो एकदम से नॉर्मल हो गए. तो मैंने बोला कि आपने मेरे सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, क्यों क्यों आपने ऐसे किया? कहता ये सात्विक गुस्सा है. गुस्सा भी कई तरह के होते हैं. एंड ही वॉज नॉट एंग्री बेसिकली, ही सेड आई वाज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री. एंड ये सात्विक गुस्सा है कि इसमें मेरे इसके जो मैंने ये गुस्सा किया है उसके अंदर एक उस व्यक्ति के लिए हित छुपा है. क्योंकि वो मैं इतना प्यार देता हूँ कि कई बार वो सर पे चढ़ जाते हैं. तो अब उनको वो उतारना, मतलब पर मेरे सामने, किसी बाहरी आदमी के सामने ये करना तो मेरे लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग है और उस व्यक्ति के लिए तो और भी एम्बैरेसिंग होगा. कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक सात्विक गुस्सा है और मुझे ये हमेशा काम आता है. तो उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा लोगों को, इनको, कि भाई अगर मेरे साथ आप ये करना चाहते. तो यहां मैं उनको कोई जवाब ही नहीं दे सकती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर ये फील हुआ कि दिस वॉज नॉट राइट. समवेयर आई थिंक फॉर बोथ ऑफ देम दिस वॉज नॉट गुड. लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये साथ, ही वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री. सो वॉट इज दिस एक्चुअली?
2: बट वन थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो आप जिसको सात्विक गुस्सा कहते हैं ना, साइकोलॉजी में एक दूसरी टर्म है जिसको कहा फेक एंगर, एज अ लास्ट रिसोर्ट. पहले और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन चीजों को अपनाइए. फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो कई बार आप झूठ मूठ का गुस्सा कर सकते हैं, परंतु बहुत मुश्किल है. उसके लिए बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप अपना आवाज बढ़ाते हैं, कुछ जोर से बोलते हैं, तो अंदर में फीलिंग्स भी आती है.
0: बट वॉज दिस राइट?
2: इट इज नॉट राइट. क्योंकि अगर उसे पता है, वो लड़की को पता है कि भी मेरे बॉस ऐसे ही झूठ मूठ ही गुस्सा करते हैं, आवाज बढ़ाते, फिर ठीक है, लेकिन तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. अगर उसे पता है कि भाई ऐसे नाटक कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज आना नहीं है.
1: और अगर उसे नहीं पता हो,
2: नहीं पता है, तो फिर तो उस पर इफेक्ट होगी. सात्विक गुस्सा कैसे कहा, वो खुद तो फील करेगी ना.
1: तो वो फील करेगी,
2: उल्टा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा. इसके बाद वो जो काम करेगी एकाग्रता से नहीं कर सकती है, सारा दिन इसी बारे में सोचेगी, वह सही निर्णय नहीं कर सकती है, क्रिएटिव नहीं बन सकती है. तो सात्विक गुस्से जैसी कोई चीज नहीं.
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लेरिफाई एक्चुअली, कि ऐसा कुछ नहीं है. एक और होता है राइटियस गुस्सा. लोग झूठ बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग झूठ बोल रहे हैं. तो क्या मेरे पास ये अधिकार है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? लेकिन आई हैव ऑल्सो बीन लाइक दिस, बट सडनली आई एम रियलाइजिंग दैट डू आई हैव द राइट टू बी एंग्री? दिस इज देयर लाइफ.
2: और इसमें देखिए, ये सोचना है कि गुस्से से क्या लोग सच बोलेंगे. अगर सच बोलेंगे तो भले गुस्सा करो, परंतु क्रोध करने से बच्चे सच नहीं बोलेंगे. बेटा प्यार से उनको एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चे सच बोलेंगे. सबॉर्डिनेट भी सच नहीं बोलेंगे गुस्से से. उल्टा इसमें तो यह चाहिए कि भी आप चाहते हैं कि बच्चे सच बोले तो आप भी सच बोले. नो, यू बिकम ट्रूथफुल. तो ऑटोमेटिकली बच्चे, हम जो सिखाते हैं वैसा नहीं सीखते, हम जो करते हैं उससे ऑटोमेटिकली बच्चे सीखते हैं.
1: इवन सिस्टर शिवानी, हम अगर वो देखें जो सेलिब्रिटीज अपने कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बहुत बार ये देखा गया है, व्हाट मेक्स यू एंग्री, एंड द आंसर इज व्हेन पीपल लाई. तो अगेन, यू नो,
0: अगेन आई एम गिविंग अ जस्टिफिकेशन फॉर माई एंगर. ठीक है, जैसे परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात एक यहाँ पे सिखाते हैं कि अगर दूसरे ने गलती की, चलो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरे ने गलती की, तो क्या उसकी गलती सुधारने के लिए आप उससे बड़ी गलती करेंगे? यू नो, उसने गलती की, आपने भी गलती की, तो फिर आपको क्या हक रहा उसको ठीक करने का? क्योंकि उसने झूठ बोला, उसने गलती की, आपने गुस्सा किया, आपने गलती की.
1: लेकिन मैं तो कहता हूँ कि झूठ बोलने से बड़ा तो पाप है ही नहीं, गुस्सा तो कोई पाप ही नहीं है.
0: गलती तो गलती हुई ना. दूसरे की गलती को, अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है. आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारे तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं. एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग. इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं. और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सच बोलने का, अगर आप गुस्सा नहीं

0: नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे. इधर विद अ जूनियर और विद अ चाइल्ड.
1: लेकिन उनको हम इस बात का तो एहसास करा दें कि हमें पता है कि आपने सही नहीं बोला है.
0: नहीं, अगर जब उन्होंने कोई गलती, देखो झूठ कहाँ से स्टार्ट होता है, हम झूठ कब बोलते हैं, हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा. जब हमें ये पता होगा कि अगर मैंने सच बताया मुझे डांट नहीं पड़ेगी, इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ. सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी.
1: तो अगेन ट्रस्ट भी आ जाता है,
0: ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें. आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे. देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद. लेकिन उसके पीछे रीजन यही है.
1: और फिर आदत पड़ती जाती है धीरे धीरे,
0: धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा.
1: तो यहाँ ये हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई झूठ बोले, जो मुझे भी गुस्सा बहुत आता था कि भाई झूठ बोलते हैं तो आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस. इज लाइक लॉट ऑफ पीपल सेइंग दिस कि आई जस्ट कांट टॉलरेट. सो व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना है?
2: पहले तो मैं समझता हूँ और थोड़े ना गुस्से के कारण मैं बता दूं आपको, और जिससे ये है ना झूठ बोलने के ऐसे. दूसरी एक बात है, अन्याय को कुछ लोग सहन नहीं करते. जब भी अन्याय होता है तो उनको गुस्सा आ जाता है.
1: गलत हो रहा होता
2: है. हाँ, गलत हो रहा हो तो उनको गुस्सा आता है. भले बात ठीक है, ऊपर से तो ये लग रही है कि अन्याय को क्यों सहन करे, गलती को क्यों सहन करे, पर तो फिर भी सोचना यह है कि गुस्से करने से क्या अन्याय कम होगा? गुस्सा अन्याय को कम करने वाला नहीं है. आप भले गांधी जी की तरह कैंपेन करो, नहीं और कुछ करिए, वह राइट है, परंतु क्रोध से आपको भी नुकसान है, सामने वालों को भी हानि है. तो इसके कारण जब अन्याय हो तब भी सोचिए कि और कोई स्ट्रेटेजी को मुझे अपनाना है कि जिसके द्वारा आपको एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, क्रोध से नहीं मिलेंगे.
0: क्रोध एक वेपन है,
1: लगता है.
0: एंगर इज अ वेपन, इट्स अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है. व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट. लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट
1: हमें खुद को लगती,
0: दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा थोड़ी देर बाद. और डॉक्टर साहब ने तो कितना अच्छा बताया, वो पूरा जो बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है. तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को हानि
1: तो
0: मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे. बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. फिर
1: सचमुच खत्म कर सकते हैं.
2: और कुछ कारण भी देखते हैं ना, क्योंकि थोड़े अगर कारण अच्छे से डिस्कस हुए तो सभी इसका उपयोग भी कर सकेंगे. कुछ हमें छोटे से फायदे भी होते इसलिए लोग गुस्सा करते हैं. एक तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में मुझे लगता है कि मेरी हार हो रही है, आपकी जीत हो रही है, तो उसी क्षण में गुस्से में आ जाता हूँ, ताकि चर्चा वही बंद हो जाए और मुझे हार को स्वीकार नहीं करनी पड़े. ये छोटा सा फायदा है, परंतु वहां भी अपने आप को समझा है कि सबसे अच्छा है कि मैं हार को स्वीकार करूं, ताकि दोबारा मैं अपने लॉजिक को और इम्प्रूव करूंगा.
1: और हो सकता है जो दूसरा कह रहा है उसके लॉजिक को मैं समझ के उसे इनकॉर्पोरेट कर लूं.
2: बिल्कुल. दूसरी एक ऐसी भी बात है कि कोई चीज को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, आपको कोई काम दिया गया, आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है जवाब देने का, तो उससे बस थोड़ा समय पहले आप गुस्से में आ जाते हैं, ताकि आपके लिए तैयार बहाना है कि क्योंकि बच्चों ने गुस्सा दिलाया, इसके कारण मैं काम नहीं कर पाया. तो इसी सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान देना चाहिए. वो एक इंटरनल मैकेनिज्म्स है, उसको हम अंडरस्टैंड करें तो भी बहुत फायदा होगा. और एक चीज यह भी है कि जो लोग अपने आप को इन्फीरियर फील करते, जो हीनता के शिकार है, उनको भी गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उसके कारण वो बार बार करते हैं,
1: एम्पावर्ड फील करते हैं.
2: हाँ, नहीं तो आमतौर पर वो वीक फील कर रहे हैं, लगता है कि भी मेरे में कोई शक्ति नहीं है, परंतु तो गुस्सा करने से उनमें शक्ति आ जाती है.
1: बाहरी अच्छा शस्त्र लेके, जैसे आपने कहा, वहाँ वो एक शस्त्र लेके एक वेपन की तरह
2: यूज करते हैं. और कुछ अगर कारण देखने कि जब आपको नींद की कमी है, नींद आपको ठीक से नहीं आई, कब आपको बहुत भूख लगी है, जो लोग बीमार है ज्यादा, स्पेशली बूढ़े लोग, कि भी जो लंबे समय से बीमार है,

0: भी आप देखेंगे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो दूसरों पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, शायद अपने आप से ऐसी उनकी स्थिति है, क्योंकि बीमारी के कारण ही वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं। इन सब कारणों को एक बार अच्छे से समझना चाहिए, और जब आपको समझ में आ जाती मुझे क्रोध क्यों आता है, तो फिर उसका निवारण सचमुच जो आप पूछ रहे हैं वो भी पॉसिबल है।
1: तो मतलब पहला जो मुकाम हमें तय करना है वो है कि कारण तक पहुंच जाए, उसके बाद हमारे जो निवारण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो निवारण इज अगेन सेल्फ काउंसलिंग कैन बी रियली हेल्प
2: एंड अंडरस्टैंडिंग। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा था। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: और जो सरल सी बात, तो हम बच्चे थे तब से हमको ये बताई गई है कि जब गुस्सा आए तब उसको पोस्टपोन करो,
1: उदस्ता गिन लो, पानी पी लो,
0: कुछ करो, ये जो डे वर्क का, इफ यू रियली डू इट एवरी टाइम, सिर्फ हमको राइट मोमेंट पर करना चाहिए।
1: एक्चुअली वो पॉज जो है वो आपको एकदम से इंटरनलाइज कर लेगा कि कारण क्या था, एंड देन अगेन इफ वी आर एबल टू रिमेम्बर दैट इट्स अ वेपन विच विल नॉट वर्क, सो द मोमेंट विल रिमेम्बर दैट दिस इज अ वेपन विच विल इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वी शुड एक्चुअली वी कैन एक्चुअली कम बैक,
0: हम कुछ और करेंगे। आपने पानी पाल पी लिया और यू गॉट इन टच विथ रियालिटी, क्योंकि क्रोध व क्षणिक पागलपन है, तो पागलपन अगर आपका 15-20 सेकंड में कम हो गया तो फिर आप राइट टाइप ऑफ रिएक्शन भी दे सकेंगे। और कहीं और एक अच्छी युक्ति है, गहरा सांस लो। एक बार मेरे एक वर्कशॉप हुई थी, तो जिसमें एक टीचर ने कहा कि मुझे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल को पीट दिया और फिर कोर्ट में केस हो गया, करीब 10 साल तक मुझे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, और ये सारी प्रक्रिया में मैं अंत में अभी यह सीखा हूं कि जब क्रोध आए तो 4-5 गहरे सांस लो, तो उससे भी एक समय मिल जाता है, और समय मिलने के बाद आप राइट रिएक्शन दे सकते।
1: हाँ, वो एक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे ना, क्योंकि वो एक्शन ही हो गया, इतना एक्सट्रीम केस था। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, आज पूरा हमने ये जानने की कोशिश की कि गुस्सा जो है उसके कारण क्या हैं, क्योंकि कई तरह के कारण सामने आए, सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो कि एक बहुत इनहेरेंट कारण है, इनहेरेंट वजह है, वो ये कि दूसरे मेरी तरह समझें, जो मैं कह रहा हूं उस तरह हो जाएं, तब अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा आता है। उसके अलावा एक साथ भी गुस्से की हमने बात उसको ढूंढने की कोशिश की कि दूसरों को चेंज करने के लिए, दूसरे के भले के लिए, कोई अगर झूठ बोल रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तब मुझे गुस्सा आता है। वो सारे गुस्से कहीं ना कहीं एक शस्त्र के रूप में है हमारे हाथ में, जिसका कहीं कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। अगर हमने अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है तो गुस्से की जरूरत नहीं है, कई और तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में हम गुस्से की हमने इतनी बातें कर ली है, अब थोड़ा खुशी को भी तलाशने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि गुस्से का एंटीडोट जो है वो खुशी यानी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में कैसे आ सकती है, अभी हमने ये जाना कि गुस्से के कारण क्या है और गुस्सा कैसे हटाया जा सकता है। जैसे कारण पता चलेगा तो हम हटा भी देंगे, जैसे ही हटेगा तो शायद हैप्पीनेस आ जाएगी। तो चलिए, इस मोड़ पर आपसे ये भी कह देते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपका स्वागत है, आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसे जिंदगी में खुशी को हम अपना सकते हैं, तलाश सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है?

0: सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत।
2: दोस्तों, जीवन कई अनुभवों का एक संयोग है। कुछ अनुभव उसमें अच्छे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ तीखे, कुछ कड़वे भी होते हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों का काम एक ही होता है, हमें धनवान बनाना, हमें आगे बढ़ाना। उन अनुभवों को कैसे हम हमारे जीवन में संजोते हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं, ये निर्भर करता है हमारी सोच पे, हमारे संस्कारों पे। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं शांतनु आपका फिर से स्वागत करता हूँ। 90.4 FM रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ मुस्कुरा भी रहे होंगे। लेकिन आज आपकी मुस्कुराहट को हम थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी है जिन्होंने कईयों के जीवन में मुस्कुराहट को जगह दी है, खोए हुए मुस्कुराहट को वापस लाया है। आज हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित प्रज्ञा प्रसून जी। प्रज्ञा प्रसून जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए।
2: दोस्तों, एक पुरस्कार जब मिलता है किसी को तो वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है उस फील्ड में। उस व्यक्ति को वो पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि बाकी लोग जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिले, उन्हें उमंग उत्साह मिले। और प्रज्ञा जी जिस फील्ड पे समाज सेवा करती हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, मैं ऐसा कहूँगा। ऐसा एक क्षेत्र जहाँ पर लोग अपने आवेश में आकर के अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल न कर पाने की वजह से वो किसी और के जीवन को खराब कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसिड अटैकर्स की और एसिड विक्टिम्स की। प्रज्ञा प्रसून जी, आपसे ही सुनना चाहेंगे, व्हाट वाज योर लाइफ लाइक बिफोर एंड आफ्टर? आपका जीवन, आपके जीवन में जो घटना घटी उसके पहले और उसके बाद में क्या रहा, ये आपसे सुनना चाहेंगे।
3: मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बचपन से मैं बहुत शांत इंट्रोवर्ट स्वभाव की लड़की थी, तो बहुत सारी चीजें मुझे क्लास में हो या स्कूल के टाइम में या कॉलेज में, बहुत सारे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो मतलब लगता था कि सामने वाला बहुत अच्छा है कि वो बोल पाता है, मैं बोल क्यों नहीं पाती, मैं एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं ना क्यों नहीं बोल पाती, तो इस वजह से। लेकिन मिला जुला करके मेरी जिंदगी और मेरा जो छोटा सा परिवार था, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, बहुत बहुत खुश भरा भी बीता। मतलब मैं बहुत जब कॉलेज में गई तो स्कूल तक मैं बहुत ही शांत थी लड़की, इंट्रोवर्ट। कॉलेज में मेरी मुलाकात ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। जीना मतलब ऑफ कोर्स मतलब वैसा कि जिंदगी को एंजॉय करना सिखाया। बहुत मेमोरेबल समय रहा मेरा वो कॉलेज का और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में भी। और मैंने जैसे ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरी शादी तय हो गई और मैं मतलब बस शादी हो गई उसके जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और शादी के 12 दिन के बाद ही, मतलब एक समय था कि मुझे लग रहा था कि अब तो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, मैं जिस फील्ड में काम करना चाहती थी, एप्रल इंडस्ट्री में मेरी जॉब लगने वाली थी, मुझे जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी, मुझे लगा कि इससे अच्छा इंसान और कोई मुझे मिल ही नहीं सकता था। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और एक नई जिंदगी, नया समय, एक नया फेज अपनी लाइफ का मैं शुरू करने जा रही थी, कर चुकी थी। और बस शादी के 12 दिन के बाद ये घटना घटी और सब कुछ बदल गया। 2 दिन के अंदर मुझे मतलब मैं बचूंगी या ना बचूंगी इस पे भी सवाल आ गया, मेरी शादी बचेगी या नहीं बचेगी इस पे भी सवाल आ गया, मेरे कैरेक्टर पे सवाल आ गया कि गलती लड़की की ही है, इसने ही कुछ किया होगा, सब चीज पे सवाल आ गया। अब आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मतलब शुरुआत में 17 दिन तो मैं आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी, होश भी बस आता था, थोड़े कॉन्शियस रहती थी थोड़े देर के लिए, फिर चली जाती थी, अनकॉन्शियस रहती थी। लेकिन वो 17 दिन में मेरे

0: को मेरे घर वालों को बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ और जब मुझे ये मतलब मेरा कंडीशन थोड़ा स्टेबल हुआ और जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुई तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरी लाइफ ही बिल्कुल बदल गई एकदम। आगे क्या है अब मुझे नहीं पता, क्या होगा क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो सपोर्ट और मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा अहम रहा है। वो जो हिम्मत जो था ना वो मुझे मेरी माँ से मिला है और ना जो मैं कर पाई अपने घर वालों की वजह से ही कर पाई।
1: तो जैसे आपने जब आप अपना अनुभव सुना रहे थे तो उसमें मुझे दो तीन चीजें ऐसी मिली जिससे कि मैं आपसे और सुनना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि आपने एक वो समय आपने अनुभव किया कि भाई इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे एक सदमे में रहे होंगे जब ये तेजाब का आपके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो जो सदमा है उससे निकल के आना, उसके लिए आपने बताया आपके परिवार वालों ने आपको बहुत मदद किया, लेकिन एक अंदरूनी मदद भी चाहिए होती है। ऐसा हमने सुना है जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद तो कोई नहीं कर सकता, खुदा भी नहीं करता ऐसा कहते हैं। तो आपने बताया कि आपकी माँ का बहुत बड़ा सहयोग था, आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग था। मैं जानना चाहता हूँ प्रज्ञा ने प्रज्ञा को क्या सहयोग दिया, कौन सी वो चीज थी जिसकी वजह से आप थोड़ा हील जल्दी कर पाए?
0: मुझे समय लगा ये रियलाइज करने में कि मैं अब नॉर्मल नहीं दिखूंगी, मेरी लाइफ अब इतनी आसान नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है ये जो रियलाइजेशन है ना ये धीरे धीरे आया। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में ही सब वो बॉम्बार्ड हो जाता मेरे ऊपर तो शायद मैं नहीं सरवाइव कर पाती। मुझे लगता है पता नहीं क्या होता, मैं वो फेस तो जी ही नहीं हूँ। मैंने ये फेस जिया है जब मेरे लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे आया, ये रियलाइजेशन भी बहुत धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे समझ में आया कि लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, धीरे धीरे ये समझ में आया कि मुझे गलत ठहराया जा रहा है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी मैरिड लाइफ बचेगी कि नहीं, इसकी लाइफ तो खत्म हो गई, इससे अच्छा तो ये मर जाती। ये धीरे धीरे मुझे सुनने को मिला क्योंकि एक शील्ड था मेरे और लोगों के बीच में, मेरा परिवार। वो उस शील्ड ने बहुत सारी चीजों को फिल्टर करके
1: फिल्टर किया।
0: तो वो शील्ड मुझे बहुत समय तक बचाए रखा ये समाज के सारे इन सारे मतलब जो पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा था सारी चीजों से। तो धीरे धीरे जब मैं निकलना लोगों से मिलना शुरू की और तब मुझे समझ में आया कि ये तो बिल्कुल मुझे मैं अब करूंगी क्या। मतलब जब मेरी बैक टू बैक सर्जरीज हो रही थी एक साल के बाद मैंने अपनी फैकल्टी से टीचर से बोला कि मैम मुझे अब काम करना है, तो उनका जो रिस्पांस था बहुत ही ढीला था, उनको लगा मतलब और फिर मैं उनके पीछे पड़ गई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इग्नोर रही है मुझे कि अब तुम काम नहीं कर सकती हो, तुमको कौन यहाँ काम देगा, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ी रही इस होप में कि वो तो मुझे देंगी। लेकिन ये रियलाइजेशन भी मुझे कुछ महीनों बाद हुआ कि ये तो मुझे इग्नोर कर रही, मेरी नादानी समझिए या उतनी समझदारी नहीं थी मेरे अंदर कि लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये जो नादानी थी ना मुझे बहुत हेल्प की। मैं बोलूंगी मैं समझदार नहीं थी उस टाइम की, मुझे तुरंत समझ में आया कि लोग ऐसा भी करेंगे मेरे साथ कि इतना डिफरेंशिएशन होगा, इतना अलग मुझे खड़ा कर देंगे एक जगह को नहीं। लेकिन जब ये धीरे धीरे समझ में आया तब तक मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुकी थी, मैं मुझे ये समझ में आ गया था कि ठीक है। तब तक छोटी छोटी चीजें हो रही थी कि किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा रिएक्शन कर दिया, कोई देख के डर रहा है, कोई देख के बोल रहा है कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इससे अच्छा तो तू मर जाती। तो ये चीजें हो रही थी, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ कौन मुझे काम देगा, इतने महीने से मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे बस इग्नोर किया जा रहा है, ये हाँ हाँ बोल के एक महीने से अगले महीने टाला जा रहा है, तो ये इग्नोर करने का तरीका है। तो तब तक मैं अपने लिए कुछ और तैयार करने के लिए रेडी हो चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये नादानी और मुझे बहुत हेल्प की धीरे धीरे रिकवर करने में।
1: ये जो आपका भोलापन था, ये जो भोलापन था, ऐसा कहते हैं ना कि सम थिंग्स आर बेटर नॉट टू बी नोन, कुछ चीजें अच्छी होती है जब आप उनको जानते ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो भोलापन था इसने आपको मौका दिया कि आप खुद को प्रिपेयर करें।

0: और ये लगभग वैसे ही भोलापन है जैसे एक बीज में होता है। जब वो बीज जमीन के अंदर जाता है उसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता होता है, बाहर की दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है उससे, कितना बड़ा पौधा निकलेगा, क्या होगा, बट वो बीज जो है अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर रहा होता है कि भाई मैं तो बाहर आऊंगा, सनलाइट एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ अनुभव करूंगा। तो शायद ये बीज जो था, इस बीज ने ही शायद, मैं मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे क्लियर करेंगे और हमारे श्रोताओं को बताएंगे, शायद यही भोलापन था जिसने आपको अतिजीवन को भी उसका नींव रखने में मदद किया होगा। अतिजीवन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: अतिजीवन की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ था। बस मैं 17 दिन जब वेंटिलेटर पे थी तब तक मैं बेड पे थी, उसके आगे जब मुझे मेरे शरीर में इतनी ताकत आ गई थी, मतलब मैं होश में आ गई थी, मैं बेड से उतरती थी और आसपास के पेशेंट से मैं सर से लेकर के मेरे कमर तक बैंडेज में, मैं मेरा पूरा जो शरीर और चेहरा और गला ये सब कुछ, हाथ सब कुछ बैंडेज में रहता था, और तब भी मैं उतरती थी और बात करती थी दूसरे पेशेंट से। मुझे ये लगता था, मतलब उस टाइम वो एक समय था ना जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुई तो मैंने देखा बर्न पेशेंट सारे दर्द से चीखते रहते हैं, रोते रहते हैं, रात रात को मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि आसपास के जो बेड पे जो पेशेंट्स रहते थे वो बहुत रोते थे और बहुत दर्द से, छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, मतलब हर उम्र के लोग, और बहुत रोते थे। मैं भी दर्द में थी, मैं भी, लेकिन मैं मतलब मुंह से मेरे वो रोना और कराहना नहीं निकलता था मुझे, और मुझे लगता था कि वहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे उनको मदद करनी है, मुझे उनको थोड़ा मोटिवेट करना है कि वो समझें कि क्या चीजें जरूरी हैं। बहुत पेशेंट्स खाना खाना छोड़ देते थे, दवा नहीं खाते थे, और यहाँ मैं डॉक्टर से पूछ पूछ के मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या खाऊं कि मैं जल्दी ठीक नहीं करती थी। तो मुझे लगता था कि ये लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको मुझे मोटिवेट करना है कि ये खाएं ताकि ये भी जल्दी ठीक हो।
0: और लगता है आपकी एक गड़बड़ ही अलग थी, शायद आपको भगवान ने बनाया ही बिल्कुल डिफरेंट है।
1: थॉट प्रोसेस मेरा बिल्कुल अलग था। उस टाइम भी मुझे ये नहीं दिखता था कि मैं तकलीफ में हूँ और मुझे रोना है और मुझे ये करना है, मुझे सामने वाले की तकलीफ अपने आप अपने से बहुत ज्यादा दिखती थी और मुझे लगता था कि ठीक है मैं, मुझे बोलना है उनको, मतलब मुझे ये समझ में आता था कि ये खाएंगे नहीं तो इनका हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। और वो बर्न्स वार्ड में जो शुरुआत के 3.5 महीने में रही थी, हर रात वहाँ 2-4 पेशेंट्स मरते थे, हर रात ऐसे आते थे। सफदरजंग बर्न्स वार्ड इंडिया का सबसे बड़ा बर्न्स वार्ड है, वहाँ पे मैं शुरुआत के 3.5 महीने रही।
0: जस्ट टू आस्क, मतलब तेजाब वाले जो विक्टिम्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनकी संख्या उस वार्ड में कितनी थी? मतलब आर दे मेजोरिटी देर या जो बाकी हजार से होता है वो भी थे उसमें?
1: वहाँ पे हर तरह के बर्न पेशेंट थे, एसिड से भी जले हुए आते थे, ठीक होके जाते थे, बहुत कम जले, एसिड से मुझे लगता है कि मैं तो सबसे ज्यादा जली हुई थी, और इनफैक्ट मेरे से ज्यादा जले हुए पेशेंट बचते नहीं थे, मतलब वैसा होता था।
0: आई थिंक यू हैव 47% बर्न,
1: 40%
0: आपका।
1: हाँ, और 50 या 60% बर्न पेशेंट को बचने का, मुझे भी क्रिटिकल अनाउंस कर दिया गया था और मेरा डॉक्टर ने 17 दिन तक बोला था ये बचेगी नहीं बचेगी, वी आर नॉट श्योर। तो लेकिन मेरे से ज्यादा बचे हुए पेशेंट तो कोई नहीं बचते थे वहाँ पे, और मेरे से जितने भी थे मोस्टली कम ही जले हुए पेशेंट्स रहते थे। तो फिर भी उनका तकलीफ, और स्पेशली जब बच्चे होते थे जो एक्सीडेंटली भी जलते थे और कोई पर्पसली भी किसी को जलाया, वहाँ पे आधी औरतें तो सब पर्पसली जलाई हुई रहती थी, कोई डाउनी केस में, कोई किसी चीज में, किसी को किसी के रिलेटिव ने जला दिया, मतलब कुछ भी जमीन का इशू हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ वैसे जल गए, आधे से ज्यादा वहाँ पे औरतें होती थी और बाकी का कैटेगरी बच्चे और मेन का भी होता था। तो मतलब बस मुझे लगता था कि मुझे किसी तरह इन सबको बचाना है, और वहां से मैं क्या करती थी, मैं मिलती थी और बाद में भी मैं टच में रही, डिस्चार्ज होने तक मैंने बहुत सारे वहां पे दोस्त बनाए और बाद में भी मैं मिलती थी उनसे, टच में थी बहुत सारे दोस्त जिंदगी।
0: ये चीज मेरे को थोड़ा और आपसे जानने का मन कर रहा है कि क्या ये हमारे समाज में आपको देख के ऐसा लगता है, उस टाइम पे तो शायद बिकॉज यू आर द फर्स्ट विक्टिम, राइट, आपने अपने सामने इस चीज को अपने साथ होते हुए देखा। एक होता है हम किसी और के जीवन को देखते हैं।

0: सुनते हैं, हमें पता चलता है उसके बारे में, और एक होता है खुद के साथ होना। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करना, अभी जैसे मैं जान रहा हूँ कि भाई ये परीक्षा की घड़ी होती है किसी के लिए जब उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो ऐसे में उसको मैं मदद करने पहुंच सकता हूँ। लेकिन जब आप खुद ही उसके एक शिकार है तो आप अपना नहीं सोच करके किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई?
1: मुझे नहीं पता कहाँ से आई, लेकिन एक चीज है कि मैं बचपन से लोगों की मदद हमेशा करना चाहती थी और अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ज्यादा मैंने मतलब सोचा है कि मैं कर लूँ। मतलब एक छोटा बच्चा होते हुए भी मुझे लगता था कि मैं दीदी लोग की हेल्प कर दूंगी, उनको ये ना हो, उनको ये ना हो। मैं सोचती थी कि मैं अपनी माँ को हर जगह प्रोटेक्ट करूँ। मतलब एक यंग टीनेजर होते हुए कहीं भी मम्मी जाती थी या मंदिर में भी तो कोई मेरी माँ को टच ना करे, वैसा मैं शील्ड बन के खड़ी रहती थी। वो एक कहीं ना कहीं हमेशा था मेरे। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने भाई बहनों में, तो अपने छोटी बहन और भाई का कोई कुछ हो ना, वो शील्ड बन के खड़ी रहती थी मैं हमेशा। तो वो एक बचपन से था और ये मेरे मम्मी पापा से मिला है। मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा को लोगों का मदद करते हुए देखा है, कोई अच्छा करे उनके लिए या बुरा करे, राइट? जिन्होंने उनके लिए बुरा बोला है उनको भी आगे बढ़ के जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने मदद किया है ऐसा। और मुझे बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि कैसे है मेरी मम्मी, कि ये तो अभी इनको ये आंटी गलत बोल रही थी कुछ दिन पहले, फिर भी जाके अभी उनके घर में उनको हेल्प कर रही है, कुछ वो हुआ उनके बच्चे को हेल्प कर रही है। ऐसे ही बहुत सारे रिलेटिव भी होते थे जो बुरा बोलते थे या कुछ कर देते थे बुरा, और फिर भी जाती थी और वही करती थी, मतलब उनके बच्चों का इतना केयर कर रही है, कैसी है मम्मी। मुझे लगता था मतलब और मेरे पापा के लिए तो मतलब जहाँ जहाँ मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जहाँ जहाँ काम किए हैं, वहाँ ऑफिस में अगर हम लोग चले जाते थे तो वहाँ 10 लोग आके हमसे मिलते थे, इसलिए कि ये वीपी सिंह की बेटी है और इसलिए कि आपके पापा ने हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम। तो ये सुन करके प्राउड होकर के बड़ी हुई हूँ कि आपके पापा ने यहाँ इस एरिया में 150 पौधे लगा दिए जो अब पेड़ हो गया है और अब हम लोग उसका फल खाते हैं। पापा जहाँ जाते थे तो ऐसा करते थे, तो मतलब कि ये एरिया को अच्छा इतना सुंदर बनाने में आपके पापा का हाथ है, तो बहुत प्राउड फील होता था और अच्छा लगता था कि समाज के लिए करते रहना। और मतलब हमने यही सीखा है कि आसपास लोगों की मदद करते ही रहना है, वही हमारी जिंदगी है। हम अपने आप में नहीं रह सकते हैं, हमको बाहर निकलना है, लोगों की मदद करनी है।
0: ये बहुत अच्छा एक मंत्र दिया आज आपने हमको भी और हमारे सारे श्रोताओं को कि आपको सदा ही सबके लिए सोचते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। चाहे आप वो पेड़ पौधे लगा करके पूरे दुनिया के लिए कुछ सोच सकते हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति को उसके बैठ करके बात भी करने से उसकी मदद हो सकती है। कई बार फिजिकली हो सकता है हम कुछ मदद ना कर पाए, लेकिन सहानुभूति, साथ में बैठना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो चीज आपने सीखी, परोपकार, करुणा, दया, ये आपको आपके परिवार से, उसके परिवेश से, उसके संस्कारों से प्राप्त हुआ और वो चीज आपको शक्ति देती रही कि आप ऐसे नाजुक घड़ी में भी न केवल अपना लेकिन आसपास के लोगों का भी सहारा बन पाए। आपने बीच में एक बात कहा कि भाई आपकी मम्मी जो थी जो उनके लिए बुरा करते थे उनके लिए भी वो आगे अच्छा ही करती थी। जब आपके साथ जब ये एसिड अटैक का हादसा हुआ और फिर बाद में मुझे पता चला कि उस व्यक्ति को जेल हुआ, 4.5 साल की सजा हुई, तो आपको आपका क्या था उसमें, मतलब आपको कैसा लगा? What was your reaction with this?
1: देखिए, शुरू में तो मैं झूठ नहीं कहूंगी, बहुत शुरुआत में बहुत गुस्सा था, मतलब शुरुआत में गुस्सा था मुझे कि ये क्यों किया। मतलब गुस्सा में ज्यादा मुझे सवाल था कि क्यों क्यों हुआ और क्यों किया, मेरी गलती क्या थी, और मतलब जानना था मुझे, सवाल था। और लेकिन एक समय हुआ कि अब मैं मतलब ऑफकोर्स जो बीच में कभी जब सर्जरी और इतनी सारी चीजें उसके साथ बार बार सर्जरी से निकलना, और ये कभी कभी दिल बहुत दुखता था कि ऐसा क्यों, ऐसा किस कोई इंसान कर सकता है किसी के साथ, क्यों ऐसा। मतलब मेरी अच्छी खासी जिंदगी थी, सब कुछ खत्म हो गया। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि गुस्सा कुछ नहीं, गुस्सा करने से कुछ नहीं हो सकता। और पहली बात, और दूसरी बात कि बहुत मैंने अपने आप को कि मैं गुस्सा कर क्यों रही, क्यों मैं उस ग्रज के अंदर बैठी हुई हूँ जहाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरी

0: साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों उसने ऐसा किया, उसको सजा मिलनी चाहिए और ये सारी चीजें। बहुत मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जो भी इंसान जो भी गलत काम करता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी चाहे आप उसकी अपब्रिंगिंग ले लीजिए या वो यू नो माहौल जो उसको उस तरीके से बना देता है और वो सिचुएशन में ला देता है कि वो कुछ गलत काम करते। तो मुझे ओवरऑल इन चीजों को, इन थॉट प्रोसेस को, मेंटालिटी को समाज से चेंज करने का मैंने ये सोचा कि मैं उस इंसान तक क्यों लिमिट रहूं और अपनी ग्रज पे बैठी रहूं, उससे बेटर कि मैं आसपास अपने उस समाज, उस थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी पे काम करूं कि लोगों के अंदर प्यार कैसे भरना है, राइट, दूसरे के लिए एम्पथी कैसे भरना है, उस चीज पे मैं काम करूं और एक बड़े स्केल पे चेंज लाऊं। जैसे और मैंने बात करना शुरू भी किया बहुत सारे मतलब ऐसे सर्वाइवर्स से कि तुम क्या सोचती हो और क्यों तुमको ऐसा लगता है कि उसको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए, और सबका एक ही जवाब रहता था कि सजा सेम मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों, उसके बाद तुमको क्या हासिल होगा, क्यों ना हम इस चीज पे काम करें कि हम इस समाज से ये थॉट प्रोसेस, ये गंदगी निकालने का काम करें कि मतलब ये चीजें रहे ना। तो मैंने अपना पूरा फोकस उन लोगों की मदद में और अवेयरनेस पे अपना पूरा फोकस और अपना पूरा एनर्जी निकाला, और फिर ये चीजें, ये जो ग्रज और ये सारी चीजें, ये बहुत पीछे हट गई, पीछे चली गई कि मतलब मैंने कभी उस चीज पे फोकस ही नहीं किया कि मुझे इस ग्रज में बैठना है, क्योंकि मैं अपने आप को ही तकलीफ दे रही थी कि हमेशा ऑपरेशन के टाइम में जाती थी, दुखी रहती थी, रोती रहती थी, तो क्या कर रही थी मैं, रो करके मैं क्या हासिल कर रही थी, ठीक है। तो अगर मैं कुछ अच्छी,
1: ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ा आज हम सबके लिए कि जब भी हम किसी ऐसे नाजुक परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी परीक्षा आती है, हमें ये पूछना है इस गुस्से से मुझे क्या मिलने वाला है, या रोने से मुझे क्या मिलने वाला है, या इस चिड़चिड़ाहटपन से मुझे क्या हासिल होने वाला है। ये जब हम सवाल पूछेंगे कि इसमें मेरा फायदा क्या है, तब शायद हम उस चीज से हट करके कुछ पॉजिटिव करने में लग पाएंगे, जैसे आपने किया ना। मतलब गुस्सा तो पहले आया, आपने बताया, धीरे धीरे आपने उसको सबसाइड किया विद अ पॉजिटिव थॉट, इसको मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा समय सफल हो। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने दिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए कि मुझे क्या मिल रहा है इससे, आई मस्ट आस्क दिस।
0: Exactly, और मतलब rather than focusing on the negative part of it, अगर मैं उसी चीज को एक opportunity की तरह देखूं कि मैं अब इस चीज को experience कर चुकी हूँ, मैं लोगों का दर्द अब बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और मुझे लगता है इस फील्ड में जहाँ जहाँ मैंने कमियाँ देखी अपने ट्रीटमेंट और अपने इसमें और पेशेंट्स के साथ, मैं उन चीजों को सुधारूं, उन चीजों पे काम करूं ताकि वो चीजें मेरे बाद और जितने भी सर्वाइवर्स आए या जिनके के साथ, एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उस चीज पे मैं काम करूं, दूसरा अगर किसी के साथ होता है तो मेरे जितना मतलब तकलीफ, या मैं, मेरे समय में क्या था, आप गूगल पे भी सर्च करते हैं एसिड अटैक 2006 में, कुछ नहीं मिलता था, तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन उनके लिए लेके आऊं और एक ऐसा सपोर्ट बनूं उनके लिए जो मैं चाहती थी कि मेरे लिए कोई उस चाहिए, तो मैं वो सपोर्ट बाकी लोगों के लिए कि आगे अगर किसी के साथ वैसा हो तो मैं वो सपोर्ट बनूं, मैंने उन चीजों पे काम करना शुरू किया और वैसे ही अतिजीवन की शुरू।
1: तो अतिजीवन में और क्या क्या चीजें होती हैं हमारे श्रोताओं को, तो उनके लिए क्या है, मतलब अगर वो अतिजीवन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें मदद करना चाहते हैं, या अतिजीवन का प्रोफाइल क्या है, वो क्या क्या करता है, अगर वो आप हमें बताएं तो बहुत अच्छा हो।
0: अतिजीवन फाउंडेशन की शुरुआत इसलिए हुई थी, सबसे पहला एम यही था, एसिड अटैक बहुत अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ होता है और उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करा सके प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में एक एक सर्जरी कराने के लिए 6-6 महीने की लाइन, तो एक अच्छा ट्रीटमेंट, बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट और सही टाइम पे उनको मिले, प्रोवाइड हो और उनको उसके लिए पैसे खर्च नहीं करें। तो सबसे पहला एम हमारा यही था कि अतिजीवन के थ्रू हम पेशेंट को फ्री रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रोवाइड कर सकें, वो हम करते हैं, उनको चाहे 2, 4, 5, 10 कितनी भी सर्जरी करनी हो, पेशेंट के लिए सब कुछ फ्री है, उनका ट्रेन का, आने का अरेंजमेंट, रहने का, उनकी सर्जरी कराना और फिर उनको वापस सही सलामत अच्छा रिकवर करके।
1: ये पैन इंडिया होता है या किसी एक राज्य में होता है?

0: नहीं, पेशेंट हमारे पैन इंडिया हैं, ऑल अक्रॉस, गुवाहाटी से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर के जयपुर में भी है, मतलब राजस्थान में भी है, साउथ में भी है, मैं तो खुद साउथ में बेस्ड हूँ, तो हर जगह है। और मेन हमारा सेंटर्स है, हमारा 18 हॉस्पिटल्स के साथ पैन इंडिया टाई अप है, जहां हम सर्जरीज कराते हैं, जहां हम मेडिकल कैंप कराते हैं, सर्जिकल कैंप्स, और वहां पे हम पेशेंट को बुलाते हैं। तो जैसे हमने हल्द्वानी में भी मेडिकल कैंप किया है, तो हल्द्वानी में इसलिए किया क्योंकि उत्तराखंड के पेशेंट्स जो हैं पहाड़ी एरिया के, वो लोग दिल्ली तक नहीं आना चाहते हैं। अब हमारा क्लोजेस्ट दिल्ली था, तो हम उनको दिल्ली बुलाते थे, नहीं आते थे। और हमारे लगभग 12-15 पेशेंट ऐसे थे जो 3-4 साल हो गए थे हम बुलाते बुलाते, नहीं आते, तो वो दिल्ली भी नहीं आते, क्योंकि पहाड़ी लोग थोड़ा डरते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जबकि मैंने पूरा अश्योरेंस दिया कि मैं आपका आने जाने, रहने, सर्जरी, सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं खर्च करना है। तो 3-4 साल मैंने वेट किया, वो नहीं कराते हैं, बस बोलते हैं मदद करो मदद करो। अब कैसे मदद करो उनको? तो मैंने चेन्नई से 5 डॉक्टर की टीम मैं लेके गई हल्द्वानी में, हमने वहाँ टाई अप किया एक हॉस्पिटल के साथ, सेंट्रल हॉस्पिटल, और वहाँ पे हमने सर्जरी कराई, जहाँ 24 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हमने 4 दिन के अंदर कराया। तो हल्द्वानी, मतलब पूरे हल्द्वानी के आसपास के पीलीभीत सब जगह हमने जब मेडिकल कैंप किया, तो हमारे पास 65 पेशेंट, बर्न पेशेंट आए थे, एसिड अटैक और बर्न पेशेंट सब। तो सिर्फ उत्तराखंड के 65 बर्न पेशेंट आए थे, उसमें से हमने सिलेक्ट किया कि किनको, क्योंकि हम 65 की तो नहीं कर सकते थे सर्जरी, तो हमने उसमें से सिलेक्ट किया कि हम जो मेजर, जिनका इम्पोर्टेंट, जिनको मोबिलिटी प्रॉब्लम है, उनका हम पहले प्रायोरिटी में डाल करके और करेंगे। तो हमारा टारगेट 15 सर्जरी करने का था, वही हमारे करके गए थे, लेकिन इतने पेशेंट्स थे और हमको लगा सबको जरूरत क्रिटिकल है, बहुत सारे को मोबिलिटी प्रॉब्लम था, कोई अपना गला नहीं हिला सकता था, कोई मुंह नहीं खोल पा रहा था, किसी कोई आंख नहीं, आईलिड नहीं थी किसी की, तो ये सब सारे हमारे क्रिटिकल सर्जरी में आता है कि ये करना ही है। तो हमने टोटल 24 सर्जरीज करी वहाँ पे। तो ऐसे ही जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लेके भी जाते हैं। मेनली हम चेन्नई बुलाते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे हमारा 5 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो कहीं भी जहाँ डॉक्टर अवेलेबल है 5 हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम कराते हैं। और वो बेस्ड है कि आपको किस तरह की स्पेशलिटी सर्जरी करानी है, आईलिड रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो वो हमारा शंकर नेत्रालय में होता है, नोज रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर गणपति, वो बेस्ट हॉस्पिटल में करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग वो है, तो स्पेशलिटी आपको कान की सर्जरी करानी है तो वो कहाँ होनी है, तो वैसे करके हम सर्जरी कराते हैं। तो ये एक काम है अति जीवन का। उसके अलावा सर्जरी करा दिया हमने, ठीक करा दिया, अब क्या लाइफ, वो 4-5-10 साल से वो घर पे बैठे हैं, उनका मतलब लाइफ एक तरह से स्टॉप हो जाती है, एजुकेशन स्टॉप हो जाता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है? तुम घर पे तो जिंदगी नहीं बिता सकते हो। एक तो काउंसलिंग थ्रू आउट बहुत जरूरी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स उनका अच्छा करना है, इंग्लिश ट्रेनिंग, हमारा पूरे साल भर क्लासेस चलते रहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब क्या, तो आगे आपको कुछ न कुछ काम कर, जिंदगी बिताने के लिए आपको काम करना है, पैरों पे अपने खड़े रहना है, ताकि आप अपने आप को मदद कर सके, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए पहला स्टेप क्या है, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। आप अगर 10th नहीं किए हैं या 12th नहीं किए हैं और आपको आगे पढ़ने की इच्छा है, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपका एजुकेशन कम्प्लीट कराना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इच्छा नहीं होती कि मैं अब वापस पढ़ाई में लगूं, तो उनको हम कोई भी स्किल सिखाते हैं जो जिस तरीके का है। तो हमारी कोई पेशेंट, कितनी सारी पेशेंट्स हैं जो सब्जियों का दुकान चलाती हैं, तो उनको हम उनका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सिलाई का काम करती हैं हमारे साथ, छोटे छोटा काम करती हैं, उनको काम के हिसाब से वैसा। बहुत सारी ऐसी पेशेंट जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उनको हम ये सारे स्किल में ट्रेन करते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन काम तो करना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है। कुछ भी कमाओ, 4,000 ही कमाओ महीने का, लेकिन इतना कमाओ कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एजुकेशन कंप्लीट करके, जिनको हमने इंडस्ट्री में प्लेस किया है, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे मतलब सर्वाइवर्स काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन एम है कि उनको जो मतलब जितनी भी सर्जरीज, जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो करा के और उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये वहां से लेके पूरा ट्रीटमेंट से लेकर के उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करता है अति जीवन।
1: अति जीवन ही नाम क्यों?

0: अतिजीवन एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम होता है जीवन के बाद का जीवन। तो मेरा एम यही था कि शरीर जल जाता है लेकिन हम फिर भी टट के खड़े रहते हैं। हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, एक चेहरा आइडेंटिटी होती है हमारी, तो वो खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग हमको पहचानते नहीं है जो हमसे पहले मिले होते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हम अपना जीवन फिर से खड़ा करते हैं, हर कुछ से बनाते हैं।
1: ये अपने आप में एक बहुत आध्यात्मिक बात है, क्योंकि गीता में भी कहा हुआ है कि भाई जो सोल है, प्राण है, आत्मा है, वो न जलती है, न बुझती है, न मरती है, न कुछ भी, उसमें उसे कोई फर्क नहीं होता। ये जो हौसला है, ये जो अंदर का जो प्राण है, जो कुछ करने का, कुछ लोगों तक कुछ भलाई करने का जो ये हौसला है, इसको कुछ नहीं हो सकता। चाहे जो आवरण है, जो शरीर है, उसको भले कुछ भी हो रहा है, ये जो मैसेज आपने, स्पिरिचुअल मैसेज जो आपने अपने नाम के साथ, फाउंडेशन के नाम के साथ दिया सबको, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट साथियों, आपने भी सुना कि अतिजीवन केवल उन लोगों को सर्जरी के द्वारा ही मदद पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। अतिजीवन उनको शिक्षा भी दे रहा है, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है, उनको जो भी किस्म का अवसर या सुविधा चाहिए वो अतिजीवन प्रोवाइड करता है। और आप ताउम्र जुड़ सकते हैं अतिजीवन के साथ, दिल से जुड़ सकते हैं, अपनी मदद से जुड़ सकते हैं। प्लीज जरूर जुड़िए, क्योंकि मुझे लगता है एक व्यक्ति या एक संगठन कभी कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता जब तक हम सब सांस में ना आ जाए। एक होता है सर्जरी करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, फिजिकली उनको मदद करना। दूसरा होता है उनके मन को हील करना, बिकॉज ये एक सदमा होता है, सदमे से उभरना, पोस्ट ट्रोमेटिक काउंसलिंग जो होता है, ये सब चीजें शायद जैसा आपने बोला कि जो बहुत ही निचले दर्जे से आते हैं, आर्थिक रीति से, मैं निचला दर्जा यहाँ पर केवल आर्थिक रीति से कह रहा हूँ, उनके लिए ये सब काउंसलिंग वगैरह जैसे तो कोई सपना ही होता है। ऐसे में इन लोगों तक काउंसलिंग पहुंचाना, या इनको किस तरीके से आप काउंसिल करते हैं?
0: देखिए, हमारे मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, जो ये काम करते हैं फोन पे। और अब तो पैंडेमिक ने हमको ये भी सिखा दिया कि बहुत सारी चीजों के लिए हम ऑनलाइन इंटरनेट का सहारा ले सकते, बहुत चीजें हमारी अब ऑनलाइन होती है, काउंसिलिंग भी ऑनलाइन होती। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं हर जगह, हर शहर में, मतलब मेनली बड़े बड़े शहर में या ऐसे ट्रेवल, और मैं वहाँ पे सारे पेशेंट्स को बुलाती हूँ, उनका आने जाने, वहाँ पे रहने का खर्च मैं देती हूँ कि तुम मुझसे मिलो, आओ। और हम लोग एक बर्न्स ग्रुप मीटिंग्स करते हैं हर जगह, साल में एक बार तो एक शहर में कर ही लेते हैं। तो उतना वो करते हैं, सारे पेशेंट्स वहाँ के, जो आस पास एरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं, सबको मिलाते हैं और मिलते हैं वहाँ पे। एक दिन का पूरा वर्कशॉप, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वहाँ, डॉक्टर से मिलना, सब कुछ होता है। और ये ग्रुप मीटिंग्स करने का मकसद यही है कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज में जो पेशेंट्स रहते हैं, उनको कभी एक्सपोजर ही नहीं मिलता कि वो उनकी जिंदगी इसके आगे भी हो सकती है। वो चार दीवार के घर में बंद कर दिया जाता और बोल दिया जाता है कि तुम बाहर निकलोगे तो हमारी बेइज्जती होगी। परिवार वाले बोलते हैं तुम बाहर निकलोगे तो लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, उससे अच्छा तुम घर ही में रहो। तो वो समझ लेते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा अब जिंदगी जो बीतना है वो घर के अंदर ही बीतना है। जो करेंगे, जो जैसा घर वाले बोलेंगे, चाहे वो ससुराल वाले या अपने घर वाले, जो जैसा बोलेंगे हमको वैसे ही रहना है, यही हमारी जिंदगी है, क्योंकि हमारी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। तो ये उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना और ये बताना कि तुम अभी भी अपने सारे सपने अचीव कर सकते हो, अब सब कुछ कर सकती हो, उनको ये हिम्मत देना कि मैं तुम्हारे साथ, तुम जो करना चाहती हो वो तुम करो। और देखो, ये पांच लड़कियां हैं जिन्होंने, जो तुम्हारे तरह ही जिंदगी जी रही, लेकिन देखो आज ये कितना, किस मुकाम पे पहुंच गए। तो वहाँ एक ये भी मकसद है कि सक्सेस स्टोरीज बता कि देखो ये जो लड़की है, ये भी वहाँ गोंडा जैसे गांव में रह रही थी, लेकिन आज ये दिल्ली में एक बड़े 5-स्टार होटल में काम कर रही है और आज 20,000 रुपए महीने का कमा रही है। बहुत बड़ी बात है, हाँ, दिल्ली में रह रही है, सारा सपोर्ट उसको मिल रहा है। किस चीज की कमी है तुमको? तुमको बस अपने आप में हिम्मत बनानी है, बाकी हम लोग हैं बाकी का देखने के लिए। तो ये
1: शायद ऐसे ही हिम्मत बांधने के लिए आपसे अच्छा जो निमित्त है, मैं कहूंगा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ईश्वर को और कोई मिला नहीं, इस वजह से आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ टोटल?
0: हमारे संस्था से लगभग 500 पेशेंट्स मतलब जुड़े हुए हैं ऑल अक्रॉस।
1: दैट्स अ बिग नंबर।
0: हाँ, हमने लगभग

0: मतलब 250 सर्जरी से ज्यादा हम कर चुके हैं, मतलब ये कैंप्स और ये सब की हर छोटी बड़ी सर्जरी, मतलब सिंगल सिंगल की सर्जरी हम लोग करते हैं और कैंप्स में भी करते हैं, तो सब मिला जुला करके ये है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि बहुत सारी लड़कियां अब एमएनसीज में हायर हुई हैं। पिछले कोविड के टाइम में भी बहुत सारी एमएनसीज ने हायर किया है हमारी लड़कियों को और बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा कर।
1: तो ये जो लोगों के जीवन में आपने एक बदलाव लाया, ये केवल उनके जीवन में बदलाव नहीं था लेकिन समाज में जो मुख्य धारा से में जो लोग हैं, जैसे आपने बताया एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब के अंदर भी जो लोग उनके साथ रहते हैं उनके अंदर भी एक विचारधारा का परिवर्तन आता है।
0: बिल्कुल,
1: एंड दैट चेंजेस अ लॉट, इट चेंजेस अ लॉट बिग नैरेटिव, क्योंकि केवल जो प्रताड़ित है, जो परेशान है, जो शिकार है, केवल हमारा मुख्य टाइम जो हमारा होता है समय वो उन पे ही जाता है। कई बार ये नहीं सोचते कि अगर इनको हम लोगों के बीच में लाते हैं तो लोगों को भी जानने, देखने और खुद को समाज में अपने परिवार को शिक्षित रखने का एक मौका मिलता है। मुझे लगता है ये जो आपने कदम उठाया कि लोगों को मुख्य धारा में अवेयर करने का, सोसाइटी में लोगों को इस तरीके की जो अपराध हो रहे हैं इनके पीछे जो कारण है उनके साथ जोड़ने का जो आपने काम किया, ये काबिले तारीफ है। और इस वजह से भारत सरकार ने आपको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। जब ये पुरस्कार आपको दिया गया तब आपके मन में क्या चल रहा था?
0: ये एक सपना ही है, वो दिन कैसे बीत गया और क्या हुआ वो तो मतलब अभी भी एक सपना ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा, बहुत मुझे लगता है कि सरकार ने या समाज ने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि मैं कुछ कर रही हूँ, वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा उस चीज ने मोटिवेट किया, मोटिवेशन भरा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दी कि मुझे और कितना ज्यादा करना है, राइट? क्योंकि अब लोग जब भी सोचेंगे कि बर्न और एसिड अटैक पेशेंट्स को मदद चाहिए तो वो मेरा नाम सोचेंगे, तो अब ये मेरी और बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज को और अच्छे से और बड़े लेवल पे लेके जाऊं और करूं, ताकि मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक रीच आउट कर पाऊं और उनकी लाइफ चेंज कर पाऊं, उनको रिहैबिलिटेट कर पाऊं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि एक बार जब आपको रिकग्निशन मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, सरकार से, भारत सरकार से, तो लोग भी आपके काम को रिकग्नाइज करने लगते।
1: तो अब जब आपको ये सम्मान मिला और उसके बाद जब आपका काम भी बढ़ा है, आपके आसपास लोग भी जानने लगे और कई लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई, मुझे लगता है आपने जरूर इस बात को उन तमाम आला अफसरों तक, सरकार तक पहुंचाने की बात की होगी डेफिनेटली, कि जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वहाँ पर भी काम हो सकता है। लोगों को सतर्क करना, उनको सजग करना कि भाई आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करो, और अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड, आप सोचो कोई भी जाए अदना सा व्यक्ति दुकान में जाके बोले भाई मुझे तेजाब खरीदना, एसिड खरीदना, और उसको दे विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट एनी रेगुलेशन, इन चीजों पे भी काम होना जरूरी है। इस पे आपका क्या विचार है?
0: मैं तो डे वन से इन चीजों पे काम कर रही हूँ। एसिड सेल रेगुलेशन का भी हमने कैंपेन और मतलब 2013 में शुरू किया था, और अभी भी मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, कॉर्पोरेट में भी करती हूँ, कंपनीज में सेंसिटाइजेशन करती हूँ, अवेयरनेस सेशंस करती हूँ, और मेरा यही मकसद रहता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी करती हूँ, और मेरा यही मकसद रहता है लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि जो लीगल एस्पेक्ट है लोगों को नहीं पता होता है, जो लॉ है एसिड सेल को लेकर के हो या सर्वाइवर के टूवर्ड्स हो, या अवेयरनेस कि आपके साथ अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो आपको करना क्या है, कहाँ लेके जाना है पेशेंट से लेकर के आपके सामने अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है तो आपको करना क्या है, आपको उसको बेचारी नहीं बोलना है, आपको उसको ये कंपनीज में मोस्टली होता है कि आपके वर्क स्पेस में अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर काम कर रहा है तो आप उसको मतलब कि बहुत आपको उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देना, उसको बस एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह आपको ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत मतलब जो लीडर्स होते हैं या कोलीग्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि हम रिएक्ट कैसे करें, हम कैसे बात। तो सबसे पहली बात कि आप किसी भी और दूसरे लोगों से जो अपने कोलीग है, दूसरे कोलीग्स उनसे जो बात करते हैं वैसे बात कीजिए, आप उसकी डिसेबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पास उसको मोबिलिटी प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको किस तरीके की डिसेबिलिटी है, और वो आप उससे बहुत आराम से धीरे से स्लोली बात करते करते समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करने की हमेशा जरूरत नहीं है, राइट। और आप उसके हिसाब से आप अवेयर रहिए कि उसका जो मोबिलिटी प्रॉब्लम है या जिस तरह की डिसेबिलिटी है, आपको उसको कैसे डील करना है, राइट। अगर जिसको लो विजन है तो आपको किस तरीके का काम देना है, अगर आपका अगर आप मैनेजर हो उसके, या इस लेवल पे अवेयरनेस की यू नो एसिड अटैक सर्वाइवर की भी लाइफ इजी होनी चाहिए। हर जगह उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वर्क स्पेस से लेकर के जहां वो पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में से लेकर के। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आप अपनी यंग जनरेशन को इतना अवेयर करें कि आपको बिहेव कैसे करना है, आपको अलर्ट कैसे रहना है, विजिलेंट कैसे रहना है, ऐसे अटैक्स आप रोक कैसे सकते हो। बहुत जरूरी है यंग जनरेशन को ये समझाना कि अगर स्टॉकिंग हो रही है आपकी या आपको लग रहा है कि वो खतरा बन सकता है, तो आपको तुरंत अलर्ट करना है अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास यू नो टीचर्स हैं जो भी हैं, उनको अलर्ट करना, उनको बताना है कि ऐसी चीजें हैं, ये हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती लड़कियां ये करती हैं कि स्टॉकिंग वो लोग रिपोर्ट नहीं करते, उसके ऊपर भी सजा है। ये चीजें बताना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको बोलना होगा, आपको आपके आसपास जो भी आपको हेल्प मिल रहा है वहां तक रीच आउट करना पड़े। तो इन सब चीजों पे हम काम करते हैं और मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के अटैक्स रोकने में, इस टाइप के अटैक्स होने के बाद किसी को हेल्प करने में। तो तरफ से
1: आप भारत में इस चीज का प्रचार भी कर रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच भी रहे हैं, उनके पास पहुंच के उनको मदद भी पहुंचा रहे हैं, तो आपने भारत का बहुत भ्रमण किया होगा। मैं समझता हूँ देश के हर कोने में आप पहुंचे होंगे। कौन सी एक बात भारत को भारत बनाती है?
0: मुझे लगता है वो जो एम्पथी रहता है लोगों को और एक जो इमोशनल टच रहता है जो हमारे एक दूसरे के साथ है, जो कनेक्ट, जो हम अभी भी कहीं भी जाएं, मतलब मैं बोल रही हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएं या कहीं भी जाएं, मतलब दिल्ली जाएं या कहीं भी जाएं, मतलब दिल्ली एनसीआर किसी भी जगह जाएं, इमोशनल कनेक्ट रहता है हम लोगों का और हम एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं और जो एम्पथी एक दूसरे के लिए रहती है और मोस्टली रहती है, मतलब मोस्टली मैं हर जगह देखती हूँ वो रहती है। तो मुझे लगता है ये बाहर मैंने कहीं नहीं देखा है और इतना ज्यादा नहीं देखा है जितना मैं यहाँ पे लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर।
1: क्या आपको लगता है ये जो एम्पैथी है, सद्भाव है भारत का, जो भारत को खास बनाती है आपके नजरिए से, क्या ये सद्भाव हमारे यंग जनरेशन को पहले से ज्यादा सतर्क, पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड कि भाई ऐसा कुछ होने ही न दे और अगर होता है तो उसमें क्या करें, ये सद्भावना कैसे उसमें काम कर सकती है? हाउ डज दिस एम्पैथी कैन वर्क देयर?
0: सी एम्पैथी कैसे काम करेगी, डेफिनेटली अगर आप अलर्ट हैं और यू नो दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मतलब अलर्ट रहें, आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप एम्पैथाइज करेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। और अटैक कैसे नहीं हो अंटिल आप विजिलेंट हैं अपनी सारी सिचुएशन और अपने सराउंडिंग से, आप इस चीज को रोक तो नहीं सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विजिलेंट रहें अपने आसपास और लोगों से कनेक्ट हो करके उनको रीच आउट करें हर तरह के सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत बार अब मुझे लगता है बहुत समय चेंज हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। 15 साल पहले जो लड़कियां मुंह नहीं खोल सकती थी अपने मम्मी पापा के पास, आज का जनरेशन बताता है, हर चीजें बताता है, बात बोलता है, सवाल करता है। एक तरह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये खतरा भी बन जाता है बहुत सवाल करना, लेकिन बहुत हद तक क्योंकि वो बोल पाते हैं बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो, और अब पहले से ज्यादा यू नो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, तो मुझे लगता है होपफुली आगे कम।
1: तो कोई एसिड अटैक हेल्पलाइन नंबर या ऐसा कुछ होता है जो ऑल ओवर इंडिया काम करता हो, या इज देयर समथिंग लाइक दैट जो रिपोर्टिंग करने में मदद करे?
0: नहीं, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर अभी तक तो नहीं है एसिड अटैक का, लेकिन कोई एम्बुलेंस का ही है, आप 108 जो डायल करें अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो, लेकिन रीच आउट ही कर सकते हैं आप हमारे जैसे एनजीओस को और किसी तरह की मदद की जरूरत है तो।
1: आई थिंक 112 जो है वो नेशनल वुमेन कमीशन का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 112। लेकिन एसिड अटैक के लिए या इस प्रकार के बर्न्ड अटैक्स के लिए अगर कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो मे बी हो सकता है अतिजीवन इस पे काम करेगा और भविष्य

0: हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि हम डायल करें और तुरंत और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की। आई थिंक अलग से नंबर ना भी हो बिकॉज इट्स अ मेडिकल सिचुएशन, ये एक
1: आप एम्बुलेंस 108 डायल कर
0: सकते हैं। 108 डायल कर सकते
1: हैं। एम्बुलेंस इतने इक्विप्ड होते हैं आपके आसपास कि वो सबसे पहले उनको पता है बर्न केसेस तो कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में बर्न वार्ड है, हर हॉस्पिटल में बर्न वार्ड रहता भी नहीं, और उनको कहाँ लेके जाना है, और तो उतने इक्विप्ड होते हैं कि वो तुरंत आपके नियरेस्ट बर्न वार्ड तक पेशेंट को पहुंचा सकते हैं, या जहाँ ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी जहाँ पे ट्रीट किया जाता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट होकर के फिर उनको यू नो शिफ्ट किया जा सकता है बर्न वार्ड।
0: सो दोस्तों आपने सुना कि अगर आपके आसपास आपको लगता है कि कोई व्यक्ति खतरे में है और किसी को भी इस प्रकार की एक समस्या हो सकती है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई घटना घटती है आप उसमें जो भी मदद कर सकते वो करें, लेकिन 108 पे जरूर डायल करें, कॉल करें, इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाएं। बाकी ये सब करते हुए ये जरूर ध्यान में रखें कि मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं या जो मेरे भाई बहन हैं या जो नौजवान हैं, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, हर एक को इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर कैसे संयम पाया जाए, अपने गुस्से पे कैसे काबू किया जाए, अपने चिड़चिड़ेपन पे कैसे काम किया जाए, ये अपने गुस्से को दूसरे पे न हावी होने दिया जाए, उसकी वजह से किसी और का नुकसान न किया जाए। प्रज्ञा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आपके आस पास ऐसी घटना घटती हो तो डेफिनेटली एम्बुलेंस का नंबर आप डायल कीजिए 108। उसके अलावा आप उस पेशेंट को कोई भी कैसा भी जला हो एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल बर्न, अच्छा बेस्ट फर्स्ट एड यही है कि आप उस पेशेंट को कहीं भी एक जगह बैठा दीजिए, हाथ में जो अगर गहना या कुछ भी पहना हुआ है, रिंग्स हैं, कड़े हैं, कुछ भी नेकलेस है, वो सब चीजों को खोल के हटा दीजिए, क्योंकि एसिड जो है ये सारे मेटल्स को मेल्ट कर देता है और वो स्किन के अंदर जाके घुस जाता है, चिपक जाता है, राइट। कपड़े वपड़े को थोड़ा अलग कर दीजिए स्किन से, क्योंकि वो कपड़े भी अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो पूरा स्किन के अंदर एकदम जम जाएगा और फिर वो निकालने में पेशेंट का बहुत मांस निकल जाता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक जगह बैठा के उसको पहले काम कीजिए और ये कपड़े अलग कर दीजिए और जो ज्वेलरीज वगैरह अगर कुछ पहना है, कुछ भी मेटल का सामान, तो वो अलग कर दीजिए। उसके बाद उस पेशेंट के ऊपर जितना हो सके नॉर्मल नल का पानी, न गर्म न ठंडा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल नल का पानी डालते रहिए उसके ऊपर, या फिर अगर शावर है तो शावर के नीचे बैठा दीजिए, बस उसको शावर चलता रहे वैसा, और वो तब तक कीजिए जब तक बर्निंग सेंसेशन सबसाइड नहीं होता है। ये किसी भी बर्न के लिए है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न में हम पानी नहीं डालते हैं क्योंकि उससे शॉक लगने का और पेशेंट का तुरंत यू नो किसी तरह का हादसा हो सकता है, चांसेस हैं। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में आपको तुरंत रश करना है हॉस्पिटल बिना कुछ पानी डाले। उसके अलावा किसी भी तरह का फायर बर्न या पानी से जल जाता है, उबलते हुए पानी से, उबलते हुए दूध से, बस पानी के अंदर रखिए, पानी के नीचे, नल के नीचे, या पानी ऊपर से डालते रहिए जब तक कि बर्निंग सेंसेशन सबसाइड नहीं होता। और ये करने में आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकता है। पेशेंट को काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना हार्ड होगा उसकी हार्ट बीट और तेज होगी और ज्यादा उसको शॉक लगने की चांस है।
0: कई लोगों को मैंने देखा है कंबल से भी वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं।
1: आग बुझाना चाह सकता, आप कंबल को गीला कर लीजिए, अगर पानी है उसको गीला करके और फिर उसको लपेट दीजिए, आग उससे बुझ जाएगा। और उसके बाद कंबल को तुरंत हटा देना है क्योंकि आप कंबल में लपेटे रहेंगे तो आग तो बुझ गया, जो धुआं और आग से वो शरीर चमड़ी जलती रही तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। आप कंबल से आग बुझा दीजिए फिर दो मिनट के बाद हटा दीजिए और फिर पानी डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होता क्या है किसी भी आग से जलने पे वो सिंथेटिक या अगर कॉटन कपड़ा नहीं ना, इनफैक्ट कॉटन कपड़ा तो फिर भी सिकुड़ जाता है, सिंथेटिक अगर थोड़ा भी मिला हुआ ना कपड़े में वो पूरा स्किन से चिपक जाता है और फिर वो निकालने में तो मांस भी निकल जाता है बाद में।
0: आई थिंक प्रज्ञा जी ने आज केवल अपने जीवन को ही हमारे साथ नहीं शेयर किया, अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए, जिसको कि अगर हम ध्यान में रखें तो हम हमारे आसपास में हो रहे ऐसी दुर्घटनाओं में बेहतरीन मदद पहुंचा सकते हैं। द फर्स्ट एड दैट वी प्रोवाइड शुड रियली हेल्प द पर्सन। कई बार हम फर्स्ट एड क्या करना है वो नहीं जानने की वजह से कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें कि नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई आपके आसपास में साथी हो, आपने देखा है या देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई बर्न विक्टिम है अदर देन इलेक्ट्रिक

0: जो तो बिजली की वजह से जिनको बर्न हुआ है, उनके अलावा हर एक को आपको पानी के साथ ट्रीट करना है, ठंडे या गर्म नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है पानी का उसके साथ ट्रीट करना है। और अगर कोई मेटालिक चीज उन्होंने पहनी हुई है, चाहे गहने आदि पहने हुए, वो अलग करना है। सिंथेटिक कपड़े तो पहले उनको अलग करना जरूरी है। आप इस समय सिर्फ ये बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप ये अपने दोस्तों को भी सुनाइए, जिनसे आप मिलते हैं आप उनको सुनाइए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सेवा होगी। जाते जाते प्रज्ञा जी, आपसे हम एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना होगा। आर यू रेडी?
1: बिल्कुल।
0: ओके। अति जीवन क्या है?
1: घर है।
0: वेरी नाइस। तो ऐसे कोई भी हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे हैं, जिनके परिचय में कोई व्यक्ति है जो ढूंढ रहा है अपनी पहचान, खो चुका है अपनी पहचान, उसके लिए घर है अति जीवन, प्लीज आप उनको वहाँ तक पहुँचाइए। भारत क्या है?
1: भारत हमारी पहचान है मुझे लगता है।
0: तो साथियों, पहचान हम सबकी एक है। भारत शक्लों पे मत जाइए, किसी के पहनावे पे मत जाइए, केवल एक ही पहचान है जिसे लेकर के मुझे और आपको हर एक को चलना है, और वो है भारत। भारतीयता हमारी पहचान है। सेवा क्या है?
1: सेवा जीवन है।
0: वही नहीं, आपने बहुत जल्दी जवाब दिया इसका। सेवा जीवन है, क्योंकि आपने ताउम्र सारी जिंदगी आपने सेवा में लगाई हुई है, तो ये आपके लिए बहुत आसान था। वेरी नाइस। साहस क्या है?
1: साहस ही जीने का तरीका है हमारे जिंदगी में, मतलब जीने का तरीका है आप इसको, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं, ये दिक्कत है, ये है, लेकिन जिंदगी है, तभी तो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, खुशियां भी आ रही हैं, दुख भी आ रहा है। अगर आप हर चीज में वो साहस नहीं रखेंगे, वो करेज नहीं रखेंगे, तो किसी भी फेज अपने लाइफ का जो फेज होता है उसको अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो आपको दुख में भी साहस रखना है और खुशी में भी साहस,
0: तो हताश नहीं होना है।
1: हाँ,
0: हताश नहीं होना है, साहस रखना।
1: तो जीने का तरीका ही ये है, आपको हर जगह कहीं चीजें अच्छी होती हैं हमारे लिए, हमारे लायक होती हैं, कहीं नहीं होती है, लेकिन दोनों जगह हमको साहस रखना है और वो करेज के साथ आगे बढ़ के रहें।
0: शांति क्या है?
1: शांति पता नहीं, शांति क्या है मेरे लिए, तो बस अपने आप के, मतलब मुझे लगता है अपने अंदर ढूंढती हूँ शांति, अपने अंदर वो यू नो, कभी कभी ऐसा समय आता है, लेकिन पता नहीं अपने
0: शांति, आप शांति आपके लिए अंदर है जिसको आप तराश रहे हैं और ढूंढ रहे हैं?
1: मैं भी अभी अभी ढूंढ रही।
0: आखिरी सवाल, प्रज्ञा कौन है?
1: प्रज्ञा किसी के लिए हिम्मत है, किसी के लिए जरिया है, एक किसी के लिए मतलब जरिया, एक अपना ड्रीम्स, अपनी सपने अचीव करने के लिए किसी के लिए वो सपोर्ट है जो वो हमेशा किसी में भी ढूंढता है।
0: प्रज्ञा जी, जाते जाते अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, व्हाट वुड बी दैट मैसेज?
1: बहुत सारी चीजें हैं, एक लाइन, दो लाइन में कहूंगी कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा करो। यू नो, जिंदगी में कोई चीज ऐसा नहीं होता जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप हर कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने अपने आसपास किसी भी तरह से अपने समाज को, जो कम्युनिटी है, उसको कुछ देने की कोशिश करते रहो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा वो है टैगलाइन कि जिंदगी में आपके मतलब 10% वो चीजें हैं जो घटनाएं आपके साथ घटी हो, और 90% आपकी जिंदगी वो है जो आप उन घटनाओं से आपके जो आपने अपनी जिंदगी बनाई हो। तो डजंट मैटर आपके लाइफ में क्या हुआ है, व्हाट मैटर्स इट इज हाउ यू मेक आउट योर लाइफ आउट ऑफ इट, राइट? तो दैट इज
0: 10% जिंदगी का वो है जो आपके साथ घटा है, और 90% वो है जो आपने उन घटनाओं से सीखा है, लिया है, या जीवन को उसके आधार पर गढ़ा
1: है, राइट? तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बस जिंदगी भर स्ट्रगल करते ही रहे हैं, लेकिन वो उनको कभी शिकायत नहीं हुई है, उस चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो छोटी छोटी चीजों से मतलब दुखी ही रहते हैं और क्रिप ही करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी वही है जो आप, आनाएं तो बहुत सारी होती है, सबके साथ अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन आप उस चीज को कैसे, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ।
0: प्रज्ञा जी ने बहुत ब्यूटीफुल

0: एक मैसेज दिया साथियों हमें कि जीवन में घटनाएं हर एक की होती हैं और कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं, लेकिन वो हमारे पूरे जीवन का केवल 10% हिस्सा होता है। 90% हिस्सा जीवन का वो होता है जो हम उन घटनाओं को सीख करके उनके आधार पे अपने जीवन को किस रूप में गढ़ते हैं, जीवन को क्या रूप देते हैं, वो 90% हमारे अपने हाथों में होता है, हमारे विचारों में होता है। और जैसे कि प्रज्ञा जी ने खुद को डिफाइन किया कि प्रज्ञा किसी के लिए साहस है, किसी के लिए जरिया है, हम तो कहेंगे प्रज्ञा जी आप कईयों के लिए उम्मीद है, आप कईयों के लिए वो प्रेरणा है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है, और भारत के लिए आप वो भारत की चमकती बेटी हैं जिन्होंने भारत का नाम, भारत का गर्व दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाया है। भारत देश को आपके जैसी एक सुपुत्री प्राप्त है, इससे बड़ा गर्व भारत को और क्या होगा। आज हमारे साथ प्रज्ञा जी आपने समय बिताया, हमें इतना सारा अपने जीवन का वो पन्ने आपने पलट के हमारे सामने शेयर किए जो शायद आप पलटना भी नहीं चाहते थे, बट पूरे परिवार को एक समझते हुए, हमको अपना मानते हुए आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा जी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, दोबारा हम आपसे मिलना चाहेंगे, उम्मीद करता हूं हमें समय दीजिएगा। साथियों आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम रेडियो मधुबन 90.4 FM की एक ब्यूटीफुल पेशकश, जहां पर हम हर एपिसोड में एक ऐसे अतिथि के साथ आते हैं। अतिथि कहना राइट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो हमारे भारत की शान है। भारत का शान भारत के अतिथियों से नहीं होता, भारत के अपने बच्चों से होता है। ये भारत के वो नायाब रतन हैं जिनकी चमक ने भारत को इतना शानदार बनाया हुआ है। श्री प्रज्ञा प्रसून जी भारत की वो चमकती कोहिनूर हैं जो खुद एक एसिड अटैक विक्टिम होते हुए भी उन्होंने आज 500 से ज्यादा एसिड सर्वाइवर्स को जो है उनको मदद पहुंचाई। अगले एपिसोड में हम फिर आपके बीच में आएंगे एक और किसी नए गेस्ट के साथ, भारत के किसी एक और ऐसे पावरफुल ब्यूटीफुल चमकते हुए हीरे के साथ जिनकी शाइन से, जिनकी चमक से मैं, आप और हम सब अपने को कुछ सीखने के लिए, अपने के अपने अंदर कुछ नया भरने के लिए बेताब रहेंगे। इंतजार रहेगा दोस्तों आपसे दोबारा मिलने का। मैं इजाजत लेता हूँ आरजे शांतनु आपसे, तब तक के लिए 90.4 FM रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ जय हिंद जय भारत।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियाँ बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.1। मैं आज

0: एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आइए आज सुनते हैं होली का ओली हो गया। होली का दहन और रंगों से भरा त्योहार होली भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, सौहार्द और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस त्योहार का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो होली का वास्तविक अर्थ है होली, यानी जो होना था वह हो गया, अर्थात बीती बातों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना और आत्मा को नए रंगों में रंगना। होली का अर्थ हो गया दर्शाता है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। हमें अपने पुराने दुख, गलतियां, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को जलाकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें कष्ट देती हैं, लेकिन यदि हम उन पर ही अटके रहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए होली हमें सिखाती है कि बीती हुई बातों को भुलाकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। होली का दहन बुराई के अंत का प्रतीक है। होली का दहन इसी हो गया भाव को दर्शाता है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद ने निडर होकर भगवान पर विश्वास रखा और होलिका की आग में भी सुरक्षित रहा, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता, विकार और अहंकार को जलाकर समाप्त कर देना चाहिए। यह पर्व हमें सीख देता है कि यदि हमने किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मक भावनाएं रखी हैं, तो उन्हें समाप्त कर देना ही सच्ची होली है। क्षमा और प्रेम का प्रसंग है होली। रंगों की होली हमें यह संदेश देती है कि सभी भेदभाव, दुश्मनी और कटुता को भुलाकर प्रेम और सौहार्द का रंग अपनाना चाहिए। जब हम कहते हैं हो गया, तो इसका अर्थ यह भी होता है कि हम किसी से भी कोई शिकायत नहीं रखते। यह भावना हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है और जीवन को सरल बनाती है। हो गया का अर्थ केवल पुरानी बातों को छोड़ना नहीं, बल्कि नए सिरे से जीवन को जीना। जब हम बीती नकारात्मकता को छोड़ देते हैं तो हम नए संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। होली का यह संदेश हमें बताता है कि जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए रंगीन कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमें अपने पुराने दुखों और परेशानियों को छोड़कर नए उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक रंगों में रंगना ही होली है। होली का रंग केवल बाहरी रंग नहीं, बल्कि यह हमें ईश्वरीय प्रेम, शांति और आनंद के रंग में रंगने की प्रेरणा भी देता है। जब हम अपनी आत्मा को सकारात्मक विचारों और शुभ संकल्पों से रंगते हैं, तो जीवन में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार होली का सही अर्थ केवल एक पर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। जो होना था वह हो गया, अब नए उत्साह, प्रेम और आनंद से जीवन को जीना है। जब हम इस भावना को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुरेरी आवाज 107.8 FM पर। सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा। वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आकाश पर दमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति,
1: बीइंग ब्लिस में स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। इससे पहले कुछ मैं सवाल करूं, पहले एक मैं लाइन पढ़ना चाहूंगा और हीलिंग के बारे में है और मेरा कुछ पर्सनल भी है। हीलिंग इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट इज अ डेली क्लेंजिंग ऑफ पेन, इट इज अ डेली हीलिंग ऑफ योर लाइफ।
2: परफेक्ट इजंट इट, ये परफेक्ट है क्योंकि हम इतना कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ जाते हैं। इट्स लाइक नोइंग एवरीथिंग नाउ। मुझे बीमारी के बारे में पता है, हा? मुझे ये भी पता है इस बीमारी के लिए क्या क्या इलाज होना चाहिए। हम इलाज के बारे में रोज पढ़ते हैं, इलाज के बारे में रोज सुनते हैं, आपस में बात भी करते हैं। अब सिर्फ इलाज करना रह गया है, बाकी नॉलेज सारी आ गई है।
1: इतनी सारी बातें हुई लेकिन मैंने सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन ट्राई किया, मैंने अच्छी कोई स्पिरिचुअल किताब लेके एक पेज पढ़ा, न्यूज़पेपर छोड़ दिया चाय के साथ जो पढ़ता था, लंच के बाद एक आध मतलब हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को 5% मार्क्स की इम्प्रूवमेंट में नहीं दूंगा।
2: 5% इज ब्रिलियंट।
1: क्यों?
2: 5% इज ब्रिलियंट
1: कर दिया मुझे।
2: नो, इसमें खुश करने की बात नहीं है, इट इज ब्रिलियंट। अगर हम 5% चेंज हुए हैं, इट्स फैंटास्टिक।
1: मैं तो डिप्रेस हो रहा था।
2: सी एक्चुअली इवन ये लाइन भी ठीक नहीं है कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है, मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा है। ये बहुत डीप है, अब इसको ध्यान से समझना है। पहले जब हम अवेयर नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे कि हमें ये चेंज कर, लेट्स से एक्सेप्टेंस, हमें अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें एक्सेप्ट करना है, हर एक की विशेषता को देखना है, हर एक के स्वभाव संस्कार को वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करना है। ये कोडिंग ही नहीं थी यहाँ पे, ये प्रोग्रामिंग नहीं थी मेरे जीवन में।
1: बहुत आसान है बोलना कि आप लाल चश्मा पहनोगे तो हरी चीज भी लाल दिखेगी, तो सबकी विशेषताएं देखो तो विशेषता का चश्मा पहनो, लेकिन वो चश्मा कहाँ से खरीदें?
2: विशेषताएं देखो, चश्मा पहनो, सारा दिन हरेक की विशेषता देखो, तो खुद की मन की स्थिति भी लाइट रहेगी और वाइब्रेशन अच्छी फैलेगी। पढ़ लिया ये सुबह, पढ़ लिया, समझ भी आ गया, पता भी है कि ये करने से थिंग्स विल गेट मच बेटर देन व्हाट दे आर नाउ। पहले पढ़ा नहीं था, पहले पता नहीं था, पहले उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, तो सारा दिन में किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में कुछ, किसी को रिजेक्ट।

0: रिस्पेक्ट, किसी की बात पर निंदा, ये बहुत नेचुरल था। जब नेचुरल होता है तो जीवन एक अलग तरह से इजियर होती है। इजियर इन द सेंस, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं, तो मैं बीमारी से दुखी तो हूं, परेशान हूं, लेकिन मैंने वो दुख और परेशानी को ही नेचुरल समझा है और मैं जीवन को उस तरह से जी रही हूं। वो जीवन में अशांति है, परेशानी है, लेकिन टेंशन नहीं है कि मुझे चेंज होना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर चीज मेरी वजह से है। कार्मिक अकाउंट भी मेरा है, कर्म भी मेरा बन रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से, अब इसको ठीक करना है तो भी मुझे ही करना है। ये बहुत बड़ी चीज है। पहले क्या था, हाँ, अभी सिर्फ इसके टेंशन को चेंज करना है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये था नई फोकस, और पहले कम्प्लीटली ऑपोजिट फोकस था, जो भी मेरी दुख अशांति है वो औरों की वजह से है। ये था ना, छोटी भी या जीवन की कोई बहुत बड़ी बात, वो लोगों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है, प्रकृति की वजह से है,
1: भगवान की वजह से है,
0: मेरे भाग्य की वजह से, मेरे वजह से सब कुछ ठीक था।
1: दुनिया मुझे जीने नहीं देती।
0: अब दुनिया मुझे जीने नहीं देती या दुनिया मुझे परेशान करती है, उसका दुख तो था, एटलीस्ट आई वॉज कम्फर्टेबल कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है,
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
0: सपोज एक फ्लावर वाज है, बहुत सुंदर है, मुझे दिखा कि वो गिर गया है और टूटा हुआ है। अब उसके टूटने का मुझे दुख है, मुझे बहुत दुख है, मेरी खुशी गुम हो गई है, मेरी शांति गायब हो गई है, क्योंकि वो टूट चुका है, लेकिन तोड़ा आपने है इज वॉट आई फील। तो ब्लेम आप पर है कि ये जो मैं दुखी हूँ, ये जो मैं अशांत हूँ, ये आपकी वजह से। एंड थर्ड चीज, इसको ठीक करना वापस
1: आपकी जिम्मेदारी,
0: ये भी आपकी जिम्मेवारी है। तो तीन फैक्टर्स थे ना, एक मैं दुखी हूँ, दूसरा आपकी गलती है, आपने तोड़ा है, और तीसरा इसको ठीक करना वापस और मुझे वापस खुश करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो उस तीन फैक्टर्स में क्या हुआ, पहला मैं दुखी, लेकिन बाकी दो आपकी। अब क्या हो गया है, विद अवेयरनेस एंड नॉलेज, अब अगर फ्लावर वाज टूटा और मैं दुखी हुई, तो वो फर्स्ट स्टेज कि मैं दुखी, लेकिन सेकेंड स्टेज है कि ये तोड़ा किसने है,
1: मैंने
0: तोड़ा भी मैंने है, अब ये आपने नहीं तोड़ा है। दिस इज द डिफरेंस, नो?
1: ओके, नाउ द अदर वे,
0: नॉट द अदर वे, नाउ आई हैव द नॉलेज। पहले क्या था,
1: ज्ञान, अज्ञान, वो इज द अदर वे।
0: पहले ज्ञान नहीं था तो दुखी थे, लेकिन दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, कोई और ना, आपकी वजह से मैं दुखी, आपकी वजह से
1: मेरी कुंडली खराब है, मुझे मतलब मेरे किस्मत खराब है,
0: बातों में भी ना,
1: ये भगवान की गलती है, भगवान
0: छोटी चीजों में भी, ड्राइवर नहीं आया मैं नाराज, बच्चे ने कहना नहीं माना मैं परेशान, बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं, बात नहीं सुनते, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं परेशान, तो मेरे दुख का कारण तो कोई और था ना हमेशा। तो फर्स्ट फैक्टर था फ्लावर वाज टूटा, मैं दुखी, लेकिन सेकेंड फैक्टर इजियर था, दुख का कारण वो, थर्ड फैक्टर भी बहुत इजी था, इसको जोड़ना भी किसने है, इन्होंने। अब ज्ञान मिला, समझ मिली, नॉलेज मिली, एक्सेप्ट की, अच्छी लगी कि अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक्सेप्ट कर ली, अब उसको करना चाहते हैं। अब इस नॉलेज के साथ अगर उसी सीन को फिर से देखें, तो फ्लावर वाज टूटा, दुखी हुए, तो पहले दुखी हुए, लेकिन सेकेंड चीज जो थी कि ये तोड़ा किसने, अब मुझे समझ में आया कि ये तोड़ा मैंने, मतलब मेरी मन की स्थिति का जिम्मेवार कौन है,
1: मैं।
0: अब तीसरी चीज कि इसको ठीक कौन करेगा, अब वो भी मैं। तीनों चीजों की जिम्मेवारी अब किस पर आ गई, मेरे पर। पहले एक दुख मेरा था, बाकी दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों की थी।
1: बट ये ज्ञान मिलने के बाद जब जिम्मेवारी मुझ पर आती है, तो मुझ पर टेंशन और आती है, दुख आता है मुझे, और अपने ऊपर नाराजगी भी आती है कि भाई सुधरेगा कब, हीलिंग ही नहीं हो रही है, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी उठता हूँ, फिर वही बात आ गई।
0: नाउ व्हाट विल हैपन, जो पहले वाला सिनारियो था उसमें दुख था, लेकिन अटेंशन नहीं रखना था, कुछ करना नहीं था उस बारे में, ब्लेम करना था और दूसरों की वेट करनी थी कि वो ठीक करेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन थी,

0: की डेस्टिनी क्या होगी कि हम ज्यादातर दुखी परेशान अशांत रहेंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की थी, पावर किसी और की थी, वेट किसी और की करनी पड़ेगी कि वो उसको ठीक करे। जब अब ये चीज मेरे पास आ गई पावर, तो अब फ्लावर वाज अगर टूटा तो दुख होगा, लेकिन किया किसने था? मैंने किया था। जैसे ही ब्लेम गेम खत्म होता है, यू नो ब्लेम मीन्स व्हेन वी डू लाइक दिस वी गिविंग द पावर अवे टू समबडी एल्स। व्हेन आई डू लाइक दिस, दिस इज बिकॉज ऑफ मी, आई एम ब्रिंगिंग माई पावर बैक टू मी, माई सर्किट इज कम्प्लीट, आई डोंट गिव माई पावर, नो बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू।
1: कितना बांट दिया यू,
0: आपने अपनी पावर ही किसी को दे दी। बिकॉज ऑफ यू आई एम अनहैप्पी मीन्स यू आर मोर पावरफुल देन मी। आपकी एक वर्ड मुझे परेशान कर सकती है, मीन्स आप कितने पावरफुल हैं। ना वैसे आप नहीं, आपने एक वर्ड कहा लेकिन परेशान मुझे, मैंने खुद ने किया। आई मेक माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट गिव यू द पावर, आई कीप द पावर टू माई सेल्फ। नाउ द थर्ड थिंग, इसको ठीक भी किसने करना है? ठीक भी मैंने करना है। पहले ठीक करने की भी पावर किसको दी थी? आप मेरे मूड को ठीक करेंगे। तो क्या करना पड़ता था? वेट करना पड़ता था कि वो चेंज होंगे, वो मुझे समझेंगे, फिर वो मेरा मूड ठीक करेंगे, जो कभी होता था और कभी नहीं होता था। तो जो वो इक्वेशन थी, इट्स अ डेस्टिनी ऑफ पेन।
1: डेफिनेटली बात जो है प्रैक्टिकल में मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सपोजिंग मुझे ड्राइवर को ऑर्डर्स हैं कि भैया आप सुबह जब आते हो गाड़ी साफ करो, डीजल या पेट्रोल गाड़ी में देखो, फुल करो, और मुझे कहीं जाना होता है। उसको मालूम है सपोजिंग मुझे फार्म हाउस जाना है कल, और मैं उतरता हूँ और देखता हूँ कि गाड़ी बोला साहब पेट्रोल कम है, तो फिर मैं पूछता हूँ अपने दूसरे स्टाफ से भी आपने इनको बोला नहीं? बोला साहब मैंने इसको बोला था लेकिन ये बोला बाद में कर लेंगे, काफी है, इनफ है। सपोजिंग जैसे यहाँ मैं आज शूटिंग पे आता हूँ, अब मेरे पास माइक नहीं है और आपको मालूम है कल छुट्टी थी और माइक बनना चाहिए था, फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी प्रोफेशनल है, मैं भी हूँ, तो आपका मतलब बिना माइक के काम कैसे होगा? वो भी नहीं होता। तो यहाँ भी मैं ड्राइवर से भी नहीं चिढ़ू, टेक्नीशियन से भी नहीं चिढ़ू, मतलब ये क्या सारा टाइम मेरी ही जिम्मेदारी है?
0: माइक ठीक करना, गाड़ी में डीजल भरना, वो किसी और की जिम्मेवारी है। अपने मन को ठीक रखना, यहाँ डीजल भरना और इस माइक को ठीक रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी उन्होंने निभानी है, नहीं निभाई वो भी उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई?
1: आप और मैं दो काम कर रहे हैं लोग। आप मुझे बोलते माइक ठीक कर दो, मैं बोलता हूँ बाद में। आप बोलते इनकी जिम्मेदारी थी, मैं तो बोल दिया इनकी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी खत्म। वो बोलता उसकी खत्म, मतलब फिर सारे बैठे रहेंगे, सो जाएंगे हम लोग।
0: इट जस्ट मीन्स कि आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आप उसको करेंगे, लेकिन अगर आप उसको नहीं करते, मैं आपको उतनी पावर नहीं दे दूंगी कि आप मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देंगे।
1: कि मैं शूटिंग ही कैंसिल
0: काम करूं, नहीं हुआ नहीं, वर्स्ट क्या होगा कि काम नहीं होगा, पर वो भी हो ही जाता है। लेकिन वर्स्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट इन एनी सिनारियो कि काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी मन की स्थिति को मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी क्योंकि वो पावर मेरे पास है। मेरे काम को करना या नहीं करना, वो पावर आपके पास है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी पावर दूसरों की है, कितनी पावर मेरी अपनी है। मेरे काम आप ठीक नहीं करें, ये पावर आपके पास है। मेरा काम जो ठीक चल रहा था उसको भी आप सारा खराब कर दें, ये पावर भी आपके पास है। मेरे पास जितना धन है उसको आप सारा नुकसान कर दें, वो पावर भी आपके पास है। मेरे शरीर को आप मारें, वो पावर भी आपके पास है, लेकिन मेरे मन को कोई और नहीं टच कर सकता है। कितनी पावर दूसरों के पास है एंड कौन सी पावर मेरे पास है? एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड दैट कैन बी सीन, वर्क, मनी, प्रॉपर्टी, इवन बॉडी, कोई बॉडी को मेरे मार सकता ना, लेकिन मन को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कंप्लीट पावर मेरे पास है। तो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कौन सी पावर दूसरों के पास है, कौन सी पावर मेरे पास है।

0: दूसरे उस पावर को जिस तरह चाहें वो उस तरह यूज करेंगे, लेकिन मैं अपनी पावर को जिस तरह चाहूं मुझे उस तरह यूज करना है। लेकिन जो पावर मेरे पास है अगर वो भी मैंने नहीं रियलाइज किया कि वो मेरे पास है, क्योंकि एक ही पावर मेरे पास है और कोई पावर मेरे पास नहीं है।
1: एक तो डीजल नहीं है, फिर मेरी भी डीजल खाली हो जाएगी।
0: दिस इज इट ना,
1: तो दो तरफ
0: एक ही पावर मेरे पास है। सी दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड द सीरीज विद, एवरीथिंग एल्स आउटसाइड इज अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच कैन बी सर्टेन। बट अगर ये भी अनसर्टेन और ये भी अनसर्टेन, देन केओस, देन केओस होता है। बाहर भी अनसर्टेनिटी, पता नहीं कब क्या हो जाए, और अंदर भी अनसर्टेनिटी, पता नहीं कब कैसा मूड बन जाए, देन देयर इज केओस। अगर दोनों में से एक भी सर्टेन हो, अगर बाहर सब सर्टेन हो और आपका मन ऊपर नीचे हो, इट्स फाइन, इट वॉन्ट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और क्योंकि सब ठीक चल रहा है और मन उस पर डिपेंडेंट था तो मन भी ठीक चलता। या द अदर वे राउंड, अगर बाहर सब कुछ अनसर्टेन हो लेकिन फिर भी आपका मन सर्टेन हो, तब भी आपके जीवन में खुशी है, तब भी आपके जीवन में। दोनों फैक्टर्स में से अगर एक ठीक चले, एक्यूरेट, अगर बाहर सर्टेन चले, सब टाइम पे आएंगे, सब काम ठीक से करेंगे, प्रकृति बहुत अच्छी होगी, एवरीथिंग इफ इट विल बी एक्यूरेट, मन ठीक रहेगा, जीवन में खुशी है, मतलब बाहर सर्टेन है, अंदर मुझे ध्यान नहीं रखने की जरूरत। अदर वे राउंड, बाहर अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपने पे अटेंशन रखा, अंदर सर्टेन है तो भी जीवन में खुशी होगी। दोनों में से एक फैक्टर भी इन कंट्रोल अगर चले तो जीवन में खुशी है। आज खुशी क्यों नहीं है? बाहर भी अनसर्टेन, अंदर भी अनसर्टेन, तब केओस है। नाउ अवेयरनेस, बाहर मेरे कंट्रोल में नहीं, जैसे आपने कहा जाना है टाइम पर, इंस्ट्रक्शन दे दिया है ड्राइवर को, मालूम, सी द हाउ एवरीथिंग वर्क्स, मालूम भी है, फिर भी डीजल नहीं भरा। अब भरा नहीं तो अब भरना पड़ेगा, लेट हो जाएगा, जिस मीटिंग पे पहुंचना था वहां भी सारा लेट हो जाएगा, बट कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दिस?
1: शर्म तो आती है ना जाके जिसको समय पे पहुंचने।
0: बट कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दैट ऑल्सो?
1: यस आई कैन जस्ट शाउट।
0: एंड देन डू व्हाट? वो शाउट करने से क्या होगा? दिस इज इट, क्या होगा?
1: तो मैं उनकी वजह से जाके ड्राइवर के लिए मैं सॉरी बोलूं?
0: वो तो वैसे भी बोलना पड़ेगा, आप शाउट करके जाओ या बिना शाउट करे जाओ, वो तो वैसे भी करना पड़ेगा। या तो अगर शाउट करने से हम टाइम पे पहुंच जाए तो भी चिल्लाने का फायदा है।
1: नहीं देखिए, जैसे वही बात होगी ना कि मेरे हाथ से अगर वास टूटे और मैं अपने आप को बोलूं,
0: इम्पोर्टेंट इज वास तो टूट ही गया है, वास तो टूट ही गया है,
1: लेट तो हो गए हैं,
0: लेट तो
1: किसकी वजह से हुए,
0: उससे कैसे मैटर करेगा? किसकी वजह से हुए? ड्राइवर की वजह से हुए। लेकिन दुखी हुए किसकी वजह से हुए? दिस इज इट, दिस क्या मेरे कंट्रोल में, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेट हुए किसी और की वजह से, नुकसान हुआ किसी और की वजह से, बिजनेस खत्म हो गया शायद वो भी किसी और की वजह से, शरीर को चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ था वो भी किसी और की वजह से, लेकिन मन अशांत या शांत वो कम्प्लीटली मेरी वजह से, तो मैं अटेंशन कहाँ रखूं?
1: इसके तो फिर आदमी मतलब मूर्ति या पत्थर तो नहीं है ना। अगर मैं किसी से प्यार करूं और वो मुझे थोड़ी सी कुछ बात कर कह दे तो मैं हर्ट तो होता हूं।
0: नो प्रॉब्लम, मैं हर्ट होता हूं, लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये जो हर्ट में हुआ ये किसकी वजह से, मैंने वो शब्द को लिया और अपने यहाँ कुछ उसके बाद सोचा, वो मेरी
1: वजह से, किसकी वजह से, यहाँ मेरे समझ में नहीं आता है। मेरी वजह से तो नहीं हुआ, अगर वो नहीं होता वो बंदा जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, या लड़की या बेटा या बेटी या फ्रेंड, अगर वो ऐसी हरकत नहीं करता तो मैं दुखी नहीं होता, तो फिर मेरी वजह से कैसे बोलूं? वो सिचुएशन की वजह से।
0: इसीलिए तो कई लोगों ने क्या किया, कहते सबके साथ रहते हुए तो हम खुश नहीं रह सकते, हम शांत नहीं रह सकते, तो हम दुनिया से दूर जाएंगे, हम सबके साथ रहते हुए तो नहीं कर पाएंगे ये, तो हम जंगल में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, एकांत में रहेंगे।
1: सब तो दूर भागना चाहते हैं।
0: दूर इस

0: इसलिए भागना चाह रहे हैं क्योंकि सबके बीच रहकर अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए रेडी नहीं है। तो कहा खुशी तो लेकिन फिर भी चाहिए, तो अकेले जाके रहेंगे कहीं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपने इतने दिनों में क्या एक बार भी ये अनुभव नहीं किया कि अगर आपने थोड़ा सा अटेंशन रखा तो आज आपको गुस्सा नहीं आया? क्या
1: हुआ?
0: तो वो कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? इफ द इक्वेशन डजंट वर्क, इट विल नॉट वर्क इवन वंस।
1: नहीं, ये पॉइंट नहीं सोचा था ना मैं।
0: इफ इट डजंट वर्क,
1: अच्छे अच्छे पॉइंट जो वर्क किया वो नहीं सोच रहा।
0: बट वर्क
1: जो नहीं हो रहा है मुझसे।
0: नहीं नहीं, लेकिन वर्क किया, वर्क किया मीन्स इट वर्क्स। अब सिर्फ ये है उसको एक बार वर्क किया, अब उसको आप पांच बार कर लो, कल आप उसको 50 times कर लो।
1: हर बार नहीं हुआ,
0: हर बार हो जाएगा ना। जो चीज एक बार चलेगी, अगर वो एक बार भी नहीं चले, अगर वो एक बार भी नहीं चले, देन इट डजंट वर्क, देन इट्स फाइन। आई से मुझे एक बार भी नहीं हुआ कि आई कुड एक्सेप्ट एनीबडी, मुझे एक बार भी नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कहा और मैं स्टेबल रहा, ये तो एक बार भी नहीं हुआ। सो इट्स इम्पॉसिबल।
1: ऐसा नहीं है, बहुत बार हुआ और उस बहुत बार की मुझे अभी तक यादें भी हैं। उस टाइम पे मैंने पहली बार जिंदगी में अपने आप को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा वाह सुरेश, गुड बॉय, जैसे यू नो आई वाज।
0: सो नाउ व्हाट डज इट मीन, नाउ व्हाट डज दिस मीन, मीन्स इट वर्क्स? आप कह रहे वो समझ में नहीं आ रहा, वो होता ही नहीं है।
1: मैं एक्चुअली ना हर चीज में एक्सट्रीम जाता हूँ, तो मुझे 100% सब चाहिए, ये भी चाहिए, फिक्स स्पीकर, थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा परफेक्ट।
0: 100% कैसे जाते हैं? 0 से 100?
1: यही तो अभी लाइन थी ना।
0: हाँ,
1: ओवरनाइट
0: तो
1: नहीं होगा,
0: ओवरनाइट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट इज कन्विक्शन कि इट वर्क्स। मैंने किया था उस दिन, मेरे से ही हुआ था, तो अगर उस दिन हुआ था फिर होगा, और फिर होते होते होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी।
1: आपके ज्ञान में भी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि कब कब नहीं मुझसे हो रहा, वो देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ जो हुआ। अभी आपने याद दिलाया तो मैंने अब मुझे याद आया कि कई बार जो हुआ वो पहली बार लाइफ में मैंने,
0: कई बार नहीं बहुत बार हुआ है,
1: और थापी मारी अपने आप वाह वाह वाह करके
0: ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस आ गई। सपोज दिन में 50 times 50 बार आई गेट क्रिटिकल, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो 50 बार मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं कर पाती। अब क्या हो रहा है, अब अवेयरनेस आ गई है, तो 50 में से 10 times आई एक्सेप्ट, 40 times आई एम स्टिल क्रिटिकल, ठीक है। बट नाउ बिकॉज आई एम अवेयर, तो मुझे वो जो 40 times है ना, 40 बार जो मैं क्रिटिकल हो गई या गुस्सा हो गई, वो मुझे दिखता है। पहले दिखता ही नहीं था, पहले दिखता ही नहीं था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, मैंने नहीं सोचा कि मुझे कुछ। अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे ये नहीं करना था, ये हो रहा है, ये मेरे से हो रहा है, आई एम फेलिंग। पहले वो फेलियर नहीं लगता था ना।
1: करेक्ट,
0: पहले वो फेलियर ही नहीं लगता था। पहले लगता था गुस्सा मीन्स पावर, अगर वो मेरे से डरते हैं दैट इज रिस्पेक्ट। इक्वेशन ही सारी डिफरेंट थी। अब 40 times इफ आई फेल एंड 10 times इफ आई पास, आई एम नॉट हैप्पी। ऐसे 40 times आई फेल,
1: 5% मार्क्स कम लग रहे थे ना।
0: अब क्या करना है? अब वो क्योंकि दिखता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा है वो पहले से बहुत कम, लेकिन अब दिखता है, पहले दिखता नहीं था। बट इट्स ओके ना, दिखेगा तब तो करेंगे, दिखता ही नहीं था तो करते ही नहीं थे। अगर मैंने शरीर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, सपोज 40 years, क्या क्या अंदर हो रहा था खराब, इधर भी जुड़े, इधर भी वो, अवेयर ही नहीं है, यही ठीक है। अभी पता चल गया ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये, एंड देन आई सडनली लुक एट द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई सेड ये शरीर है मेरा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, अभी ये भी करना है, ये भी करना है। आई सेड नो, इज वेरी डिफिकल्ट, पहले वाली जीवन ही ठीक थी जब कुछ पता ही नहीं था। नो, पता ही नहीं था तो ये कब तक चलता है इस तरह से?
1: गाड़ी खुलवा लो तो हम उसको बोलते हैं यार ये जो मैकेनिक है ना बहुत खराब है, इतना छोटा प्रॉब्लम बताया, उसे 10 निकाल के लाता है, खुला ही नहीं।
0: yes.
1: उस जैसी चलती चलने दो गाड़ी को, एक बार खोलोगे इसका ये भी खराब बोलेगा, वो भी खराब बोलेगा, वो भी खराब, एक्चुअली तो अंदर है।
0: परफेक्ट, व्हेन आई गो टू द डेंटिस्ट, पहले तो वो बोलते हैं हर 6 महीने में एक बार आया करो, हम जाते नहीं, फिर 1-2 साल बाद एक बार जाओ ना, तो बोलेगा यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम। एंड फर्स्ट इनिशियली आई सेड कैसा डेंटिस्ट, आई एम श्योर ही इज डूइंग दिस जस्ट टू मेक मनी। मुझे एक जगह दर्द था इतना, इसने 4 दांत में बता दिया कि प्रॉब्लम है। द फैक्ट इज कि प्रॉब्लम थी, वी आर नॉट अवेयर। आज अगर वो मुझे कोई बता रहा है तो

0: उस लेवल पे प्रॉब्लम रुक जाएगी ना, और फिर हीलिंग की तरफ चली जाएगी. और अगर हम अनअवेयर चलते तो विल रीच अ पॉइंट टिल जब तक हमें वो निकालना पड़ेगा. दिस इज इट.
1: लेकिन जैसे आपके दांत में दर्द है, बॉडी कब दर्द करती है, कब से दर्द बेचारा शुरू हुआ था, बाद में बताती है, पहले कोशिश करती है ठीक करने की, ठीक करने की. लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस वक्त एक गोली खा लेता हूँ, हैप्पी. तो सेम चीज, इमीडिएट एक्शन की इतनी आदत हो गई है मुझे कि मैं चाहता था कि जो आपने बोला मैं नहीं हूँ, एक दिन मेडिटेशन किया और ठीक हो गया.
0: लेकिन एक दिन में किया है. अगर आप 10 बार पहले गुस्सा हो रहे थे, आज आप 9 बार हुए, इज दैट नॉट चेंज?
1: अच्छा,
0: नो, बट इज दैट नॉट चेंज?
1: मैं इसको बहुत स्लो समझ रहा था.
0: शरीर कितने साल पुराना है? 50, 60, 70, इतने साल पुराना है. इसकी भी अगर हीलिंग करनी शुरू करें तो टाइम लगेगा. मन कितना पुराना है? आपने कहा ये शरीर को मैंने इतने सालों से अगर ध्यान नहीं दिया, मन का कितने सालों से ध्यान नहीं दिया? हमने कितने जन्मों से इस मन का ध्यान नहीं दिया? वो संस्कार, वो ही प्रॉब्लम्स, वो ही ब्लेम करना. वी आर कैरिंग दिस सिंस मेनी मेनी बर्थ्स, एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? कि ये संस्कार जो हम इतने जन्म से लेकर आए, इतने जन्मों के जो कड़क संस्कार है, वो आज किया और कल हो जाएगा? इम्पोर्टेंट इज अगर वो आज इतना था और इतना भी अगर कम हुआ, प्लीज अप्रिशिएट योर सेल्फ, बिकॉज anyone who is able to do that has been brilliant today. It's a fantastic thing ki agar hum itna bhi apne andar change kar le.
1: Mujhe to lagta hai ki aap sach nahi bol rahi hain.
0: No. See, it's like this.
1: Itna kam improvement hota hai to usme aap itni khush ho rahi hain.
0: Aap ye dekhein, ye white hai. Is par ek bahut bada daag lag jata hai. To hum daag ko saaf karna shuru karte hain. Wo aise to nahi hoga na ki itna bada daag hai, usko aise kiya aur wo chala gaya. Hum usko साफ करना शुरू करते हैं. जब हम पहला स्क्रब ही करते हैं तो वो दाग पहले से थोड़ा सा लाइट हो जाता है. दैट इज अचीवमेंट, एंड दैट शोज अस कि ये दाग निकल सकता है.
1: इतनी तो गारंटी होगी कि निकलेगा आज नहीं कल.
0: इम्पोर्टेंट इज ये निकलना है. अगर वो स्क्रबिंग कांस्टेंट रहे तो, अगर 2 दिन स्क्रब किया, तीसरे दिन फिर उस पर ही दाग लगा दिया, फिर 4 दिन स्क्रब किया, 5वें दिन उसी पे दाग लगा दिया, देन वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर. तब हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ही. सिर्फ ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी के हम नए संस्कार की तरफ कितना जा रहे हैं और कितनी बार हम पुराने संस्कार की तरफ फिर चले जाते हैं. इसलिए द लाइन ब्यूटिफुली सेज, हीलिंग इज अ डेली प्रोसेस. डेली अगर कोई उस पर अटेंशन रखे, इट्स एन अचीवमेंट. और ट्रांसफॉर्मेशन कब दिखाई देगी? हर रोज. अब फोकस किस पर करना है? एवरी टाइम यू मैनेज टू डू इट, एवरी टाइम यू अचीव. इट्स लाइक एक बच्चा, अगेन मन बच्चा है, हमें उसको क्या करना है? एवरी टाइम वो कर लेता है जो हम चाहते हैं कि वो अब करे, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको उसका रिजल्ट दिखाना है. देखो आज ये जो किया, सी इसका क्या क्या रिजल्ट आया है. आज गुस्सा नहीं किया ना तुमने, देखो रिश्ते सारे कितने अच्छे हैं. यही अगर तुमने इस सीन में गुस्सा किया होता, अभी सब मुंह बनाकर अपने अपने कोने में बैठे होते. लुक एट वो वंडर दैट यू हैव डन टुडे, लुक एट दिस ब्यूटिफुल अचीवमेंट दैट यू हैव. अपने आप को दिखाना है, मोटिवेट करना है, ना कि क्या किया तुमने फिर गुस्सा कर दिया. फिर कोसते जाएंगे उसको, क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो अप्रिशिएट करके उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? तो वी हैव टू ओनली फोकस ऑन एवरी टाइम वी आर एबल टू डू इट, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू इट, वी ओनली हैव टू रिवाइंड दैट सीन, सी इट अगेन इन अ डिफरेंट वे, सो दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन.
1: सिस्टर, आई वॉन्ट टू आस्क यू मेनी मोर क्वेश्चन ऑन दिस. मैं चाहूंगा कि यही बातें कंटिन्यू करें हम अगले एपिसोड में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए.
0: Thank you. Om Shanti.
1: Om Shanti.
2: Earlier, when we experienced pain, we blamed others for it and wanted them to change so that we would be happy. Now, we are aware we are in pain. We are the creator of the pain and we have to heal ourselves. So, it is

0: उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया, वो उन्होंने किया। मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा थी
2: पुरिया, पुरी हप्पू हप्पू पुरिया।

0: माझं ऐकण्यासाठे करना तुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM.
3: खुश रहो खुशियाँ बांटो.
4: खाबों का सफर आरजे सनी के साथ.

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खबरों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आया हूं लेकर रेडियो प्रोग्राम। तो हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए कविता शर्मा भी है, जो बहुत ही अच्छे खूबसूरत गानों का कलेक्शन उनके पास है, जो अक्सर एच से शुरू होता है। तो आइए, आप सभी की तरफ से कविता जी का बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम खाबों का सफर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं कविता शर्मा आज फिर आपके खाबों के सफर में, और आप सब हैं मेरे सफर में। दोस्तों, जिंदगी के सफर में हमेशा इस तरह से मेरे साथ रहना और हो सके तो शांत रहने की कोशिश करना। आज भी आपके खाबों के सफर में, तो आइए सुनते हैं आज का पहला गीत। और गीत है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे।
0: ओके कविता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और गुलशन बावरा साहब ने इस गीत को लिखा था, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये गीत खास उपकार फिल्म का 1967 का। आइए सुनते हैं इस गीत को कार्यक्रम के शुरुआत में। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं कविता जी, दूसरा गाना आपके पिटारे में कौन सा है?
2: अगला गाना है हर टुकड़ा मेरे दिल का देता दुहाई, और प्यार में दुहाई दी जाए और टुकड़ा इधर उधर गिरे, प्यार का कोई फायदा नहीं। प्यार तो बस ऐसी चीज है जिसे महसूस किया जा सकता है, तो प्यार करते चलो

0: और बांटते चल, ऐसा ही कुछ गीत है, पर वो कुछ अलग है। हर टुकड़ा मेरे दिल का देता दुहाई, हर टुकड़ा मेरे दिल का देता दुहाई।
1: ओके कविता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, और ये खास गीत है जिसे कश्मीर साहब ने लिखा था, आशा भोसले ने गाया था और ओपी मैयर साहब ने इसे संगीत से सवारा था। ये रात फिर आएगी 1965 का। तो चलिए श्रोताओं, आज के इस शो में ये गाना का आनंद उठाते हैं। अभी आप सुना है रेडियो पुणे आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तेरा मेरा रिश्ता को क्या नाम दूं, ये नाम दूं या वो नाम दूं? इस दुनिया की भीड़ में नाम हो जाते हैं बदनाम, क्यों ना अपने रिश्ते को बेनाम ही रहने दे। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज। आइए कविता जी, एक और गीत कौन सा है अब आपके बिटारे में?
2: दोस्तों ये गाना कुछ ऐसा है, एक आदमी ने मूर्तिकार से पूछा, आप पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? उसने उत्तर दिया, उसमें सुंदरता पहले से ही छुपी हुई रहती है, मैं सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटाता हूँ, वास्तविक सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है, सिर्फ आप बाहर उस सुख को ढूंढते हैं, अपनी चिंताएं हटाकर अपने अंदर के सुख को झांकने की कोशिश कीजिए, सुख इधर उधर नहीं मिलेगा, सुख आपके अंदर ही है, जिस तरह से नीले आसमान में बादल होते हैं और बारिश होती है, उसी तरह

0: सुख भी आपके अंदर है। जब सुख को महसूस करेंगे तो अपने आप ही बाहर निकलेगा। इसी तरह से यह गीत भी है कि हमारे अंदर सब तरह की चित्र कलाएं हैं, पर हम उनको ढूंढ नहीं पाते और बाहर ढूंढते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने अंदर उन चित्र कलाओं को ढूंढे। ऐसा ही कुछ ये गीत भी है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन।
1: बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है, भरत व्यास जी का लिखा हुआ, मुकेश साहब का गाया हुआ, सतीश जी का संगीत, बूंद वो बन गई मोती। जी हाँ, 1969 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: हरी हरी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी मिलती है हिम्मत वालों को, खुशी मिलती है तकदीर वालों को, प्यार मिलता है दिल वालों को, और आप जैसा दोस्त मिलता है हम जैसे नसीब वालों को। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता जी, आप कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
2: दिल की किताब में गुलाब आपका था, रात की नींद में ख्वाब आपका था, कितना प्यार करते हो आप हमसे पूछते हो, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। दोस्तों, मुझे जिस बात का इंतजार था वो बात ही सुनाई दी, मन में जिस बात की हलचल थी

0: वो बात मुझे एक हंसी तरह से सुनाई दी। ऐसी खुशी मिली मुझे कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना तक नहीं रहा और मैं इतनी खुली हवा को महसूस कर रही थी जैसे कि वो प्यार मेरा आसपास ही हो। दूर होने के बावजूद भी अगर हम प्यार को एहसास करें तो वो हमारे आसपास ही होता है। और मेरा दुपट्टा हवा में इतनी अच्छी तरह से उड़ता जा रहा था मानो मैं उड़ रही हूँ। यही मेरी कही एक बात इस गीत में है। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और रमेश शास्त्री जी ने इस गीत को लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, शंकर जय किशन का संगीत और बरसात 1949 का ये एल्बम से ये गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: लोग कहते हैं तुम क्यों अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे नहीं करते। मैंने कहा जो लफ्जों में बयां हो जाए सिर्फ उतना प्यार हम उनसे नहीं करते। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। कविता जी, अब अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: दोस्तों अगला गाना है हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। और जब हम एक पेड़ के नीचे बैठकर उन हवाओं को महसूस करते हैं और वो हवा की तारीफ करते हैं, इसी से सुनते हैं ये हवाओं की तारीफ। आइए सुनते हैं ये गाना हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: ओके, गुलजार साहब का लिखा हुआ खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। किशोर दा का गाया हुआ संगीत हेमंत कुमार साहब का है, दो दूनी चार, 1968 का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कशिश तो बहुत है मेरे प्यार में, लेकिन कोई है पत्थर दिल जो पिघलता नहीं। अगर मिले खुद तो मांगूंगी उसको, सुना है खुदा मरने से पहले मिलते नहीं। खाबों के सफर में आइए आगे बढ़ते हैं। कविता जी, अगला गाना कौन सा है आपका?
1: दोस्तों, अगर हम किसी से किसी वजह से दूर चले जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसमें कोई गलती है या मुझ में कोई गलती है। इंसान की बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, जिससे जुदा भी होना पड़ता है, एक दूसरे को छोड़कर जाना भी पड़ता है। समय के हिसाब से अगर हमने उसको नहीं समझा तो समय हमें खुद समझा देता है। प्यार को कोसने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत होती है। ये हम समय के हिसाब से ही समझ जाएं। तेरी जुदाई भी हमें प्यार करती है, तेरी याद बहुत बेकरार करती है। वो दिन जो तेरे साथ गुजारे थे, नजरें तलाश उनको बार बार करती है। हो जुदाई का सबब कुछ भी मगर, हम उसे अपनी खता कहते हैं। वो तो सांसों में बसी है मेरे, जाने क्यों लोग मुझसे जुदा कहते हैं। इसी से ही कुछ ऐसा गाना है, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ओके, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, सैड सॉन्ग है लेकिन बहुत ही प्यारा है। कैफी आजमी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी और मन्नाडे का गाया ये खूबसूरत गीत, संगीत मदन मोहन का, हकीकत 1964 का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: है रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: फिर वही दिन होगा, फिर वही रात होगी, लेकिन न जाने फिर कब मुलाकात होगी। मगर करते रहना SMS, तभी तो दिल से दिल की बात होगी। तो श्रोताओं, आपका प्यार, आपका SMS, आपके फोन कॉल्स हमें मजबूती देते हैं, प्यार देते हैं, हमारे दिल को खुशी प्रदान करते हैं। इसलिए आप मैसेज फोन करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों के सफर में। कविता जी, आप कौन सा गीत है आपके पास?
2: ये सच है, प्यार को अगर किसी ने महसूस किया तो उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सारा जहां फीका पड़ा रहता है, क्या धन क्या दौलत, कुछ भी नहीं। प्यार एक दूसरे से अगर दूर भी है तो ये सोचकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी भागकर बस अपने प्यार के पास पहुंच जाओ, दो चंद बातें करो। सबको प्यार करने के लिए हम इस दुनिया में आए थे, पर बीच में आप जरा ज्यादा पसंद आ गए। तुम एक बार मुझसे मुझ जैसी मोहब्बत करके तो देखो यारो, प्यार उम्मीद से कम हो तो सजाए मौत दे देना। ऐसा ही कुछ प्यार को लेकर ये गीत है, सुनेंगे। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चले आई, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चले आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई।
1: ओके, ये भी मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, लता मंगेशकर और भूपेंद्र हजारिका ने इसे गाया था। सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म ज्वेल थीफ 1967 का ये फेमस फिल्म है जिसमें देवानंद साहब ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है। जोड़ी वाला फिल्म ज्वेल थीफ का खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: दोस्त तेरे दोस्ती पे नाज करते हैं, हर वक्त मिलने की फरियाद करते हैं। हमें नहीं पता, घर वाले बताते हैं कि हम नींद में भी आपसे बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। आइए, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं। कविता जी, आखिरी गाना बहुत ही सुंदर सुनाइए आप।
2: और इतना खूबसूरत गाना देके जाती हूँ, आप बहुत आनंदित होकर सुनेंगे। प्यार सबने किया है और सबका प्यार सफल रही ये उम्मीद है, पर राधा कृष्ण का प्यार दुनिया में एक मिसाल है। कृष्ण और मीरा का प्यार एक इतिहास में लिखा जाता है। उनका प्यार होली में कुछ इस तरह से रंग बिखेरता है, हर जगह कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देता है। रंग बहुत ही बिखरे हुए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। राधे कृष्ण का मतलब राह दे कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा। राधे कृष्ण का मतलब राह दे कृष्ण, राधिका कृष्ण का मतलब राह दिखा कृष्ण, मीरा कृष्ण का मतलब मेरा कृष्ण, हरे कृष्ण का मतलब हर एक का कृष्ण। इसी के साथ ये गीत सुनाती हूँ। होली आई रे कनाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी।
1: ओके कविता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। शकील बदायूं साहब का, शमशाद बेगम का गाया हुआ, नौशाद साहब का संगीत, मदर इंडिया से 1957 का ये खूबसूरत गाना है। और 1957 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी मदर इंडिया, इसके पोस्टर्स देख देख कर लोगों ने बहुत बार इस फिल्म को देखा। इसके पोस्टर बहुत फेमस पॉपुलर रहे। नूतन खास इस फिल्म में अपना रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपको अभी सुनाया जाएगा। इसमें होली का जो फील है वो आता है, होली आई रे कन्हैया। तो आइए सुनते हैं इस गीत को, और इसी के साथ हम, मैं और कविता जी चाहेंगे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे गीतों को लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनीरी आवाज के साथ, और जाते जाते आपके लिए ये चार लाइनें खास। हिचकियां क्यों मुझे आने लगी है, फिजाओं से भी सिसकियां आने लगी है, ये सोचकर दिल है बहुत खुश, ये सोचकर दिल है बहुत खुश कि याद मेरी भी किसी को आने लगी है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आर है मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग विशेष जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी को जोड़ना चाहेंगे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग हर सैटरडे आपसे मिलते हैं और एक नए करियर के बारे में बातें करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विशेष एक यूनिक जो करियर ऑप्शन है उसके बारे में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, निवेश बैंकर के रूप में एक करियर का बहुत ही सुंदर विकल्प है जिसके बारे में शायद ही कोई जानते हो। तो आज हम लोग इस विशेष करियर के बारे में बातें करेंगे और ये एक चैलेंज वाला है लेकिन बहुत ही काम का है, क्योंकि आज के समय में तेजी से बदलती आर्थिक दुनिया में निवेश बैंकर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई बड़ी कंपनी पूंजी जुटाना चाहती है, किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण, मर्जर एंड एक्विजिशन करना चाहती है या शेयर बाजार में प्रवेश करना चाहती है आईपीओ, तब निवेश बैंकर की भूमिका सबसे अहम होती है। ये करियर न केवल उच्च आय देने वाला है बल्कि रणनीतिक सोच, विश्लेषण क्षमता और नेतृत्व कौशल की भी मांग करता है। तो साथियों, अब समझ गया होंगे कि आपको मैं किस करियर के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, निवेश बैंकर। जी हाँ, ये कौन होता है? निवेश बैंकर वो पेशेवर होता है जो कंपनी और सरकारों और बड़े संस्थानों को पूंजी जुटाने, वित्तीय सलाह देने, विलय अधिग्रहण, शेयर और ब्रांड जारी करने जैसे कार्यों में मार्गदर्शन करता है। सरल शब्दों में निवेश बैंकर पैसे और अवसरों के बीच सेतु का काम करता है। साथियों, निवेश बैंकर के मुख्य कार्य होते हैं, पहला है पूंजी जुटाना, कैपिटल रेजिंग। कंपनियों को आईपीओ, एफपीओ, ब्रांड या डिबेंचर के माध्यम से धन जुटाने से सहायता करना या धन जुटाने में सहयोग करना। दूसरी बात आती है साथियों यहां पर विलय और अधिग्रहण, M&A। दो कंपनियों के विलय या किसी कंपनी के अधिग्रहण की पूरी रणनीति बनाना। अब बात आती है तीसरी, वो है वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल एडवाइजरी। निवेश विस्तार, पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्टिंग,

और जोखिम प्रबंधन पर सलाह देना। चौथी बात आती है बाजार विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस, शेयर बाजार, उद्योग और अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन। पांचवी बात आती है ड्रिल स्ट्रक्चरिंग, सौदे की शर्त तय करना और उन्हें कानूनी व आर्थिक रूप से संतुलित बनाना। तो ये कुछ बातें थी जो एक निवेश बैंकर की मुख्य कार्य में आता है। तो चलिए, कौन बन सकता है, क्या मुख्य कार्य हैं और चैलेंजेस क्या है, वो मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की। चलिए विस्तार से आगे जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। अब देखिए, जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसमें काफी बड़ी बातें आती हैं और आप देखते हैं आए दिन शेयर मार्केट की बातें सुनते हैं, आए दिन घोटाले की बातें सुनते हैं, आए दिन अच्छी जो है प्रॉफिट हो रही है ऐसी भी बातें हम लोग सुनते हैं। निवेश बैंकिंग के अंदर इन सारी बातों का जो गहरी जो क्या कहते हैं स्टडी जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा विचार विमर्श और गहन अध्ययन का ये एक बहुत ही सुंदर कार्य है। निवेश बैंकर के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक पहला आता है जिसमें ब्लूज ब्रैंकेट बैंक, जैसे गोल्डमैन सैच, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनले। दूसरी बात आती है यहां पर बैंकिंग के जो प्रकार में मिड मार्केट बैंक, मध्यम आकार की डील्स पर काम करने वाला बैंक। तीसरा आता है ब्यूटिक इन्वेस्टमेंट बैंक, विशेष सेवाओं में विशेषज्ञ। तो ये तीन प्रकार के बैंकिंग निवेश बैंकिंग होते हैं और इसके साथ में आवश्यक जो पढ़ाई की बात आती है, कितनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस या मैनेजमेंट में डिग्री होना चाहिए, दूसरी एमबीए फाइनेंस।

CFO या फिर CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अत्यंत लाभकारी होता है यहाँ पर ये, या फिर CA, CS या FRM जैसे प्रोफेशनल डिग्री भी उपयोगी पड़ती है, उपयोग में आता है, और इन सारी चीजों को लेकर आप एक अच्छे निवेश बैंकर बन सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो मेन जरूरी स्किल जिसकी मैंने बात ऊपर में की थी पहले, और अब बात करते हैं मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपके पास, कब से उन्होंने कंपनी शुरू की, बैंकिंग कितना उन्होंने लोन लिया, कितना उनका खुद का लगाया और कैसे वो मार्केट में काम कर रहा है, ये पूरी जानकारी आपको A to Z होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग और एक्सेल में दक्षता होना बहुत जरूरी। तीसरी बात यहाँ पर यह आती है उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल, निर्णय लेने की क्षमता, लंबे समय तक काम करने का धैर्य, टीम वर्क और नेतृत्व। ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और जहां पर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं निवेश बैंकिंग के रूप में, तो ये स्किल्स बहुत बहुत जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पर निवेश बैंकर में करियर आमतौर पर किस प्रकार से आगे बढ़ता है, करियर ग्रोथ कैसे होता है वो आपको बताऊं तो यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से आप आगे बढ़ते हैं। पहला, आप एक एनालिस्ट के रूप में काम करेंगे। दूसरा, फिर एसोसिएट रूप में काम करेंगे। तीसरा, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। चौथा आता है डायरेक्टर के रूप में, और पांचवा आता है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, MD जिसको कहते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, जिम्मेवारी और आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती रहती है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें करते हुए हमें सैलरी का पैकेज क्या मिलेगा, है ना। सैलरी और अवसर की बात करें तो भारत में एक फ्रेशर जो होते हैं निवेश बैंकर के रूप में, सैलरी उनको 10 से 20 लाख रुपए हर सालाना शुरू होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पैकेज करोड़ों तक पहुंच सकता है। अनुभव और नेटवर्क के साथ ये करियर अत्यंत लाभदायी सिद्ध होता है, तो इसीलिए यहां पर आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन पैसे को निवेश करना या पैसे को समझना, पैसे को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा काम आपका है। अगर आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको सैलरी भी मिलेगा। सिंपल फंडा ये है, है ना। तो आपका गणना या आपका मैथमेटिक्स जो थ्योरी है वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में कितनी आपकी जो पकड़ है, उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल के साथ निर्णय लेने, इसमें बहुत बड़ा जो रिस्क होता है वो निर्णय लेने की। अगर आप ठीक से निर्णय लेते हो तो आप रातों रात भी अच्छा जो है कमा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आपकी स्किल, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके विचार शक्ति और आपकी विश्लेषणात्मक सोच जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको बताना चाहूंगा जो हम सभी को एक मोटिवेशन देगा। ये कहानी है रघु मल्होत्रा की, छोटे शहर में से रहने वाला वो लड़का। रघु मल्होत्रा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे। उनके पिता एक साधारण अकाउंटेंट थे। रघु को बचपन से ही अंकों और बाजार की चाल में रुचि थी। सीमित संसाधनों के बावजूद भी उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करना ये एक पहला स्टेप था, और क्योंकि अंकों के साथ रघु मल्होत्रा को बड़ा अच्छा लगता था, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि इससे काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने कहीं असिस्ट करते हुए, थोड़ा बहुत काम करते हुए, अकाउंट ऑफिस में किसी के साथ मिलकर काम करते हुए एमबीए के पढ़ाई भी शुरू किया। एमबीए में फाइनेंस ले लिया और उस दौरान उन्होंने फाइनेंस को चुना और रात दिन मेहनत करके सीएफए लेवल 1 पास किया। जैसे मैंने कहा था, इसमें डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है, तो उन्होंने एमबीए के फाइनेंस में सीएफए लेवल 1 पास किया और शुरू में उन्हें एक छोटी निवेश फर्म में एनालिस्ट की नौकरी मिल गई और फिर वहां उन्होंने ठीक डील्स पर काम किया। देर रात तक फाइनेंशियल मॉडल बनाते रहे और सीखते रहे, तो यहां पर उनको जो है काफी अच्छी सफलता मिली, क्योंकि बचपन से इनका रुचि इसी में था। इस वजह से ये लंबा जो अनुभव है उनको काम आया। उसके बाद उनकी लगन रंग लाई और कुछ वर्षों बाद उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक में अवसर मिल गया। बस फिर क्या था, आज रघु न्यूयॉर्क में एक बहुत ही पॉपुलर निवेश बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वीपी के रूप में काम कर रहे हैं और अरबों डॉलर्स की डील संभालते हैं। और उनकी कहानी बताती है कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा में कोई भी क्षेत्र में काम करता है, बैंकिंग में, फाइनेंस में, शिखर तक पहुंच सकता है। साथियों, यहां पर रघु मल्होत्रा की कहानी हमें ये बताती है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप जब काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो सही चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका जीवन बेहतर बनता है। तो यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और आप चिंतन कीजिए कि आपको कैसे अपने करियर को फ्रेम आउट करना, क्योंकि करियर बनाने के लिए साथियों आपकी विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। किस दिशा में आप काम करना चाहते हैं ये भी बहुत मायने रखता है, और आपकी रुचि किस दिशा में है, उसके साथ उस रुचि को फुलफिल करने वाले सारे पढ़ाई और सब कुछ स्किल्स आपके पास है। अगर नहीं है तो पहले पढ़ाई को पूरा कीजिए, स्किल्स पर काम करते रहिए साथ साथ में, और स्किल्स पर भी बहुत सारे ऐसे छोटे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, तो उन्हें भी क्रैक करते जाइए, तो पढ़ाई और स्किल्स साथ साथ में आप सीखते हुए अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ चलिए कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे आज निवेश बैंकिंग के बारे में। साथियों, ये एक ऐसा करियर है जहां पर महिलाएं भी सक्रिय रूप से काम कर सकती हैं। तो यहां पर मैं एक महिला की कहानी आपको बताना चाहूंगा। नेहा शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। समाज में ये धारणा थी कि निवेश बैंकिंग महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नेहा ने इस सोच को चुनौती दे दी और उन्होंने IIM से MBA फाइनेंस किया और एक मुख्य निवेश बैंक में शामिल हो गई। और यहां पर लगातार आप जब फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हो तो आपका एक अनुभव बनता जाता है और ये अनुभव आपको फिर सफलता की सीढ़ी में आसानी से पहुंचाता है। तो नेहा के साथ भी ऐसे ही हुआ। नेहा शुरुआत में कई बार कुछ ऊपर नीचे चीजें हुई उनके साथ में, लेकिन उन्हें उन्होंने जल्दी से संभाल लिया और उसके साथ में लगी रही। शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार खुद को साबित करना पड़ा। लंबा काम और महिला होने के नाते ये थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारते हुए मुश्किल क्लाइंट मीटिंग्स और बड़े फैसले, ये सब कुछ उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन नेहा ने कभी हार नहीं मानी और उनकी विश्लेषण क्षमता और शांत निर्णय शैली ने उन्हें जल्दी ही अच्छी सफलता दिलाई और पहचान दी। एक बड़ी M&A डील में उनकी रणनीति ने कंपनी को करोड़ों का फायदा दिलवाया। तो इस वजह से आज नेहा एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और कई युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रेरणा सूत्र है। उनकी कहानी ये सिखाती है साथियों कि लिंग नहीं, योग्यता सफलता तय करती है। है ना कमाल की बात। तो साथियों, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आशा करूंगा आप निवेश बैंकिंग के विशेष करियर को अपने लिए, अगर आप आंकड़ों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुंदर करियर है। उच्च आय और ग्लोबल अवसर मिलता है, प्रतिष्ठा और प्रभाव मिलता है, सीखने और विकास के असीम अवसर यहाँ पर है, बिजनेस और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ यहाँ पर है, लंबा कार्य समय, अत्यधिक दबाव चुनौतियां है, ये उच्च प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन इसके साथ वे निरंतर अपडेट रहने वालों के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। आप हमेशा अपडेट रही हैं। निवेश बैंकर का करियर उन लोगों के लिए है जो चुनौती से नहीं डरते, आंकड़ों से दोस्ती रखते हैं और बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। ये क्षेत्र मेहनत की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन बदले में सम्मान, अनुभव और सफलता भी भरपूर देता है। यदि आप फाइनेंस, रणनीति और नेतृत्व में रुचि रखते हैं तो निवेश बैंकिंग आपके लिए एक सुनहरा भविष्य बन सकती है। तो साथियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं सुनहरे भविष्य के लिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक नए करियर ऑप्शन को लेकर आते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन, सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

सिर्फ सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते, होते

0: डे होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुणे की आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

अब कहीं जाने दो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जब लिया तक मेरा रंग हुआ पग छोरी हो गई है हजामत कराए ये गंगा राम की।

ये तो नाचे छम छम मेरा निकले है दम, इसे भांगड़ा कौन नचाए, ये गंगा राम की।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे जो खड़े हैं अंदर आइए।
1: ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। पति पत्नी के प्यारे से मीठे से उस रिश्ते को हम तलाश रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा आ गया है कि आज वो मिठास कड़वाहट में बदलती जा रही है, इतनी दरारें क्यों पड़ गई हैं। और इन रिश्तों में हमने ये पाया कि कहीं न कहीं ओनरशिप हमें खुद देनी पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता किसी दूसरी आत्मा के साथ है लेकिन वो मुझसे होकर गुजरता है, इसीलिए दायित्व मेरा हो जाता है कि उस रिश्ते को मैं क्या मोड़ दे रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को थोड़ा और छानते हैं, खंगालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, उस रिश्ते को हम देख रहे हैं अब, चूंकि कहा जाए कि नींव है, हर घर की नींव होती है या समाज की नींव भी मानी जाती है, एक गृहस्थ जीवन, एक पति पत्नी का जीवन, और वही आज कहीं क्वेश्चन मार्क पर है। आज तो वक्त ये आ गया कि लोग कहने लग गए हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑब्सोलीट, इट शुड बी फिनिश्ड, लेकिन अभी भी धुरी वही है, पहली सीढ़ी उसे ही माना जाता है। इवन सक्सेस का भी या सफलता की भी बात करते हैं, उसे हमने कई रूपों में देखा, कई तरह से देखा कि किस तरह से रिस्पेक्ट को हम अलग परिपेक्ष में देख रहे हैं। और हमने पिछली बार बात की थी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन कुछ बात थोड़ा सा और हम छूना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछली कड़ी में उसको काफी उससे बात की थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें हर बार शायद हम अपनी आवाज को ही सुनना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन?
1: इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दूसरे की बात को सुनना इस भाव से कि दूसरा भी सही कह रहा है,
0: अपने परिप्रेक्ष्य,
1: अपना थिंकिंग पहले बिल्कुल रेडी कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए फॉर दैट कम्युनिकेशन, और फिर उसी पर्सपेक्टिव से सुनिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव से राइट कह रहे हैं, तो उस भाव से उस बात को पूरा सुनना। और कभी भी कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकडाउन, वो कभी नहीं होना चाहिए। घरों में कई बार होता है, आर्ग्यूमेंट हो गई, डिस्कशन हो गई, झगड़ा भी हो गया शायद, फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है। अब किसी के घर में कुछ घंटों तक बंद रहती है, लेकिन कई परिवारों में ऐसा पाया जाता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, कि कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल बोलचाल नहीं है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि ईच इज वेटिंग कि दूसरा आकर पहले बात करेगा, क्योंकि दोनों यही सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, तो जिसकी गलती थी उसी को तो आकर बात करनी चाहिए, तो दोनों वेट करते रहते हैं। एंड इस प्रोसेस में कई दिन, कई बार एक एक महीना, तो जैसे बात हुई, डिस्कशन हुई, भले बड़ा से बड़ा आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन इट्स फाइन, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू, वी हैव टू, योर इट इज अ हैव टू, बिकॉज इफ यू

0: to build a beautiful relationship.
1: Have to. And we want to also.
0: Yeah. Even if, I mean, that's what I'm saying, even if you don't want to, lekin agar aapke parivar ke liye wohi healthy hai. Kyunki ye jo breakdown hota hai, ye hamare aapas ke relationship pe bhi affect karta hai aur bachcho pe bhi bahut zyada affect karta hai. Kyunki itne din tak baat nahi karna, ye bahut unhealthy
1: hai. It's very, very difficult also. Bahut strenuous bhi ho jata hai. Pura mahol itna strenuous rehta hai ki aap bhagte hai.
0: Aur isme kai bar ye bhi ho jata hai ki pehle kaun baat karega. Aur is process mein actually itne din guzar jate hai. So I think in this beautiful close relationship, hame wait nahi karna chahiye ki dusra baat kare. Meri galti thi ya samne wale ki galti thi, how does it matter? This is not office. Even office mein abhi hame is tarah ki cheezon par nahi wait karna chahiye, lekin ye to parivar hai hamara.
1: Aur jitni hum der karte jayenge utni resentment badhte jayegi, utni aur kahani apne andar hum kuch na kuch karte
0: aur utni negative energy hum ek dusre ko transmit kar rahe hain. Harmony in relationship hum kehte harmony. You know, isko hum log bahut simplify kar dete hain ki maine haar mani, koi baat nahi. Haar mani, jahan ek ne haar mani to relationships mein wo harmony ho jayegi, nahi to.
1: Lekin again, haar manna yahi se padega. Ye ek doha hai ki rahiman dhaga prem ka, ek baar agar toot gaya to dobara nahi judta, agar gaanth pad jaye to wo gaanth hi padti hai. Lekin har baar hum ye kehte hain ki wrong belief pe hum apna jo hai thought create karte hain. I just want to ask you, do you believe in that?
0: Just one thought away. Aapka wo dhaga khulna, just one thought away. In fact, hume kisi ka phone bhi aaya aur unhone yehi episodes dekh kar aur kaha ki hamari to itne saal se rishta kharab hai. You know, bilkul hi hum ek dusre se bahut dur ho chuke hain. So how is it possible ab wapas aana? We have to ask ourselves. कि कितना इजी है वापस वो नजदीकी लाना, क्योंकि वो हमें दूसरे को नहीं परिवर्तन करना ना. तो वन थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, बट यू हैव टू डू इट एंड सी इट. इस पर अगर हम सोचते रहेंगे कि कैसे नहीं हो सकता, इतनी बिटरनेस थी, इतनी दूरियां थी, कैसे हो सकता है, नहीं. वन थॉट एंड इट्स डन. एब्सोल्युटली.
1: अगेन वही एक थॉट, एक माइंडसेट का शिफ्ट जो है
0: अभी तक हम उनको गलत समझ रहे हैं. सामने वाले व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं, बस वो गलत को सही आप जब कर लेंगे और इंटरनली कन्विंस होकर ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि नहीं वो अपने दृष्टिकोण से सही थे, आपका धागा बिल्कुल सुलझ जाएगा. वो गांठ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आपको लगा ये सही थे तो फिर आपके अगेंस्ट कोई, मेरे अंदर मन में कोई हैवीनेस नहीं आ सकती है. And everything is sorted out.
1: That's beautiful. But aap samajh lenge, samne wala samjhega ya nahi?
0: No, only one person needs to do it first. Agar hum wait karte rahenge ki dusra bhi kab kare, chalo main to kar lu, lekin wo to nahi karenge. Ek ne hi karna hai. Dusra to waise hi ready baitha hai. Actually dono ready baithe hote hain. Because everyone wants a good relationship. Lekin wo ye kaun pehle kare? Aur sahare ki ye soch raha hai ki main karu to pata nahi wo ready ho ya nahi. To ek jana karke dekho. Aap kare, dusra ready baitha. Just waiting to come forward. Just move your hand forward and aapko wo dusra haath wahan se aata hua dikhai dega.
1: So Shivani, aaj ke is daur ki jo baat hum kar rahe hain ki jab ghar se bahar hum zyada waqt guzar rahe hote hain ya kahin na kahin wahan bahar रिलेशनशिप ज्यादा आसान लग जाता है क्योंकि वहां इतना बोझिल हो चुका होता है, तो ये सबसे ज्यादा देखा गया है जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया जा रहा है. समाज के हर एस्पेक्ट में हमें वो नजर आ रहा है. एक बात मैं ये जानना चाहती हूं कि क्यों इतना ज्यादा है, ये क्यों इतना सहज हो गया है, हमने सारे आदर्श सारी मान्यताएं क्यों ताक पर रख दी. और दूसरी बात ये कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसे कभी भी मैरिज में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं आती है. It has to be retained. Marriage is being retained. क्यों हम इतने हो गए हैं कि दो चेहरे उड़कर ही हम रहना चाहते हैं? क्या हम इतने कहीं depleted हैं?
0: हाँ, एक तो आत्माएं हम बहुत कमजोर हो गई हैं वर्तमान समय. और क्यों हमारा झुकाव दूसरी तरफ बाहर जा रहा है? क्योंकि हमने एक इमेज बनाई है. See, we said every relationship, हम अपनी consciousness में एक इमेज क्रिएट करते हैं. तो फॉर अ हस्बैंड और फॉर अ वाइफ स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके माइंड में एक इमेज है कि मेरी वाइफ इस तरह से होनी चाहिए और दी अदर वे अराउंड. अब व्यक्ति कोई और उसमें होंगे प्लस एंड माइनस, तो कुछ चीजें आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं एंड आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, चल रही है ठीक से, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उनको चेंज करके अपने इमेज की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा उतना ज्यादा रेडी नहीं है चेंज होने के लिए. अब कहीं न कहीं चलते हुए

0: अगर आपको कोई मिल जाता है जो आपकी इमेज के साथ ज्यादा मैच करता है।
1: पूरा वो भी नहीं करेगा,
0: पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कोई एक मिल जाए ऐसे व्यक्ति बाहर जो आपकी इमेज से मैच करता है, तो देन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, यू नो, बिकॉज अच्छा ये था मेरे माइंड में एक्चुअली, दिस इज हाउ माई वाइफ शुड बी और दिस इज हाउ माई हस्बैंड शुड बी, एंड तब थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते कि वो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस की जो इमेज है उसके साथ वो हो रहा है। हम ज्यादातर चाहते हैं कि हमें ये सारा रिलेशनशिप हो भी रहा है क्यों कॉम्प्लिकेटेड, हम लोगों से खुशी चाहते हैं, हम लोगों से प्यार चाहते हैं। हमने पहले ही देखा कि आत्माएं सारी बहुत कमजोर हो चुके हैं। सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें किसी और से खुशी मिलती है या खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है। नाउ द हस्बैंड वांट्स हैप्पीनेस फ्रॉम द वाइफ, ही डजंट रियलाइज कि हैप्पीनेस इज माय ओन क्रिएशन, आई कैन क्रिएट इट। अब अगर वाइफ से नहीं मिले वो हैप्पीनेस, इट मीन्स स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप, वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी और से मिलने से शायद वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हैं, और उनका बिलीफ ये बन रहा है कि मुझे इनसे खुशी मिल रही है, मिल उनसे भी नहीं रही है, ये सिर्फ ये है कि मैं उस व्यक्ति से मिलने से अपने अंदर वो खुशी क्रिएट कर पा रहा हूँ, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग इट एंड आई कुड हैव क्रिएटेड इट इवन हियर, but I'm creating it there, and then I start thinking that I'm getting it from that person, and tab hum kehte hain jo mujhe aap se nahi mila
1: wo wahan se mil raha,
0: wo wahan se mil raha,
1: mila actually apne aap se hi
0: mila apne aap se,
1: kyunki kahin na kahin main satisfied ho gaya ki mere image se juda hua koi vyakti hai jo mujhe mil gaya,
0: right? To mila apne aap se hai, ye meri apni creation hai, main agar is relationship pe work karna chahun to main isme rehkar bhi usko create kar sakta hu, but again then I have to understand how my mechanism works. Basically what is happening, ek to aapka relationship choose karke hua, it's out of choice, and some relationships which are not with choice. Ab ye jo marriage ka relationship hai, ye to already ban chuka hai na, uske baad aage parivar bhi hai, to ye relationship ko aap disturb nahi karna chahte, lekin kahin na kahin you got a choice to also spend more time with somebody else, to aapne wo bhi karna shuru kar diya, and it starts with just, you know, are you like spending time with another person, kyun, kyunki shayad aap apni wo wali, again this is coming because ghar pe lack of acceptance hai. Agar main aapse apni koi baat share karna chahta hu lekin pata hai ki aap accept nahi karenge, to mujhe koi aur chahiye jisse main wo share karu, सोचते हैं कि मुझे कोई और चाहिए, तो फिर हम किसी और से शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे को तो डजंट हैव टू स्पेंड द लाइफ विद मी, तो वो हमें एक्सेप्ट करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है, और जो हमें एक्सेप्ट करेगा ये नॉर्मल है, आत्मा का संस्कार कि जो हमें एक्सेप्ट करेगा हम उसकी तरफ ड्रॉन होते हुए चले जाएंगे, एंड दैट्स वाई वी फील एक्सेप्टेंस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी रिलेशनशिप। अगर आप घर के अंदर, इवन जो आपने कहा था ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे फ्रेंड्स की तरफ क्यों चले जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है। अगर पेरेंट्स से मिले फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी ये कभी नहीं टूटेगी। सेम विद द हस्बैंड वाइफ, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, किसी और से वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अपने आप झुकाव हो जाएगा, फिर आप अपनी हर बात वहां शेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रांग बॉन्डिंग वहां होगा, और जहां वो बॉन्डिंग स्ट्रांग हुआ तो घर वाला जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कमजोर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। बट इसमें भी बहुत ईजी है ऑपोजिट पर्सन के लिए, अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ सकते हैं। डू नॉट गिव अप, क्योंकि ये जो जुड़ता है बाहर रिलेशनशिप, ये बहुत एक मोमेंट्री रिलेशनशिप है, ये सिर्फ इसको एक ये फ्रेंडशिप है, एक फ्रेंडशिप है एंड इट्स फाइन। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, अगर इसको हम वो राइट फाउंडेशन पे ले आएंगे तो वो एक फ्रेंडशिप ही रहेगी, फ्रेंडशिप इज फाइन, दिस विल ऑल गेट बेटर। हम ज्यादातर डिस्टर्ब इस चीज से हो जाते हैं कि हम उस रिश्ते को कैसे तोड़ें, हम ये नहीं समझते हम इस रिश्ते को कैसे जोड़ें।

0: जो ये पुराना रिश्ता था, जो रिश्ता था ऑलरेडी, जो एक्चुअल में रिश्ता है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको जिया होता है और एक पूरा परिवार खड़ा किया है. सो दैट इज माई स्ट्रांग बॉन्डिंग एक्चुअली.
1: राइट, बट वेन वी कम टू नो कि ईदर माई हस्बैंड और वाइफ इज हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड, माई ऑल माई एनर्जी, फर्स्ट आई हेट द पर्सन, सेकेंड आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, यू नो, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तो आप एक क्रिमिनल हैं, आपने ये गलत किया. तीसरा पूरा थिंकिंग ये होगा कि वो रिश्ते को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि हमने ये सोचा कि वो रिश्ता टूटेगा
0: तभी ये जुड़ेगा,
1: तब ये घर आ जाएंगे वापस, मतलब द पर्सन विल बी ड्रॉन
0: बैक, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी.
1: That's not the truth. वो भले रिश्ता टूट जाए, आप कुछ भी करके तोड़ भी दें उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जुड़ गया जो टूटा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ क्रैक है, तब तो कहीं और जुड़ा. तो नेवर फोकस योर एनर्जी ऑन द डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट. हमारी सारी एनर्जी डिस्ट्रक्शन पार्ट पर होती है, उसको कैसे तोड़ा जाए. इट शुड ओनली फोकस ऑन जो है फाइन, इसको कैसे जोड़ा जाए. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमें हमेशा लगता है कि उनकी गलती थी इसीलिए दे आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, आई हैव टू रिमेम्बर दैट इफ माई हस्बैंड और वाइफ गोज इन टू अ रिलेशनशिप, प्रॉब्लम इज हियर. क्यों गया व्यक्ति घर की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां वो बॉन्डिंग नहीं थी ना. बॉन्ड एक ही जगह जुड़ेगा, अगर यहां जुड़ा हुआ होता ठीक से फिर तो दूसरी तरफ ना जाता. तो ये बॉन्डिंग को क्यों ना स्ट्रांग कर ले. अगर कुछ हुआ है, द पर्सन हैज गॉन एंड हैड अनदर फ्रेंडशिप आउटसाइड, नो प्रॉब्लम, हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए दे फाउंड अ नीड टू टॉक टू समबडी एल्स. कैन आई हील दिस बैक. एंड नाउ व्हाट इज नीडेड इज इंस्टेड ऑफ नफरत देना, इतनी यू नो अपसेट होकर वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो करना, आपको बिल्कुल ऑपोजिट देना पड़ेगा, क्योंकि आप वो बॉन्ड को, इफ यू वॉन्टेड टू वर्क अगेन, इसमें आपके पास दो चॉइस है, या तो आप जो रिश्ता थोड़ा सा बना हुआ है उसको पूरी तरह से तोड़ दें, बट अगर जोड़ना चाहें तो इजी है, बहुत इजी है, लेकिन अंदर से बहुत क्लीन ये थॉट चाहिए, एकदम क्लीन विदाउट एनी बिटरनेस, कि इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग, नाउ आई विल क्रिएट इट. मैं शायद उतना वो रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं दे पाई, तो अब वो एनर्जी देना. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम उस टाइम इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कि वो रिलेशनशिप और दूर हो जाता है. तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक चीज कमजोर है, एक कड़ी कमजोर है, उसको स्ट्रांग करना, तो उसको और ही क्यों खींच रहे हैं. उसको स्ट्रांग करने के लिए जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो उसको डालो. Anyone tries this, it will work.
0: लेकिन वो व्यक्ति जो किसी और रिलेशनशिप में है वो वापस कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ.
1: मेरा थॉट ही ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे टूटेगा. से अपनी एनर्जी को हम एक ही जगह लगा सकते हैं. अगर हम अपनी एनर्जी को इस एंगल पर लगाए कि वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो वापस कैसे आएंगे, मुझे क्या देना है, आप देते जाइए देते जाइए, वो खिंचकर वापस आ जाएंगे. क्योंकि इट्स अ लॉ कि जहां वो पॉजिटिव एनर्जी, जहां वो प्यार जाएगा, वो आत्मा वापस खिंची हुई आ जाएगी. इट इज डेफिनेट, लेकिन इट हैज टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर एंड वेरी पॉजिटिव. ये जो विच इज लिटिल प्रैक्टिस, ये चाहिए डेफिनेटली, कि आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए, कि आपके अंदर बिल्कुल बिटरनेस नहीं हो, आपके अंदर ये थॉट नहीं हो कि पाप कर दिया है, यू नो ऐसा कुछ कर दिया है, आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे. रिस्पेक्ट थी कि आई थिंक आई लाइक दिस पर्सन एज द पर्सन इज, वो इंटैक्ट रहे. गिव सो मच लव, जस्ट वेट एंड सी, मैजिक विल हैपन. नॉर्मली बहुत लोग वापस घर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर कि उनको घर पे वो वायुमंडल वैसा मिलेगा, परिवार से वो एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली घर में सारे लोग उनकी तरफ इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जैसे कि पता नहीं क्या करके आए हैं. तो वो दृष्टिकोण इतनी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ फेंकता है कि वो उस घर से पास आने की बजाय और दूर हो जाते हैं. तो घर का वातावरण इतना वेलकमिंग हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर फैमिली एंड वी आर फैमिली एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट पर्सन विल वॉन्ट टू कम बैक होम.
0: डेफिनेटली मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू नो टू एक्सेप्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इवन इफ यू एक्सेप्ट
1: वन थॉट अवे, वन थॉट

0: a way to accept. Kuch nahi hai.
1: It will happen again. These
0: are questions. I want to make this relationship work. Mujhe. I want to make this relationship work and I will accept. Jaise hum sara din mein choti moti bahut sari galtiyan karte hain, ek galti aur ho gayi thi. That's all. But I want to make this relationship work. I'll be waiting. Absolutely. And uske baad, jab wo vyakti wapis ghar ki taraf aa jate hain, it should be very positive. Ye nahi, you know, kai baar humne dekha ki the wife forgives the husband. Lekin phir wo expect karti hai ki, you know, jaise ki maine bahut bada ehsaan kar diya hai aapke upar, aapko forgive karke. No. And then she'll keep on rubbing it in. You know, bahar bahar rub in karenge ki nahi, aapko, aapne ye kiya tha. Aapne ye kiya tha.
1: Forget to nahi hua.
0: Haan, to bahar bahar yaad dilane ki koshish karegi ki main kyun trust karu. Main kyun trust karu. Aapne to. So that is damaging. आप जोड़ रहे हैं एक रिश्ते को. एक्चुअली उस इंसिडेंट को उसके बाद थॉट में भी आना नहीं चाहिए.
1: लेकिन वो विक्टिम बनने का जो हमारा
0: वो हम अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं. इफ आई वॉन्ट टू गेट यू नो थिंग्स माई वे तो मुझे दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है ना, तब तो मेरी सुप्रीमेसी हो जाती है उसके ऊपर. तो जैसे ही दूसरे की गलती दिखाकर दूसरे को नीचे किया तो मेरी बात मानी जाती है. तो आई यूज इट एज अ वेपन विच इज वेरी हार्मफुल.
1: एंड इनफैक्ट इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट नॉट टू रिमेम्बर बट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. बट अगेन व्हेन यू सेड अबाउट हीलिंग, यू नो, मेडिटेशन इज द ओनली प्रोसेस वी नो विच एक्चुअली कैन हील. बिकॉज आई थिंक समवेयर द पर्सन हु हैज बीन वेटिंग नीड्स टू हील मोर.
0: एब्सोल्युटली.
1: यू नो, शी हैज टू बी, और ही, व्होएवर, नीड्स टू बी मच मच मोर स्ट्रॉन्गर themselves.
0: नहीं तो उन्हें ये जब रियलाइज हो जाएगा ना कि इट्स ओके, इट्स अगेन अ कार्मिक अकाउंट विच पुल्ड. एक कार्मिक अकाउंट ही था जो अपनी तरफ खींच के ले गया, वापस आ गए हैं. और जितना हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ाएंगे, तो जो चीज लगती बहुत मुश्किल है, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती नहीं है. हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये साउंड कर रही होंगी शायद कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, और ये एक्चुअली डिस्कस करने जैसी भी बात नहीं है, इसको बस कर दीजिए. दे आर सो सिंपल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट. करना बहुत मुश्किल नहीं होता, यहाँ स्वीकार कर लेना सिर्फ मुश्किल होता है.
1: सुश्री शिवानी, बात वही आती है कि जब कोई भी बाहर से किसी रिश्ते से लौटता है तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं उसे स्वीकारने को.
0: डू वी हैव अ चॉइस? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ दैट. दैट्स व्हाट. मुझे अपने आप के साथ कैसे फील करना है और मैं इस रिलेशनशिप को या इस रिलेशनशिप में कितना और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दैट पर्सनल डिसीजन आई विल टेक. फॉरगिविंग और नॉट फॉरगिविंग इज नॉट समथिंग वेरी बिग आई एम डूइंग. बात सिर्फ ये है कि इफ आई से आई एम फॉरगिविंग, तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ. क्योंकि अगर मैं आपकी की हुई किसी बात को जो मुझे तकलीफ देती है, अगर मैं उसको होल्ड बैक करके रखती हूँ, तो मेरा वो मनन उस पर चलता रहता है, तो वो मुझे तकलीफ देती है. और अगर मैं उसको लेट गो कर सकती हूँ कि ठीक है, मेरे लिए ये एपिसोड एक था जो कि फिनिश हो गया, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, इट्स ओवर, तो मैं अपने आप को हल्का कर सकती हूँ. तो इट्स मोर अबाउट मैं अपने आप को कितना पेन देना चाहती हूँ. सो इट्स फॉरगिविंग बेसिकली. वेन एवर वी फॉरगिव समबडी एल्स फॉर द बिगेस्ट थिंग दैट दे हैव डन, इट्स फॉरगिविंग माई सेल्फ. बिकॉज वेन आई से आई फॉरगिवन यू मीन्स आई हैव जस्ट टेकन इट आउट फ्रॉम हियर. एंड थोड़ी देर रोज अपने आप को एम्पावर करने के लिए समय निकालें. और ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि जो व्यक्ति वापस घर आया है वो बहुत ज्यादा आपके लिए कुछ कर सकेगा उसमें, क्योंकि वो खुद बहुत दर्द से गुजर रहा है. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ. क्योंकि यहां गिल्ट है, फिर यहां लग रहा है कि सब लोग सोच रहे होंगे मैं गलत करके आया हूं, फिर एक जो बाहर एक अटैचमेंट हो गई थी तो अटैचमेंट से किनारा करके आए हैं,
1: तो वहां का
0: वो दर्द है, फिर उस रिश्ते को टुकड़ा दिया, वो गिल्ट है. सो मेनी थिंग्स. एंड प्लस अपने अंदर कॉन्शियसनेस कि राइट किया या रॉन्ग किया, किसके साथ राइट किया. इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन. अब उसको क्या चाहिए? सो मच हीलिंग पावर. उससे उस हालत में हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ तो करे, इतनी गलती करके वापस घर आए, ये इस रिश्ते को जोड़े. नहीं, वो उस हालत में नहीं है. वो बिल्कुल जैसे डिस्चार्ज, टोटली गिरे हुए हैं यहाँ पे.

0: mentally. So much healing is needed. Don't expect anything. Yes, we are in a lot of pain, but the person who has come back is in much, much, much more pain because uske upar bahut zyada aur factors pe play kar rahe hain. So he needs lot of, he or she needs lot of love and healing. So uske liye hame khud ko empower karna padega.
1: Meditation
0: usme bahut madad karegi.
1: Meditation ki technique ek bar phir hum janenge, lekin usse pehle isi se juda ek aur sawal ki jab hum is bahar kahin pull hai, attraction hai, jaisa ki aapne abhi kaha ki us rishte mein भी जब हम जा रहे होते हैं, जैसे अब वापस लौटे हैं तब भी गिल्ट है, जब जा रहे होते हैं, जब वो पुल है तब भी तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है
0: गिल्ट है,
1: कुछ गलत
0: absolutely, कर absolutely पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं. लेकिन वही है ना, जैसे जब कोई कुछ भी हम काम करने जाते हैं हमें अंदर एक आवाज तो आती है. आवाज भी मतलब क्या, मन में दो प्रकार के थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे डिसाइड करके यू डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप. वो शुरू कैसे होगी, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे ज्यादा कुछ शेयर करना, फिर और ज्यादा बहुत सारी बातें शेयर करना. दैट्स हाउ अ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. यू डोंट गो एंड हैव अ बॉन्डिंग लाइक दिस. That's not a bonding. This, we are talking of a bonding. तो वो gradually over a period of time develop हुई है. तो शायद हमने intellect को बहुत ज्यादा उस दौरान use नहीं किया, और intellect अगर कहीं ना कहीं judgment दे भी रही थी कि ये wrong है, लेकिन हमें वो चीज अच्छी लग रही. और soul consciousness जब हमें समझ में आता तो relationships है क्या, आत्मा का आत्मा के साथ energy exchange. We will not have to, you know, then compartmentalize it ki this relationship and that relationship. It's a soul to soul exchange and purity. Main atma ka original swaroop purity hai. To wo purity itne emerge hoti jayegi ki impurity ka trace bhi thoda sa furnish ho jayega. Lekin roz ki apni checking, savere, introspection, talking to yourself and talking to God definitely. And raat ko sone se pehle अगर आप अपनी दिनचर्या को चेक करें तो आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, ये हो नहीं सकता. क्योंकि रोज की चेकिंग हो रही है ना, पछताते तो हैं हम बहुत समय बाद कि ये मेरे साथ क्यों हो गया है.
1: क्योंकि वो निकल चुका होता है ना, लाइक
0: यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे नो यू नो इट्स गॉन रॉन्ग, एंड देन दे विल से बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप.
1: हियर आई वांट टू आस्क यू बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग. There might be many people who are still involved. They want to come back. What to do? How to get out?
0: One thought away again. If they want to come back, agar wo mentally bilkul ready hai to come back, matlab kya? Ek attachment hai jisse apne aap ko kinara karna padega aur wapas जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, जो संबंधियां हैं, उनकी तरफ वापस आना होगा.
1: और उसका क्या जिसके साथ अपना संबंध जोड़ा था?
0: अगेन यू विल हैव टू टॉक एंड डिस्कस इट आउट, बट इट इज इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल इवन फॉर द ऑपोजिट पर्सन. ना तो आप कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट इज बिकॉज ये रिश्ते का भी तो कोई फ्यूचर नहीं है. बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है. तो जब ऑलरेडी पता है कि जिस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, जिसमें अभी शायद लग रहा है कि बहुत अच्छा है लेकिन आगे जाकर दर्द ही दर्द है, तो उसको और ज्यादा बढ़ाने का कहां तक बहुत ज्यादा फायदा होगा. तो उसको अगर आप अभी भी रियलाइज कर लेते हैं, टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट बिकॉज इट्स पॉसिबल, एंड आप खुद बहुत हल्के हो जाएंगे उसके बाद. वो व्यक्ति भी बहुत हल्के, मे बी अ लिटिल पेन, यस हो सकता है कि थोड़ा समय एक पीरियड बीच में आएगा जो बहुत यू नो दर्द वाला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो फिर भी बेनिफिशियल होगा. इवन फ्रॉम दैट पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू ब्रेक अवे, इवन फॉर दैट पर्सन इट इज बेनिफिशियल.
1: सचिन शिवानी, आज वो पर्सपेक्टिव हमने लिया जिससे कहीं ना कहीं पूरी नींव समाज की हिली हुई है, और इतनी आसानी से एक थॉट, हर बार आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक संकल्प है जो वापस ला सकता है उस नींव को, उतना ही पुख्ता कर सकता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: परिवार की इस धुरी पर हमारी सारी जिंदगी घूमती है. वो रिश्ता जो हमें सभी रिश्तों से प्यारा लगता है, हम उसके लिए अपनी जान लगा देते हैं, उस रिश्ते को जीवन भर तलाशते भी रहते हैं, और जब उस रिश्ते में हम जी रहे होते हैं तो शायद खुद ही इतनी गलतियां कर जाते हैं कि उस रिश्ते में ही दूरियां बढ़ जाती हैं. बातचीत का दौर, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी मत छोड़िए अपने किसी भी रिश्ते में. और अगर कहीं ट्रस्ट की बात है तो वो आपकी अपनी फैकल्टी है, आपको अच्छा लगता है कि आप ट्रस्ट करें, ये सब बातें भी याद रखें.

कहीं बाहर कोई ऐसा पुल है, कोई ऐसा अट्रैक्शन है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो उसे एक कार्मिक अकाउंट समझ के ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक दोस्ती में बदला जा सकता है। जो जिम्मेदारी हमारी अपनी है उस परिवार के प्रति जो हमने खुद खड़ा किया है, वो जिम्मेदारी हम अपनाएंगे। यही एक शक्तिशाली आत्मा का स्वरूप है, यही उसकी पहचान है। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446 9873 6655 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। रिश्तों को कुछ नए पैमानों पर देखेंगे, एक नए अंदाज में देखने की कोशिश हम करते रहेंगे। मुलाकात होगी अगली कड़ी में। दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। अगर आपसे मैं आज ये सवाल पूछूं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, तो हो सकता है आपके पास ये जवाब हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में मुझे लगता है ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हम इस पर कई बार बातें कर चुके हैं कि क्या सुख हमें बाहर से मिल सकता है, क्या खुशी हमें बाहर से मिल सकती है, क्या खुशी अपने अंदर ही नहीं है, अंदर कैसे तलाशें। और जो हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं उसमें पिछली बार हमने ये बात की थी कि एंगर यानी कि गुस्सा जो है उसके क्या कारण है और किस तरह की सिचुएशंस में हम एंगर को जस्टिफाई करते आए हैं। एंगर एक वेपन जरूर है लेकिन उससे कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है। कभी भी वो जो हम चाहते

0: हैं वो हमें नहीं दे सकता है। और आज बात करेंगे खुशी की कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जान पा रहे हैं कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए। कैसे मिल सकती है वो खुशी, क्या है खुशी, हैप्पीनेस कैसे डिफाइन की जा सकती है और कौन से रास्ते पर चलकर हम उसे पा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सुश्री शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो अगर हम पिछली कड़ी में देखें तो हमने ये डिफाइन किया था कि एंगर के कारण क्या है और कहीं ना कहीं जो हम वेपन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उसे देखते थे वो नहीं है, उससे कभी हमें मंजिल नहीं मिलती है। एंगर का ही एंटीडोट या एंगर से दूर जाने का एक तरीका हैप्पीनेस है, ये आपने कहा था। तो क्या हम हैप्पीनेस को डिफाइन कर सकते हैं आज के इस वक्त में, क्या सुख को या खुशी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ?
1: मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन में इतना जाना नहीं चाहिए। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्यार की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है या प्यार इम्पोर्टेंट है?
0: प्यार।
1: आपको प्यार चाहिए? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कुछ भी हो, प्यार मिल गया संतुष्ट होंगे जीवन में। तो वैसे ऐसे ही है कि भी सुख की डेफिनेशन में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। बस जनरल बात पता होनी चाहिए हमें, ध्यान में तो ये रखना चाहिए कि कौन सी बात आपको सुख देती है वह एक और इश्यू है, परंतु वह सुख सदा के लिए टिकता है या नहीं। या मुझे थोड़ा समय, दो घंटा सुख का अनुभव हुआ फिर दुख का अनुभव हुआ, ऐसी स्थिति हमारी न रहे। और एक जो लेवल है वह सदैव आनंद की स्थिति, मन आपका हल्का है, शांत है, खुशनुमा है, इस प्रकार की स्टेज आपकी जब टिक जाए, एक जिसको परपेचुअल हैप्पीनेस कहे, वह सबसे बेस्ट है।
0: एटर्नल हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, हमेशा हम सुख का अनुभव
1: करते रहे।
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, बात उसी पे आती है कि आज जब हम सब कुछ तलाश रहे हैं, जब हमारी सारी पुरानी धारणाएं जिसपे हम ये कहते थे कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, अब जब वो सारी मान्यताएं तोड़ने पे आए हैं, हम नए बिलीफ सिस्टम्स को ले रहे हैं या नए एहसासों को ले रहे हैं, ऐसे में जो जो बातें मैं अभी तक मान रही थी कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्या मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, अपना परसेप्शन चेंज करना है? खुशी बेसिकली, अगेन डेफिनेशन वाली बात नहीं, लेकिन एक एहसास है, वो एहसास कब तक कायम रहेगा और क्या वो सही मायने में मैं उसे समझ पाऊंगी?
2: हैप्पीनेस जैसे भाई साहब ने कहा, एक एहसास एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, एक वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। यू नो, ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है, ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता। बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want, so then it's my choice, so now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: और अगेन बात वही आ जाती है कि फीलिंग कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय
2: थॉट,
0: सो फाइनली एवरीथिंग एक्चुअली, यू नो, अगर हम देखें तो कम्स डाउन टू थॉट। तो खुशी की जो बात की है, जो हमने फीलिंग की बात करी है, वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है। थॉट्स जनरेट जो होते हैं, अब रॉन्ग बिलीफ पे हम जी रहे थे वो हमारे थॉट जनरेट करते थे।

0: बिलीफ बदल रहे हैं, नए बिलीफ लेकर आते हैं, तो क्या वो नए बिलीफ कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने बिलीफ के साथ टकराएंगे और मैं उनको ओवरपावर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और क्या मैं नए जो थॉट्स आ रहे हैं क्या मैं वो भी सही हूँ, सही लेकर चलूं? बिकॉज अगेन वी हैड टॉक्ड अबाउट इट दैट द थॉट्स आर ग्रे, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट थॉट, कोई प्योर नेगेटिव या प्योर पॉजिटिव थॉट नहीं होता है, सो वो ग्रे में होता है. तो तभी मुझे लगता है कि वो फीलिंग्स जो है वो प्योर हैप्पीनेस या प्योर दुख वाली नहीं आती है, वो कहीं बीच में ही रह जाती है, कभी खुशी कभी गम वाली.
1: नहीं, लेकिन वो डिपेंड है ना, आप कितनी देर उस तरह की थॉट को क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी चीज वो खुशी आपसे, जैसे हम कहते हैं अभी हम खुश थे, अभी ये लैपटॉप खरीदा आई वॉज वेरी हैप्पी, उतनी देर में आप सामने से आए, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब खुशी नहीं है, अब गम है, ये भी मैंने ही क्रिएट किया था, ये भी मैंने ही क्रिएट किया, सो इट्स ऑल माई क्रिएशन. तो इट्स नॉट कभी खुशी कभी गम, बट इट इज लाइक आई हैव अ चॉइस कि मुझे कितनी देर के लिए वो अच्छी वाली थॉट क्रिएट करनी है. देयर विल बी अ वेरिएशन, एक परफेक्ट 100 स्कोर नहीं है कि दिस इज द बेस्ट थॉट, लेकिन देयर आर सो मेनी थॉट्स व्हिच विल गिव मी दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट्स जस्ट दैट आई डेवलप दैट एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट काइंड ऑफ थॉट. यू नो, इट वोंट बी वन सिंगल थॉट, बहुत सारे थॉट्स हैं जो हमें वो एक अच्छी फीलिंग जेनरेट कर सकते हैं, तो हम वो सारी तरह की थॉट्स क्रिएट करें. यू नो, एक पोजिशन तक पहुंचना है, लोग खुश नहीं होते जब तक वो उस डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं, और फिर जिस दिन उस डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो एक सो कॉल्ड के आई एम वेरी हैप्पी टूडे, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी टूडे, बट आफ्टर 2-3 डेज नाउ आई हैव समथिंग एल्स. तो फिर इसीलिए फिर दैट्स माई चॉइस, देन आई एम अलाउिंग माई सेल्फ टू बी हैप्पी जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज एवरी कपल ऑफ ईयर्स, उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट रख दिया.
2: सक्सेस इज नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी, बट सक्सेस इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑन द पाथ. वो जो रास्ता अपना आप वहीं पर हर मुकाम पर आपको सुख का अनुभव हो, वह सचमुच सक्सेस है.
0: अगर हमारे थॉट्स हमारी हैप्पीनेस को गवर्न करते हैं, बिकॉज फीलिंग को गवर्न कर रहे हैं, एंड दैट फीलिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट, मैं कॉन्स्टेंट अपने जो थॉट्स है उन्हें चेक कैसे कर सकते हैं?
2: उसको चेक करने के लिए आपको जागृत होना होगा. यहाँ पर भी अवेयरनेस की बात है, भले इस पर डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, कि अगर आप सदैव जागृत है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है, वह जागृति होगी तो आप पकड़ सकेंगे. क्योंकि एक भी छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आया, समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस है.
0: मैं जागृत नहीं हूँ लेकिन मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ, तो मैं वो जो पूरी जर्नी है उसमें भी तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ उस जागृत होने के जो पूरा प्रोसेस है उसमें चल सकती हूँ.
1: That's see, awakening is a continuous process. और वो भी होता है कि जागृत होने के बाद भी बीच बीच में सो जाते हैं. यू नो, इट्स नॉट, दिस इज नॉट लाइक एक बार आप जाग गए तो आप जाग गए. लाइक यू नो, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती हैं और आप फिर वही पुराने बिलीफ सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, दूसरे ने मुझे परेशान कर दिया. एट दैट टाइम यू हैव टू क्विकली वेक योर सेल्फ अप. सो इट्स नॉट कि आप हमेशा जागे हुए हैं, आप बीच बीच में फिर वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम कभी कभी वापस आ जाता है, बट इट्स ऑल अबाउट कितनी जल्दी आप अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं कि यू फॉलन ऑफ टू स्लीप, वेक अप.
2: अवेयरनेस इज डिफरेंट आई थिंक, एक जागृति अलग बात है.
1: अवेयरनेस
2: जो बोल रहा हूँ वो अवेयरनेस कह रहा हूँ, इस समय मैं बैठा हूँ, है ना, मुझे क्या हो रहा है, कि भी पैरों में क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी है उसके बारे में सजग हो जाना, दैट इज अवेयरनेस. और आप में अगर वह सजगता आ गई तो एक भी नेगेटिव विचार आएगा पता चल जाएगा, और फिर उसको आप मोड़ सकते हैं. वह नेक्स्ट स्टेप है, परंतु वह जब तक जागृति नहीं है मोड़ना इम्पॉसिबल. और क्योंकि आज लोग अवेयर नहीं है, यहां तक कि आपको पूछे कि भी सवेरे क्या नाश्ता किया था याद है, कई बार आप देखेंगे आपको पता ही नहीं क्या किया, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट विथ अवेयरनेस. तो ऐसे सचमुच तो हर स्टेप अभी कैसे बैठे हो वो जागृति के साथ बैठे, क्या हो रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है चेहरे में, क्या हो रहा है, वह जागृति हो तो आप कंप्लीटली पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल.
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली. सजगता के साथ अगर हम जिंदगी जीते रहे तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा एहसास तो हो ही जाएगा कि दिस इज समथिंग यू नो व्हिच इज नॉट गुड.
1: और इसके लिए शायद अगर बीच बीच में साइलेंस में हो जाए तो वो सजगता इजीली आ जाती है.
2: कि ब्रह्मा कुमारी में हम अब तो हर घंटे ही अभ्यास करते हैं,
1: वही जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए हर घंटे
0: की जो हम बात

0: स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है अभी. सिर्फ पॉज करना है. शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उस तरफ कभी देखा नहीं है. तो एकदम से देखेंगे तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, टू मच कन्फ्यूजन बहुत है. लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस कर फिर भी करते रहिए, इवन अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी करते रहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन योर थॉट्स. अभी वो बहुत फास्ट है तो वो बिल्कुल कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन ये पॉजेस करने से धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी, और जैसे ही स्पीड कम होती जाएगी बहुत क्लियर दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, एंड देन इट बिकम्स इजी टू चेंज. लेकिन अगर रुक के कभी देखा ही नहीं तो क्या चल रहा है, तो चेंज करने की मर्जी नहीं है.
1: टेकिंग अ पॉज एंड थिंकिंग अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं.
0: नॉट थिंकिंग अबाउट इट. सी हियर, दैट्स द डिफरेंस. डोंट थिंक एनीथिंग एट दैट टाइम. जस्ट स्टॉप एंड लुक
1: कि क्या हो.
0: यू डोंट क्रिएट न्यू थॉट्स. नो क्रिएटिंग न्यू थॉट्स थिंकिंग कि मैं. जस्ट स्टॉप एंड लुक. इट्स लाइक आई स्टॉप एंड लुक व्हाट आर यू वेयरिंग. सिमिलरली आई जस्ट स्टॉप एंड आई लुक व्हाट एम आई थिंकिंग. आई डोंट स्टार्ट थिंकिंग एनीथिंग डिफरेंट. देयर इज अ डिफरेंस.
2: लुक जो कह रहे हैं वही बात है. वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन. वॉच योरसेल्फ. बहुत अच्छा कहा है कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर. कि जो अंदर में ऑब्जर्वर है उसी को ऑब्जर्व करो.
1: एक्चुअली वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही कर सकते हैं.
0: बस आप एक बार अभी करके देख लीजिए. हर एक सारे दर्शक अभी बैठकर देख सकते हैं. कुछ भी सोचना बंद कीजिए. जस्ट चेक कीजिए अभी क्या चल रहा है मन में.
2: और जब हम ये करते हैं तब और एक बात आती है कि वेन यू वॉच देन यू रियलाइज कि नो समबडी एल्स इज वॉचिंग. आई एम नॉट दिस बॉडी. फिर ये कहना नहीं पड़ेगा. ये तो समझाना पड़ता है कि भई आप ये शरीर नहीं है, एक चेतना है. परंतु अगर आप ये ऑब्जर्व करने की आदत डालो तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अंदर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो और कोई चेतना है, यह शरीर नहीं है.
1: बिल्कुल.
2: ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी.
1: जब हम अपने आप से ही थोड़ा ऊपर उठ के खुद को देखेंगे. बहुत ही खूबसूरत है ये कि हर घंटे अगर हम देख पाए. डॉक्टर साहब, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस हर पल जो हैप्पीनेस हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ये कई बार हम नहीं रह पाते, नहीं पॉसिबल हो पाता. कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कितनी कितनी देर तक खुशी दे सकती है. दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट एट टाइम. हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी हुई. मैंने कुछ और खरीदा, कुछ और चीजें की, वो व्यक्ति मेरे साथ मिल गया, ज्यादा देर तक हुई. कौन सी ऐसी बात हो सकती है हमारी जिंदगी में जो उस राहत तक हमें ले जाए जो इटर्नल होगी, इटर्नल हैप्पीनेस की बात हो.
2: थोड़ा सा सोचा इसके बारे में. कहते हैं कि आपको एक दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो फिशिंग करने के लिए जाओ, तो एक दिन आपको सुख मिलेगा. एक मास के लिए सुख चाहिए तो मैरिज करो.
1: अच्छा,
2: देखना सचमुच आप स्टडी करना. वो जो हनुमान पीरियड है ना, तभी सुख होता है. उसके बाद फिर से बस खुशी गम वाली स्थिति स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद ना तब रियलिटी को फेस करना पड़ता है. फिर कहते हैं कि एक साल के लिए हैप्पीनेस चाहिए तो इनहेरिट अ फॉर्च्यून. कहीं से पैसे मिल जाए तो एक साल तक आपको सुख मिलेगा. तो जीवन भर आपको सुख चाहिए तो हेल्प समवन. इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ कॉज हायर देन योरसेल्फ. और कहेंगे कि अनेक जीवन के लिए आपको अगर सुख चाहिए तो राजयोग का अभ्यास करो. ताकि वह संस्कार बनेंगे. ये जो सारा प्रोसेस संस्कार बनेंगे. इस जीवन में तो मैं सुख का अनुभव करूंगा ही, परंतु आने वाले अनेक जीवन में भी सुख का अनुभव होगा.
1: क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस कि ये जर्नी जो है ये कंटिन्यूस है. मतलब वही लिबास हम बार बार बदल लेते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका स्वरूप तो वही रहता है, और वो फिर कार्मिक डेथ साथ साथ चलते हैं. क्या जो हमारी हैप्पीनेस है, जो पूरी ये जर्नी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक. क्योंकि कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली समबडी गिव्स मी अनहैप्पीनेस. आई डोंट इवन नो यू, लेकिन आप के साथ मेरा काम करना मुझे अनहैप्पीनेस दे रहा. आप कुछ कर गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या कोई चीज कोई बात मुझे अनहैप्पीनेस दे रही है. इज इट बिकॉज ऑफ एट टाइम्स वी कैन से दैट इट इज कार्मिक डेथ.
0: इट इज सी एवरीथिंग इज अ कार्मिक अकाउंट. एक्चुअली हर चीज जो हो रही है, हर इंटरेक्शन जो हो रहा है, हर शब्द जो हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, दिस इज समवेयर कनेक्टेड. तो वो कार्मिक अकाउंट है. लेकिन हम हर चीज में उसको कार्मिक अकाउंट. सी वी डोंट वांट टू यूज एनी वेपन जहां हम अपने आप को फिर लिबर्टी देना शुरू कर देते हैं.
1: ऐसा तो होना.
0: इन्होंने ऐसा किया, कार्मिक अकाउंट है मेरा. यू नो मुझे. नो, इट्स नॉट ट्रू.

0: उन्होंने जो किया, देन अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग, उन्होंने जो किया वो कार्मिक अकाउंट था, अब आपके ऊपर है, अगर आप स्टेबल रहेंगे उस परिस्थिति में तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। लेकिन अब अगर आप डिस्टर्ब हो गए और आपने फिर वो यू नो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वर्ड्स बोले, फिर अब आप एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको फिर आपको रीसेटल करना पड़ेगा। तो हम लोग कई बार ये चेक करते रहते हैं कि हमें कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं या हमें कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहां हम इंटरनली स्टेबल हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, तो एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। क्योंकि सेटलमेंट, जैसे मैंने कर्जा लिया था किसी से और मैं कर्जा आज लौटा रही हूं, तो लौटाते समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट इज स्टेबिलिटी। लेकिन जहां मैं कर्जा ले रही हूं तो वो एक बोझ हो जाएगा कि मैंने एक कर्जा लिया। तो जहां स्टेबिलिटी है अंदर, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। जहां डिस्टर्बेंस है अंदर, एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है।
1: तो अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है किसी व्यक्ति के कारण, मेरी जिंदगी में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। कई बार देखा गया ऑफिस में जब हम काम कर रहे होते हैं या कहीं पे भी घर में, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो एक मेजर अनहैप्पीनेस का एक रिश्ता कई बार डेवलप होता है। बेटा और बच्चा और यू नो फादर एंड सन का बेसिकली कई बार देखा गया है, देयर इज अ मेजर टसल गोइंग ऑन। तो क्या वो अगेन इज इट अ कार्मिक,
0: इट इज अ कार्मिक अकाउंट। सो हाउ डू आई सेटल इट नाउ, क्योंकि एट अ वेरी हायर लेवल, लेकिन मेडिटेशन टीचर्स अस अ वे टू सेटल इट। कि हम जैसे जब योग में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वी आर चैनलाइजिंग आवर थॉट्स। तो तब हम उस व्यक्ति को या कहें उस आत्मा को इमर्ज करते हैं, यू नो आई इमर्ज दैट पर्सन इन माय माइंड, एवरीथिंग इज इन माय माइंड, आई इमर्ज दैट पर्सन इन माय माइंड एंड गिव वेरी पॉजिटिव थॉट्स कि नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप जो भी कुछ करेंगे आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वी डू दैट एट द एनर्जी लेवल। एंड ये अगर हम कर लेते हैं, अगर हम वर्ड्स से ये करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो ये बहुत बड़ा बैरियर बीच में आ जाता है। लेकिन हम अगर थॉट पावर पे ये कर लेते हैं, तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स में भी यू नो इट जस्ट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आप उस आत्मा तक उस एनर्जी को पहुंचा रहे हैं। वो बोल से बोल कर करने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट देकर या कुछ बाह्य चीज करके करने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज कुछ दिनों तक इसको प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज उस आत्मा को इमर्ज कीजिए और उसको ये प्योरिटी पॉजिटिविटी की एनर्जी, यू नो डेलिबरेटली मेक एन एफर्ट टू सेंड दैट एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी। कि हो सकता है हम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, लेट्स फिनिश इट नाउ, अब नहीं, अब हम और एक दूसरे को ये तकलीफ इस पेन से नहीं लेके जा सकते हैं। आई फॉरगिव यू, यू नो इफ इन केस somebody has done something to you, so very important is हम thought power से वो vibration भेजते हैं, I forgive you, आपने कुछ नहीं किया है। एंड इन अदर केसेस प्लीज फॉरगिव मी, यू नो वट एवर डिपेंडिंग ऑन द केस। ये एनर्जी लेवल पर अगर हम कर लेते हैं, थॉट लेवल पर, रिलेशनशिप्स में बहुत एक यू नो यू विल फाइंड अ डिफरेंट रिलेशनशिप, इट रियली वर्क्स। तो इसको थोड़े दिन के लिए, महीना दो महीना या जब तक वो नहीं होता है, एंड एक तो इसको मेडिटेशन के दौरान करें, और दूसरा जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, just emerge that thought all over again without saying or doing anything. Just look at the soul and say it's okay, everything is fine between internally, this is not you know superficially. Ye bahut conviction ke sath, and this is what you want, it's not superficial, you want that relationship to work, and positivity, not attachment. Attachment wala nahi work karega, it's that positive relationship with the soul. It works.
1: इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स इसी जन्म में, जहां हमें एहसास हो, हम सेटल कर सकते हैं और हम अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। प्रारब्ध को बदलने की बात जो कही जाती है, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो नहीं कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस दे रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा कहीं कोई केमिकल रिएक्शन भी है कि वाई देर आर पीपल जस्ट हम देखते ही हमें उन्हें बहुत अच्छा लगता है और कई बार टोटल अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है उसमें?
2: मोर देन केमिकल रिएक्शन मैं कहूंगा कि उनका जो ऑरा है वो आपके साथ मैच नहीं

0: आरामी से
1: जैसे वी आर नॉट इन ट्यून विथ ईच अदर, आमतौर पर हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, वो भी सत्य है। लेकिन ऑरा तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटोग्राफ लिया जाए तो डिफरेंट लेयर्स आती है, राइट लेफ्ट टॉप में। ऐसे ही दूसरा एक है जिसको कहा पीआईपी कैमेरा, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी, यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी यह कैमरा है। हमने कुछ रिसर्च भी की इसके ऊपर। उसने एक छोटी सी बात जो इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने इनोवेटिव बात सोची कि एक व्यक्ति को का हाथ ऐसे रखो और उसका पीआईपी का फोटोग्राफ लिया गया तो सारे उसके लेयर्स आ रहे थे। दूसरे को कहा तुम्हारा भी करो, उसके भी लेयर्स आए। फिर दोनों को कहा आप नजदीक लाओ ऐसे, और फिर फोटोग्राफ लिया। तो एक यूनिक चीज है सामने आई, भले एक एक्सपेरिमेंट था परंतु बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति का समझो यहाँ पर येलो रेज आ रहे थे तो जब दूसरे ने ऐसे रखा तो इसके येलो शिफ्ट हो गए
2: ओके,
1: और इसका इसके जो रेज थे वो हाँ आ गए।
2: और दूसरे तो के क्या थे मतलब
1: वो जो भी थे
2: तो उसके ऑरा ने इनके ऑरा पे
1: इफेक्ट किया। तुरंत मुझे इंटरफेरेंस हुआ कि दिस पर्सन इज मोर पावरफुल, इसका ऑरा पावरफुल है, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया तो इसका शिफ्ट हो गया। तो ऐसे हमें भी करना चाहिए, तो हम मतलब अपने ऑरा को इतना पावरफुल
0: कैन वी चेंज आवर ऑरा आल्सो,
1: वी कैन बी मेक इट पावरफुल, है ना। मेडिटेशन से चेंज होता ही है, थॉट से ही होगा। जो आत्मा की स्थिति है वो वास्तव में तो एनर्जी फील्ड है कहेंगे, कि हमारे में एक तो आत्मा है, दूसरा ये शरीर है, और जो आत्मा के वाइब्रेशन शरीर में जाते हैं वही ऑरा क्रिएट करते हैं। ये जो शरीर से बाहर भी आएंगे क्योंकि अणु अणु उस वाइब्रेशंस को बाहर ट्रांसमिट करेगा, तो वही वास्तव में ऑरा है। तो आत्मा की स्थिति अगर इम्प्रूव हो, अब ज्यादा शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, तो आपका ऑरा भी इम्प्रूव होगा। तो ये करना चाहिए,
0: आत्मा टेक ओवर कर ले जब, तो आपका ऑरा और स्ट्रांग हो जाता है।
2: नहीं नहीं, आत्मा तो है, आत्मा टेक ओवर नहीं करेगी, आत्मा ने थॉट्स की क्वालिटी को चेंज किया। जब ये किरलियन फोटोग्राफी लेते हैं तो जिन लोगों की बहुत नेगेटिव थॉट्स होती है, बहुत टॉक्सिक थॉट्स होती है, तो उनका ये पूरा एरिया वो लाइट का ग्रेश की तरफ आता है, ग्रे कलर, डार्क पर्पल, ब्लैकिश। और जिनकी बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट्स है उनका येलो, क्रीम, व्हाइट आएगा। एनर्जी लेवल तो है ही, लेकिन वो जितनी प्योरिटी की तरफ होगा वो ऑरा लाइट कलर का होगा। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के लिए, धर्म पिताओं के लिए वो व्हाइट सर्कल जो हम दिखाते हैं, दैट इज द ऑरा, प्योर सोल
0: ओज जिसे कहा जाता है। ओके, तो अगेन हमने पूरा ये जो हमारी बातचीत रही आज, इसमें कई सारे एस्पेक्ट सामने आए कि हैप्पीनेस अगेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आज हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, खुशी की बात कर रहे थे, वो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हम हमेशा के लिए भी कभी खुशी कभी गम ना करके अपने साथ रख सकते हैं, और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है। और जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हमें हुआ आज की, कहीं ना कहीं हर एक घंटे में अगर आप अपने थॉट्स को चेक कर लें खुद कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, क्या हमारे थॉट सही डायरेक्शन में हैं, सो दैट विल हेल्प। एंड अगेन, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है अगर जो कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, हम अपने कार्मिक डेब्ट्स भी आत्मा के स्तर पर पहुंच के उसके साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसमें ऑरा भी काफी मायने रखता है। आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ जाना आज हमने अपने बारे में, कुछ ऐसे एहसास जो अभी तक नहीं हुए थे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएंगे। और तब हम जब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, तो जिंदगी जो है वही मेडिटेशन बन जाएगी। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात।

0: गुणगान करता रहता था। पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मोहब्बत बुरी चीज है तो हम भी हैं शायद बुरे, मगर ये शराफत है क्या कि दिल लेके

0: जाने मन, दिल ना दुखा हो
1: जाने। जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना।

0: लगता है, जैसे ये कप है। अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 को काठियावाड़ प्रांत के मंडलीय ग्राम में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से श्यामजी के मन पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर क्रांति योजनाओं का संचालन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय क्रांति दर्शन को व्यापक रूप प्रदान करने और विश्व में उसे सम्मानीय स्थान दिलाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। प्रार्थना और याचनाओं से स्वाधीनता अर्जित न होते देख उन्होंने क्रांतिकारी हथकंडों का प्रयोग शुरू कर दिया और लंदन को भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा बना दिया। ज्वलंत भावनाओं के चेतनशील नवयुवकों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने हजारों रुपए की छात्रवृत्तियों की घोषणा की। इन्हीं छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए लाला हरदयाल और विनायक सावरकर जैसे विद्यार्थी लंदन पहुंचे थे। श्यामजी वर्मा का उद्देश्य इन नौजवानों को लंदन में क्रांति की दीक्षा देकर भारत में क्रांति का संचालन करवाना था। श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार तीव्रता से किया जाने लगा। लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इस भवन में भारतीय क्रांतिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती थी, जहां विद्यार्थियों के लिए निशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था थी। श्यामजी वर्मा ने ये साबित किया था कि भारतीय क्रांतिकारी दुश्मन के घर में सेंध लगाने का दुस्साहस कर सकते थे।
2: पगला गया है ये।
3: अगर हम पगलाए न होते तो सारा देश दुकानदारों का हो गया होता। हम देश को, अपने गांव को और बस्ती को अपना घर समझते हैं, बाजार और दुकान नहीं समझते।
2: अच्छा है? तो फिर दिवाली पर घरों की पुताई क्यों करते फिर रहे हो?
4: क्रांतिकारियों की पेंटिंग ही बनाते रहते भैया है,
2: सारी उम्र यही तो किया है।
3: अरे तुम नहीं समझोगे कल्लू, एक से दिल और दिमाग की आग शांत होती है तो दूसरे से पेट की आग।
4: हम तो यही जानते हैं हरिया, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं।
3: एक हम ही नहीं है, इस देश में लाखों दीवाने ऐसे थे जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अगर अपना अपना सोचते तो क्या भगत सिंह जैसे दीवाने फांसी के फंदे पर झूलते? क्या चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते?
5: लेकिन हरिया, अपनी इस अंबेडकर बस्ती में रहने वाले तो आज भी आजादी की रोशनी से दूर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। समाज में बराबरी तो अभी तक नहीं आई।
3: ऐसा नहीं है कल्लू, बाबा साहब ने तो हमारे समाज की ही नहीं पूरे देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी तो समाज से असमानता और छुआछूत जैसी बुराइयों को हटाने का काम भी किया। हमारा संविधान भी बाबा साहब ने बनाया। एक बात समझ लो, इस देश की आजादी में हर सिपाही की लड़ाई अलग अलग थी और लड़ने का तरीका भी अलग अलग था।
4: अब तुमसे कौन जीत सकता है हरिया, लो चाय पियो। लेकिन नाना भैया, एक बात समझ में

0: नहीं, ये हमारे राम भरोसे भैया जो हैं अपने ढाबा छोड़कर गायब कहाँ हो गए हैं आजकल।
1: क्या बताएं भैया, जब से हरिया ने उनसे कहा है कि आपको आसपास के गांवों के बच्चों को आजादी की कहानियां सुनानी है, बस तभी से परेशान हैं। शायद तैयारी में लगे हुए हैं।
0: लेकिन यूं तो आजादी के दीवानों की कहानियां उनकी पोटली में हमेशा रहती हैं, फिर अब ये तैयारी की क्या जरूरत आ गई भाई? हमें तुम्हें कितनी कहानियां सुनाई हैं उन्होंने।
1: सच पूछो तो बच्चों से डर लग रहा है उन्हें, पता नहीं बंदरों की फौज कब क्या पूछ ले।
0: अच्छा।
1: अब फिर उनके लिए वो गीत संगीत की तैयारी भी कर रहे हैं, और पता है कल्लू, बच्चों ने भी उनकी पोटली देखकर उनका नाम पोटली बाबा रख दिया है।
0: क्या कहा? पोटली बाबा। अच्छा नाम है भाई, अच्छा नाम है।

0: बच्चों, आज की कहानी सुनने से पहले ये तस्वीर देखो। ये लंदन की एक इमारत है।
1: अरे, इतनी बड़ी इमारत?
0: हाँ, और इस 3 मंजिला इमारत का नाम है इंडिया हाउस, जिसका निर्माण लंदन में सन 1904 में क्रांतिकारी विचारक श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कराया था, जो वास्तव में लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए तंत्रिका तंत्र या कहें दिमाग के रूप में कार्य करने लगे थे। ये इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का एक घर ही बन गया था।
2: वहाँ इंग्लैंड में बाबा?
0: हाँ, और इस इमारत में क्रांतिकारियों की हलचल भी शुरू हो गई थी। आज हम जिस क्रांतिकारी की कथा सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया हाउस की दीवारों में क्रांति की इबारत लिखी थी। उन्होंने ही इस इमारत को क्रांतिकारियों के लिए एक ऐसा किला बना दिया था, जहां वे सब सुरक्षित भी थे और जहां से उन्हें क्रांति की रूपरेखा तैयार करने में मदद भी मिलती थी।
1: क्या नाम था उनका बाबा?
2: अरे, अभी नाम तो बताया था बाबा ने।
0: आज हम उन्हीं क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे, और अपनी बात शुरू करने के लिए हमें लंदन से पूना चलना होगा।
2: लंदन से पूना कैसे जाएंगे बाबा?
1: बस कहानी के रास्ते पहुंच जाएंगे।
0: 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में भारत में ब्रिटिश जासूस परेशान हो रहे थे। पूना में मिस्टर रैंड और मिस्टर आयरिस की हत्या के आरोप में चाफेकर बंधुओं यानी दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर के साथ महादेव रानाडे को भी फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था, और उम्मीद थी कि अब कोई क्रांतिकारी हलचल नहीं होगी। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि भारतीय क्रांतिकारी रक्त बीज होते हैं।
1: ये रक्त बीज क्या होते हैं बाबा?
0: रक्त बीज पुराण कथाओं का एक चरित्र है। उसको जब कोई मार देता था तो उसके खून से हजारों ऐसे रक्त बीज पैदा हो जाते थे।
1: अच्छा?
0: हाँ, एक क्रांतिकारी का खून बहा तो उसे देखकर कितने ही नए क्रांतिकारी अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाफेकर बंधुओं के बलिदान को अधिक दिन नहीं हुए थे कि पूना में एक बार फिर बम का धमाका हुआ। ब्रिटिश जासूस और अफसर परेशान हो गए।
3: ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो हमने चाफेकर ब्रदर्स को फांसी पर लटकाया था। तुम सब बोला था अब सब ठीक हो गया है, तो फिर ये क्या हो रहा है? पुणे में बम कहाँ से फूटा? हमको ये आदमी मांगता है। हमारा सरकार ने पूरा हिंदुस्तान में जासूसों का जाल बिछा दिया है, और ये लोग तुमको हमको उल्लू बनाता है। जाने कहाँ से आता है, बम फोड़ता है और फेंक जाता है। ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको बताओ ये आदमी कौन है जो इन धमाकों के पीछे खेल रहा है?
4: सर, हमारे पास पक्का इन्फॉर्मेशन है कि इन सबका सरदार श्याम जी वर्मा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी योजनाएं बनाने का पक्का खिलाड़ी है वो।
3: जब तुमको उसका नाम मालूम है, उसका काम मालूम है, तो तुम उसको पकड़ते क्यों नहीं? हम भी देखेगा ये श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन है।
5: श्याम जी वर्मा कौन है? ये सवाल अंग्रेजी अफसर के दिमाग में ही नहीं कुलबुला रहा, बल्कि समूचे अंग्रेजी हुकूमत के दिलो दिमाग में गूंज रहा है कि श्याम जी वर्मा कौन है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं इस सवाल का जवाब। दरअसल मैं ही हूं श्याम जी कृष्ण वर्मा। आप कहेंगे नाम में क्या रखा है, अपने काम के बारे में बताओ। वैसे तो मेरे बारे में जानने के लिए अंग्रेजी जासूसों की फौज लगी हुई है, लेकिन वो मेरे बारे में हाल फिलहाल तो शायद ही कुछ जान पाए। लेकिन आपसे वादा किया है तो अपने अतीत के बारे में बताता हूं। पहले तो ये जान लें कि मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1857 को कठियावाड़ के मंडलीय ग्राम में हुआ था। औसत परिवार में पैदाइश के बावजूद मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ने की तरफ लगाया और संस्कृत में अपना अध्ययन इस ऊंचाई तक ले गया कि इंग्लैंड के विद्वान भी मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे थे। एक दिन आचार्य जी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा मुझे लंबे समय से थी। आचार्य जी, आपने मुझे बुलाया?
6: हाँ भाई, अब तुम्हें तो हमसे मिलने की फुर्सत मिलती नहीं, सो हमने ही तुम्हें बुला भेजा। इसके बाद तो ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि शायद तुम हमारे बुलाने पर भी ना आ पाओ।
5: मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है आचार्य जी, किंतु आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है?
6: नहीं नहीं, इसमें भूल की कोई बात नहीं है श्याम, बल्कि ये तो गौरव का विषय है। आज संस्कृत में तुम्हारे ज्ञान और अधिकार के कारण इंग्लैंड के विद्वान भी तुम्हें प्रकांड विद्वान मानने लगे हैं, और आज ही मुझे ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान मोनियर विलियम्स का ये पत्र मिला है। लो, तुम स्वयं ही पढ़ लो।
5: मोनियर विलियम्स का पत्र? अरे, ये तो मेरा सौभाग्य है।
6: वो चाहते हैं श्याम कि तुम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करो, और देखो यदि ऐसा हुआ तो ऐसा करने वाले तुम पहले भारतीय होगे।
5: हाँ आचार्य जी, जी हाँ। गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की और बैरिस्ट्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सन 1885 में जब मैं शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटा तो कई भारतीय रियासतों ने मुझे अपने यहां बुलाना चाहा, लेकिन मैंने चुनाव रतलाम रियासत का किया। 2 साल तक मैं वहां दीवान के पद पर काम करता रहा। इस बीच रतलाम रियासत की उन्नति से प्रभावित होकर उदयपुर के शासक फतेह सिंह जी ने मुझे राज्य मंत्री का ओहदा सौंपा, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर मेरा मन क्रोध और विरोध से भर गया।

0: मैंने नौकरी छोड़कर क्रांति की मशाल थामने का संकल्प किया और इसी का नतीजा है कि आज अंग्रेजी हुकूमत और उनके जासूस मेरी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं।
1: हमने तुमको यहाँ किस लिए नौकरी पर रखा है? आई वॉन्ट एक्शन। तुमको जो कुछ करना है जल्दी करो, उसको पकड़कर हमारे सामने लाओ।
2: लेकिन अंग्रेज जासूस हरकत में आते उससे पहले ही श्यामजी वर्मा भारत से लंदन जा पहुंचे थे। दुश्मनों के घर में सेन लगाने के काम में ये भारतीय क्रांतिकारी माहिर था। भारत में होने वाले विस्फोटों से श्यामजी कृष्ण वर्मा का गहरा संबंध था। भारतीय क्रांति का ये योद्धा वैचारिक लड़ाई लड़ने में भी माहिर था। लंदन में बैठकर श्यामजी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक अंग्रेजी पत्रिका निकालना शुरू की और भारतीय क्रांति के दर्शन को सारी दुनिया के सामने रखा।
3: साथियों, प्रार्थनाओं और जाचनाओं का असर हमने ब्रिटिश हुकूमत पर देख लिया। ये लोग इस तरह हमारी बात मानने वाले नहीं है, इसलिए क्रांतिकारियों का रास्ता ही अब हमारे लिए बचा है। साथियों, ऐसा लगता है कि भारत में कोई भी आंदोलन केवल गोपनीय तरीके से ही चल सकता है।
2: इस पत्रिका की प्रतियां धड़ल्ले से बिकने लगी और इससे श्यामजी वर्मा के प्रयासों को एक बड़ा संबल मिला और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से ही भारतीय क्रांति के संचालन का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। सन 1907 में उन्होंने अपनी पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में लिखा,
3: भारत में अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए रूसी क्रांतिकारियों की पद्धति ही उपयोगी हो सकती है। अंग्रेजों के अत्याचारों को खत्म करके उनके बोरिया बिस्तर बंधवाने का काम रूसी क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि यहां लंदन में रहकर अभी भारतीय युवक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें ज्वलंत भावनाओं के चेतनाशील नवयुवक चाहिए जो लंदन में क्रांति की दीक्षा लेकर भारत में सफल क्रांति का संचालन कर सकें। और ऐसे नवयुवकों को जोड़ने के लिए हम लोग कुछ छात्रवृत्तियां घोषित करेंगे। ये छात्रवृत्तियां ऐसे युवकों को दी जाएंगी जो यहां लंदन में हमारे आंदोलन से वैचारिक और व्यावहारिक रूप से जुड़ सकेंगे। लेकिन एक शर्त रहेगी कि छात्रवृत्ति लेने वाली युवक कभी भी ब्रिटिश सरकार में नौकरी नहीं करेंगे। ये वायदा उन्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस तरह कई ऊर्जावान नवयुवक हमारे साथ आएंगे।
2: और वास्तव में हुआ भी यही। इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए कई नवयुवक इस आंदोलन से जुड़े। इनमें वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, सेनापति पांडुरंग, महादेव बापट जैसे क्रांतिकारी भी श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे।
4: गुरुजी, आपको बहुत बहुत बधाई, आखिर आपके सपने साकार होने लगे।
5: आओ बापट आओ। क्या बात है बापट, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, लगता है कोई अच्छी खबर लाए हो।
4: आप ही ने कहा था ना गुरुजी, यहाँ लंदन में रहकर भारतीय युवक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं।
5: हाँ भाई, कहा तो था और इसीलिए तो हमने कई स्कॉलरशिप भी घोषित की थी।
4: गुरुजी, अब हमारी योजना रंग ला रही है।
5: अच्छा,
4: आपके इस आंदोलन से कई नौजवान जुड़ रहे हैं जिनमें देश की आजादी का जज्बा भी मौजूद है, और ये लोग किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, सब एक से बढ़कर एक हैं।
5: और तुम अपना नाम कैसे भूल गए महादेव बापट?
4: भूला नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन अपने मुंह से अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना।
5: अच्छा चलो।

0: मुद्दे की बात पर आ जाओ, क्या खबर लाए हो?
1: गुरुजी, आपको हरदयाल का नाम याद है?
0: हरदयाल? हाँ हाँ, अरे अच्छी तरह से याद है बापट, बहुत अच्छी तरह से याद है। सिर्फ नाम ही नहीं, उसका चेहरा भी आज तक मेरी आंखों के सामने से कोंता रहता है। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हरदयाल कोई मामूली नौजवान नहीं है। अरे उसकी आंखों में चमक है, और उसकी चमक बताती है वो आज भी अपने देश पर मर मिटने को तैयार है। काश ये युवक हमारे साथ होता, लेकिन उसे तो ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप मिली है ना?
1: असली खुशखबर तो मैं लेकर आया हूँ गुरुजी।
0: अच्छा बोलो क्या बात है?
1: हरदयाल ने ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप ठुकरा कर अपनी छात्रवृत्ति मंजूर कर ली है।
0: क्या कह रहे हो बापट, तुम सचमुच आज मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर लाए हो। हरदयाल का हमारी टीम में आना निश्चय ही एक शुभ लक्षण है।
1: अब इस बात पर तो गुरुजी मिठाई होनी चाहिए।
0: मिठाई? अरे मिठाई तो अभी कहाँ मिलेगी बापट।
1: मुझे मालूम है गुरुजी, आपकी रसोई में बेसन के लड्डू हमेशा रखे रहते हैं।
0: अरे तुम्हारी वीरता और चतुराई से तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन इस जासूसी का मुझे जरा भी पता नहीं था।
1: अब आप ही कहा करते थे ना, एक क्रांतिकारी को हमेशा सजग, सचेत और जानकारियों से भरा पूरा होना चाहिए।
0: हाँ तो ये है तुम्हारी जानकारी बेसन के लड्डुओं के बारे में, है ना? अरे मान गए बापट, मान गए। अब जाओ और रसोई की अलमारी में रखा है लड्डुओं का डिब्बा,
1: अरे वाह,
0: ले आओ उसे। अरे वैसे भी हरदयाल के आने की खुशी में आज इंडिया हाउस में मिठाई तो बांटी ही जाएगी ना,
1: जी,
0: है ना बापट? चलो जाओ लेके आओ।
1: अरे अभी लाया मैं।
2: उधर श्याम जी जाने माने विचारक स्पेंसर के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। स्पेंसर का एक वाक्य उन्होंने अपने जीवन में गुरु मंत्र की तरह अपना लिया था।
3: साथियों, आक्रामकता का विरोध और प्रतिरोध करना न सिर्फ न्यायोचित है बल्कि अनिवार्य भी है। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन मैंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है। मैं चाहता हूँ हमारे आंदोलनकारी साथी भी इस मंत्र को अपनाए और हर आक्रमण का विरोध करने के लिए अपने को तैयार कर ले।

0: सन 1904 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय क्रांतिकारियों को लंदन में ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडिया हाउस नाम का तिमंजिला भवन बनवाया। ये एक प्रकार का छात्रावास था, जहां भारतीय विद्यार्थी निशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था पाकर क्रांति के प्रचार का काम करते थे। एक दिन इंडिया हाउस में युवा क्रांतिकारियों के साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा गोपनीय बैठक में चर्चा कर रहे थे।
1: युवा क्रांतिकारियों, ये दोहराने की बात नहीं है कि अपने देश से दूर यहाँ लंदन में बैठकर हम सब इंडिया हाउस की

0: छत तले केवल एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वो मकसद है भारत की आजादी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के प्रकाशन और उसकी सफलता के बाद हमने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी कर दी है। इसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार जिस तेजी से किया जा रहा है, उसमें आप सबका योगदान निश्चय ही सराहनीय है। लेकिन साथियों, हम लोगों का काम जिस तरह प्रभावशाली और सफल होता जा रहा है, उसे देखते हुए अब हमारा काम उतना ही मुश्किल भी होने लगा है। यहां भी ब्रिटिश जासूसों की नजर हमारे कामों और ठिकानों पर पड़ गई है।
1: ये क्या कह रहे हैं सर? क्यों ये?
2: कुछ समझ में नहीं आता क्या सचमुच?
0: हाँ साथियों, ब्रिटिश जासूसों की नजर हमारे हर ठिकाने पर पड़ गई है।
3: इससे पहले कि श्याम जी ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में आते, सन 1910 में वे लंदन छोड़कर फ्रांस में पेरिस पहुंच गए और वहां से क्रांति का संचालन शुरू कर दिया। पेरिस में श्याम जी के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रवासी भारतीय सरदार सिंह राणा ने भी दो छात्रवृत्तियां घोषित कर दी और अब भारतीय क्रांतिकारी बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस तक पहुंचने लगे। हेमेंद्र दास और उल्लास दत्त, दो बंगाली युवक, बम बनाना सीखने के लिए सबसे पहले पेरिस पहुंचे थे। इन सबके साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा का घनिष्ठ संबंध रहा।

0: संकटों की कल्पना के
1: श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत से हजारों मील दूर रहकर भी यूरोप से स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया और देश की आजादी के सपने को जिंदा रखा। पहले विश्व युद्ध के शुरू होने पर श्याम जी कृष्ण वर्मा को फ्रांस से स्विट्जरलैंड के जिनीवा में जाकर बसना पड़ा। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में 4 अक्टूबर 1857 को पैदा हुए इस क्रांतिकारी ने जिनीवा में रहकर भी एक क्रांतिकारी गुरु की भूमिका निभाई। 31 मार्च 1930 को जिनीवा में उनका निधन हो गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह को कारगर हथियार के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1905 में उन्होंने कहा था,
2: अगर भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह को अपना लें, तो एक हफ्ते में ही उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा। अगर हम उनका सामान खरीदना बंद कर दें और हर वर्ग में उनसे लेन देन पर रोक लगा दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गुनाह होगा। इस तरह इन गोरों की मदद न करके भी हम उन्हें बेहद परेशान कर सकते हैं।
1: उधर इंडिया हाउस से जुड़कर क्रांतिकारियों ने भारत में स्वाधीनता संग्राम को चलाते हुए किस तरह धमाके किए, इन सब के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। क्यों बच्चों?
3: हाँ, ठीक है बोलिए बाबा, ठीक है।
4: निर्देशन वीर बाला श्रोत्रिय, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सिस्टर शिवानी इज विद अस, आपका स्वागत है बीइंग दिस में।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति सिस्टर। मैं एक लाइन शेयर करना चाहूंगा, लाइन बड़ी सुंदर है, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू आउटसाइड इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ केपेबिलिटी, बट व्हेन इट कम्स टू द इनसाइड इट इज जस्ट अ क्वेश्चन of willingness.
1: So sweet. This is so beautiful.
0: Willingness वाली बात last episode भी मैं आपसे पूछी थी, मैंने कि मन मेरे को कैसे मैं करूँ, will कैसे आए, willingness ही नहीं आती।
1: willingness जैसे walk करनी है morning, तो एक दिन करते हैं, फिर कहते नहीं कोई बात नहीं, फिर दो दिन करते हैं, फिर जैसे ही उसको करने लग जाते हैं और उसके रिजल्ट दिखाई देती है, फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। फिर अगर एक दिन नहीं करते हैं तो कहते हैं आज समथिंग इज मिसिंग, आई डिडंट गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। बट दिस लाइन, सी द डीपर मीनिंग ऑफ इट, वॉट वी कैन डू और कैन नॉट डू आउटसाइड इज अ क्वेश्चन ऑफ केपेबिलिटी, बट वॉट वी कैन डू इनसाइड इज ओनली अबाउट विलिंगनेस। मतलब इनसाइड के लिए केपेबिलिटी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसाइड का काम करने के लिए हर एक उतना ही इक्वली केपेबल है, उसमें केपेबिलिटी नहीं चाहिए। केपेबिलिटी हर एक के पास है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा की वो ओरिजिनल क्वालिटी, लेट से एक्टिंग स्किल, ये आपकी केपेबिलिटी है। ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास इंटेलिजेंस कम, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कोई स्किल कम, किसी के पास ज्यादा, लेकिन अंदर की जो चीज है ये द इनर वर्क, ये कैपेबिलिटी हर एक के पास इक्वल है। अब इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस, मतलब करने, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली क्या है,
0: लेकिन एक आत्मा वीक है, एक आत्मा स्ट्रांग है,
1: लेकिन हर आत्मा ओरिजिनली पावरफुल है। सी इट्स लाइक दिस, सपोज आपकी ड्रेस एक लाइट ब्राउन कलर है, मेरी व्हाइट है, तो फिर आप कितना भी ट्राई करें, आप कितना भी स्क्रब करें उसको, आप उसको व्हाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि अंदर की कैपेबिलिटी सबकी सेम है, विच मीन्स हर एक की ड्रेस व्हाइट है, हर एक की व्हाइट है। अब कितने भी दाग अलग अलग लगे हो, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल कैपेबिलिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी हर एक की सेम है, सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस ना कि कितना स्क्रब करना है। लेकिन जैसे एक्टिंग का टैलेंट आपके अंदर है, अगर मेरे अंदर विलिंगनेस भी हो, विलिंगनेस भी है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो कितना भी कर लो
0: टैलेंट ही नहीं है।
1: नहीं है, ये चीज है जो आउटर टैलेंट स्किल्स है, इसमें कैपेबिलिटी चाहिए।
0: जैसे गाना गाना है,
1: अब मैं कितना, मैं सपोज आई क्रिएट अ वेरी पावरफुल थॉट कि मुझे सुंदर गीत गाना है, विलिंगनेस भी है, मैं उसके लिए 24 आवर्स अटेंशन रख के दिन में 12-12 घंटे रियाज करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन वो मास्टर क्या कहेगा? कहेगा नहीं है ये आपके पास, डोंट स्पेंड एनी मोर टाइम एनर्जी ऑन दिस, क्योंकि ये चीज आपके पास,
0: ये भी तो दिखा सकता ना मास्टर आपको कि ये चीज नहीं है तो आपका ये है,
1: दैट्स ओके,
0: इसको फीड कीजिए।
1: हाँ, मतलब कैपेबिलिटी अलग अलग है, कम और ज्यादा, लेकिन अंदर की स्थिति के लिए अलग अलग नहीं है।
0: रियली?
1: यस।
0: मैं समझ रहा था गुरुओं के पास, संतों के पास ज्यादा है, गिरवे कपड़े वालों के पास ज्यादा है, जो मेडिटेशन बड़े गांव।
1: अपने साथ ही कंपेयर कर लो, पहले ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया, तो यू मूव्ड टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेंट। नो, दिस इज इट। सेंट मीन्स कौन? जिसने अपनी स्क्रबिंग करने शुरू कर दिए। आप अपने आप को ही देख लीजिए कि कल अवेयरनेस नहीं थी तो एक अलग लेवल पर थे, आज है चेंज आया तो एक अलग लेवल पर है। सो यू आर कमिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेंट, दिस इज इट। हो गया, मतलब स्क्रबिंग होनी शुरू हो गई है। व्हाट वाज रिक्वायर्ड? विलिंगनेस, ओनली विलिंगनेस कि मुझे, दैट्स व्हाई वी हैड सेड द वांट टू चेंज। Why to change, how to change, बहुत easy है। The want to change अगर है तो it's going to happen। तो willingness, और अब willingness हमारे अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने खुश रहने के लिए सारे तरीके try कर लिए हैं, सब कुछ खरीद लिया है, लोगों से मांग लिया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो आए, संतों से मिल लिए, foreign trips पे हो आए, सब कुछ तो हमने कर लिया, कुछ बचा नहीं है अभी।

0: कहाँ खुशी ढूंढेंगे, कहाँ शांति ढूंढेंगे?
1: एक प्रॉब्लम बचा है सिस्टर, कि जब तक पुराना स्वभाव था तब तक सब डरते थे, चुप रहते थे, लेकिन जैसे सब देखते हैं कि मैं आजकल ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, आपके एपिसोड्स करता हूँ, ये प्रोग्राम करता हूँ, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और बड़ी चुपती है बात कि जो मैं 5% भी इम्प्रूव कर रहा हूँ वो नहीं देखते हैं। लोग बोलते देखे अभी तक वही का वही है, उनको तो 95 दिख रहा है, देखा अभी तक वही है, तो कभी मन करता क्यों करूं फिर, मैं छोड़ो ना, वापस चलो उधर।
0: अपने लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, मेरे अंदर कितना चेंज आ रहा है ये बाहर बाद में दिखाई देगा, पहले मेरे अंदर दिखाई देगा। पहले भी अगर आप चलो गुस्सा करते थे वो तो अलग बात, अगर बहुत मीठा बोलते थे, हमेशा प्यार से बात करते थे, लेकिन आपकी सोच कैसी थी वो किसी को नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ आपको ही पता है। लेकिन आज आपकी सोच में कितनी क्लीनलीनेस आ रही है, कितनी सफाई आ रही है, कितनी सोच पहले जो थी उससे थोड़ी सी ऊपर उठ रही है। पहले किसी की बात को पकड़ के रखना, अब उसी बात को इजिली लेट गो कर देना। दूसरे को क्यों 95 दिख रहा है, जैसे आपने कहा विशेषता का चश्मा पहनना, वो अभी तो हमने पहना नहीं है ना सबने, हम सबको सारा दिन क्या दिखाई देता है, कमजोरियां। तो अगर आपने 95% पुराना है संस्कार, 5% चेंज है, लेकिन मेरी दृष्टि अगर 95 पर ही जानी है तो जब आपका 5% कमजोरी रह जाएगी और 95% अच्छे पे चला जाएगा तो भी मेरी दृष्टि वो 5% पे जानी है, क्योंकि वो मेरी दृष्टि की प्रॉब्लम है, वो मेरा क्रिटिकल एटीट्यूड है, वो मेरा पुराना लेबल है जो मैंने आप पर लगाया है और आपको उसी के थ्रू देखना है। वो मैं देखती रहूंगी जब तक 1% भी बचेगा। लीव दैट टू बी माई प्रॉब्लम, दैट्स माई हीलिंग दैट हैज टू हैपन। आपका फोकस सारा किस पर होना है, अपनी हीलिंग पर, अपनी परसेंटेज देखते रहे कि 5 था, आज 6 हुआ, आज 7 हुआ, ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। तो इसकी अटेंशन हमें रोज रखनी है, जैसे आपने कहा कि रोज की प्रेपरेशन जो हम करते हैं। ब्रह्मा मरीज में हम इसको चार सब्जेक्ट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं कि चार सब्जेक्ट्स हमें रोज ध्यान रखना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
1: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा।
0: ज्ञान मतलब डेली स्टडी, रोज जैसे हमने देखा पहले कि सवेरे उठकर वो दुनिया की बातें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, न्यूज, टेलीविजन, ये बाद में, सुबह सुबह ज्ञान का सब्जेक्ट। ज्ञान का सब्जेक्ट मीन्स 15-20 मिनट, आधा घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, ये नॉलेज को ग्रहण करना, पढ़ना, सुनना। अगर आप सेंटर पर आते हैं तो हर शहर में आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, इनफैक्ट हर एरिया में है, विद इन 5 किलोमीटर्स देयर विल बी अ सेंटर। आज सारे विश्व में 133 कंट्रीज में 8,500 सेंटर्स हैं। तो क्यों इतने सेंटर्स की जरूरत है, एक जगह से भी तो सब कुछ हो सकता था, एक बार पता चल गया अब अपने आप करो, नहीं, सेंटर चाहिए, हर एरिया में सेंटर चाहिए।
1: 8,500 सेंटर,
0: हाँ जी, ताकि क्या करेंगे, हर रोज जो सारे उस एरिया में है वो उधर सेंटर पर आकर रोज सुबह वो ग्रहण करेंगे, डेली स्टडी, ताकि दैट विल बिकम द फाउंडेशन फॉर द डे। जब तक नॉलेज ही नहीं तब तक तो चेंज आएगा ही नहीं। हाउ टू चेंज, द नॉलेज इज नीडेड, इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स। तो फर्स्ट चीज जो प्रोवाइड की जाएगी वो है ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरी चीज है मेडिटेशन। कई भाई बहने कहेंगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, होता नहीं है मेडिटेशन, फर्स्ट स्टेज नहीं होती है, फर्स्ट स्टेज ज्ञान होता है, सेकेंड स्टेज मेडिटेशन होती है। इट्स लाइक शरीर कमजोर है तो फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइज नहीं होती है।
1: अच्छा,
0: कमजोर है, उठा भी नहीं जा रहा हूं, मैं सोचू मैं आज जॉगिंग करूं, होने नहीं वाला है।
1: एक्सरसाइज के काबिल बनाओ बॉडी,
0: एक्सरसाइज के काबिल के लिए पहले डाइट लेंगे ना। इतना कमजोर है तो पहले उसको ताकत देकर थोड़ा सा तो इस लेवल पर लाएंगे कि चल तो सके, फिर एक्सरसाइज करना बाद में। तो इसी तरह फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान है कि मन के अंदर इतनी अनक्लीन थॉट्स हैं, इतना कुछ भरा हुआ है, पहले कोई श्रेष्ठ चीज भरें तो सही। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान लेना चाहिए।

0: तब तक मेडिटेशन होगा नहीं, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स श्रेष्ठ चिंतन, बहुत अच्छी थॉट क्रिएट करके उसके उस थॉट के अनुभव में जाना। लेकिन वो तो तब होगा जब अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले भरेंगे, तो पहले ज्ञान, सेकंड मेडिटेशन, तो वो भी हम सेंटर पे करते हैं जाकर। एंड मेडिटेशन मीन्स अपने को पहचानना कि मैं आत्मा हूँ, ये सारा दिन अवेयरनेस, मैं आत्मा हूँ, प्योर, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, आई एम अ ब्लिसफुल बींग, बींग द बींग इज ब्लिस। अब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, वो कैसा है, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव। एंड मेडिटेशन मीन्स मुझ आत्मा का उस पिता के साथ एक कनेक्शन, जिससे मुझे उसकी पावर, उसका ज्ञान, ये सारा कुछ मुझ आत्मा के अंदर भरता जाए। तो ये सेकेंड स्टेप। अब ये मेडिटेशन करने से क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज ली ज्ञान, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की ताकत, सी इट्स लाइक डाइट ली, भोजन खाया लेकिन हिले ही नहीं,
1: हजम कैसे होगा,
0: डाइजेस्ट कैसे होगा। आज हम टीवी ऑन करें तो हम प्रवचन पे प्रवचन पे प्रवचन सुन रहे हैं, किताब उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा बुक्स जो आज बिक रहे हैं मार्केट में, दे आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, gone are the days where it's fiction and all, it's self improvement books, self help books, kyunki log apne upar kaam karna chahte hain, taiyar hain, to wo sabse zyada material aaj hai, workshops hai, satsang hai, training hai, lekin ye gyan hai, bhojan hai, ab isko second stage par lekar jana hai ki padha suna, lekin digest means us par manan, chintan, churning, to ye second मेडिटेशन। तो ज्ञान, ज्ञान के साथ ताकत। अब आई सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, थर्ड, धारणा, क्योंकि ये फर्स्ट टू भी बहुत सारे कर रहे हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी रोज कर रहे हैं, लेकिन वहां तक उसको रख के थर्ड जीवन में सारा दिन अपना ओल्ड नॉर्मल के डेफिनेशन से चल रहे हैं, तो धारणा में नहीं आया। धारणा मतलब जो लिया अब उसको धारण करना, implementation of the knowledge। हमने क्या सोचा, मैंने meditation कर लिया ना सुबह उठकर, जैसे आपने कहा मैंने meditation कर लिया ना, तो अब सब कुछ अपने आप होना चाहिए। The change has to come on its own। I went for a 10-day meditation retreat, now rest everything will happen on its own। I went on a 10-day meditation retreat, I did a 10-minute meditation in the morning, वो सब मैंने किया शक्ति क्रिएट करने के लिए किया। अभी वो मेरा संस्कार नहीं बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजयोग मेडिटेशन जो हम करते हैं, इट्स नॉट फॉर फीलिंग नाइस कि 10 मिनट अच्छा लगे, इट इज फॉर चेंजिंग संस्कार्स। संस्कार कब बदलेगा, जब तक वो कर्म में नहीं आएगा तब तक संस्कार नहीं बनेगा। हमें संस्कार चेंज करना है। लेट्स से आई एम अ पीसफुल सोल, ये सुबह इन्फॉर्मेशन ली, आई एम अ पीसफुल सोल, मेडिटेशन भी किया, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, दोनों चीजें अच्छी हो गई, बहुत अच्छी तरह से हो गई। लेकिन अभी ये इधर है, थॉट लेवल पर है, अभी संस्कार कौन सा है, अभी भी गुस्से का, वो तो संस्कार बना हुआ है। वो संस्कार कैसे बना, बहुत बार गुस्सा करके बना,
1: उसकी भी प्रैक्टिस की गई ना, मतलब
0: लेकिन करके, अगर गुस्सा यहाँ होता ना सिर्फ, तो अभी वो इतना स्ट्रांग संस्कार न बनता। इट इज बीइंग, डूइंग, बिकमिंग,
1: उसका इस्तेमाल किया गया बार बार।
0: बिकमिंग, सी बिकमिंग कब बनेगा, बीइंग, डूइंग, देन बिकमिंग। आई एम अ पीसफुल सोल, आई क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ बीइंग, बट जब तक आई ब्रिंग इट टू डूइंग, इट विल नॉट बी अ बिकमिंग।
1: बिकमिंग,
0: गुस्सा क्या किया, मन में गुस्सा आया, फिर उसको बाहर कर्म में लाया, फिर संस्कार बना। अब आई एम अ पीसफुल सोल, अब उसको कर्म में लाना है। कर्म में आएगा, बार बार आएगा, तो वो बन जाएगा मेरा संस्कार। सो इट्स धारणा। जो आज सब अवेयर हो रहे हैं कि मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स, मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट हाफ एन आवर, स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स
1: 24 घंटे,
0: वो चीज कर्म में आनी चाहिए। जब तक कर्म में नहीं आएगी, परिवर्तन नहीं आएगा।

0: तो अब ये करना है कि सुबह जो लिया, जिस पर चिंतन किया, अब उसको अटेंशन रखना है सारा दिन. जो आपने कहा ना टेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन. अटेंशन और टेंशन में फर्क. अटेंशन मीन्स मुझे ये करना है. टेंशन मीन्स हाय मुझे करना है, हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं, ये टेंशन.
1: कब तक मेहनत करूँ, कब तक कोशिश करूँ,
0: ये टेंशन.
1: मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ,
0: ये टेंशन. टेंशन मीन्स अनप्लेजेंट थॉट्स. अटेंशन मुझे करना है.
1: मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, मैंने कहा गुरु जी शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए. बार बार सुन के उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तू शांति मांगता है, शांति के कर्म भी करता है क्या?
0: Absolutely.
1: तो तब समझ में नहीं आई थी. आज आपने इतना सुंदर तरीके से क्लियर कर दिया पॉइंट कि जब मुझे संस्कार बदलना है तो मुझे पहले उस हिसाब से चलना भी है,
0: कर्म में लाना है.
1: डूइंग के बाद
0: बिकमिंग.
1: बिकमिंग बहुत सुंदर है लाइन.
0: सिर्फ आस्किंग से नहीं बिकमिंग होगा.
1: इतना क्लियर हुआ आज मैं. थैंक यू सो मच.
0: आई वॉन्ट पीस नहीं. जब तक वो डूइंग, क्योंकि वो यहाँ से नहीं संस्कार बनेगा. संस्कार अगर ऐसे बन जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी. संस्कार ऐसे बनता ही नहीं है. संस्कार बनेगा थॉट, कर्म, संस्कार. थॉट, कर्म, संस्कार. द साइकिल इज ओनली लाइक दिस.
1: एक लाइन जैसे शूटिंग में मुझे कभी कभी नहीं आती थी या रेडियो पे, तो उसको 100 बार पढ़ता हजार बार भी पढ़ा हुआ.
0: लेकिन आज
1: तो ऐसे 2 मिनट में कर लेता हूं.
0: क्योंकि वो बन गया संस्कार.
1: ओह नाइस.
0: वो बन गया संस्कार.
1: कब होगा पता नहीं अब मेरा.
0: नहीं सी रॉन्ग थॉट. ये रॉन्ग थॉट. यू हैव टू से जैसे मैंने वो संस्कार क्रिएट किया, मैंने ये संस्कार भी कर लेना है. बिकॉज इट नाउ आई नो हाउ टू क्रिएट अ संस्कार.
1: इसमें कोई एज की बात नहीं है, तब तो मैं जवान था या अब ऐसा.
0: आत्मा इट सर. दैट्स व्हाई इट सेज कैपेबिलिटी आउटसाइड. आउटसाइड चीजें बदलती है ना. एज बदलती है, सिचुएशंस बदलती है. इनर वर्क ओनली विलिंगनेस. उसमें कैपेबिलिटी की कोई बात नहीं.
1: 70-80 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: हम बहुत साल पुराने हैं. आत्मा तो इटर्नल है, कब से चल रहे हैं. एज मैटर नहीं करेगी. विलिंगनेस टू डू इट. तो धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है. एंड द फैक्ट दैट यू नो सम पीपल विल आस्क इज इट ट्रू दैट आई एम अ पीसफुल सोल. इफ इट वॉज नॉट ट्रू यू वुडंट बी एबल टू डू इट सो इजिली.
1: नहीं फिर मांगता भी क्यों मैं बार बार.
0: नहीं पर आप कर भी ना पाते. मांगता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए. बट मैं हूं ही ओरिजिनली वो. इसका प्रूफ इस बात में है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया, जिस क्षण आपने डिसाइड किया, आपने उसको कर लिया. क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करें कि मेरे को आज एक्टर बनना है, तो जिस क्षण डिसाइड करें उस क्षण नहीं बन पाते हैं.
1: अभी मैं गाना गाने जाऊं
0: तो नहीं कर सकते.
1: लाइन भी नहीं आई.
0: क्योंकि वो स्किल है नहीं. वो स्किल को डिवेलप करना है. लेकिन पीसफुल क्वालिटी को डिवेलप नहीं करना है. कहीं से लेके नहीं आना. वो ऑलरेडी है. विलिंगनेस टू यूज इट. जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया, वो इतनी इजिली कर्म में आया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर था. अगर किसी के अंदर शांति का संस्कार नहीं है और वो सोचे आज मैं पीसफुल रहूंगा, दे नॉट बी एबल टू डू इट. बिकॉज वो है ही नहीं उनके पास. बिकॉज इट्स देयर. हम जब सोचते हैं और अटेंशन रखते हैं, वो हो जाता है.
1: तो हम सबके पास
0: एवरी सोल हैज दोज ओरिजिनल क्वालिटीज. तो ज्ञान लिया, योग, मेडिटेशन, पावर, तीसरा धारणा. धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है. क्योंकि नहीं तो कई सालों से ज्ञान, 20 साल, 30 साल, 40 साल से मेडिटेशन, संस्कार में चेंज नहीं आ रहा. क्योंकि धारणा, पूरा दिन में अटेंशन नहीं रखा. दिस हैज टू कम इन टू माई लाइफ स्टाइल. माई थॉट हैज टू बिकम माई लाइफ. इट्स माई लाइफ स्टाइल, द वे आई लिव. दिस इज हैज टू बी. स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी द वे आई लिव, नॉट द वे आई थिंक.
1: Beautiful.
0: It's not the way I think, it's the way I live. And life mein kya aana chahiye? What I think. The start thinking pe hoga, lekin it will be spiritual. You will be a spiritual person when you live that way. Aapke jeevan mein, karam mein wo dikhai de.
1: Live and think.
0: Think and live. Think and then bring it out. And jab ye teen cheeze hoti hain, to chauthi bahut easy ho jati hai. And that is seva. Seva means jo mujhe mila, जो मैंने अपने अंदर धारण किया, अब मुझे वो सबके साथ शेयर करना है. ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि शेयरिंग. शेयरिंग करने से क्या होगा,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म।

0: उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है आत्मा रूपी दी जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। दीपावली से कुछ दिन पहले ही लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करा लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि श्री लक्ष्मी के आह्वान के लिए स्वच्छता और पवित्रता जरूरी है। वे घर के कचड़े को झाड़ू से तथा कमरे के कोनों में लगे झाड़ू को भी हटा देते हैं, परंतु हम देखते हैं कि मात्र इस प्रकार की स्वच्छता से तो लक्ष्मी जी भारत भूमि पर आई ही नहीं। तभी तो आज हमारा देश दिनों दिन आर्थिक दृष्टिकोण से तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस देश में काम वासना के कारण जनसंख्या में अति तीव्र वृद्धि हो रही हो, रिश्वत और चोर बाजारी के कारण सारा आर्थिक ढांचा ही बिगड़ गया हो, और मिलावट तथा बनावट का दौर, महारी श्री लक्ष्मी के पधारने के लिए न केवल बाह्य स्वच्छता की आवश्यकता है, बल्कि ज्ञान द्वारा मन मंदिर में

परंतु वे नहीं जानते कि अंधकार से अभिप्राय जो है रात्रि का अंधकार नहीं, न उजाले का अभिप्राय है, दीपक का उजाला है, बल्कि अंधकार शब्द जो है अज्ञानता तथा उजाला शब्द ज्ञान प्रकाश का वाचक है। भाव यह है कि जब तक घर घर में हर नर नारी का आत्मा रूपी दीप नहीं जगता, उनकी बुद्धि में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता, उनके मन से तमोगुण मिटकर सतोगुण स्थापित नहीं होता, तब तक श्री लक्ष्मी नहीं पधार सकती, क्योंकि देवी और देवता का अंधकार में वास नहीं होता। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मौजूद छू, फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आत्मरूपी दीप जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। देखते हैं सर्वत्र सुख का जो राज्य है वो दीपावली के दिन लोग श्री लक्ष्मी और नारायण का पूजन करते हैं। वे बड़े चाव से श्री लक्ष्मी का स्थला पर आह्वान करते हैं, परंतु जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो इस धरा पर तभी पधारते हैं जब यहाँ पूर्ण रूपेण पवित्रता हो और हर नर नारी की दृष्टि तथा वृत्ति सात्विक हो। वे तो सतयुग ही में समस्त भूमंडल पर अटल अखंड निर्विघ्न तथा अति सुखकारी राज्य करते हैं। तब न कोई शत्रु होता है, न कोई लड़ाई, न दुर्भिक्ष न होता है और न ही दरिद्रता, न अकाल मृत्यु और न ही आपदाएं मनुष्य को पीड़ित करती है, बल्कि सर्वत्र सुख स्वास्थ्य और शांति का ही साम्राज्य होता है। सतयुग में दिव्यता कैसे आती है? सोचने की बात है कि कलयुग में तो संसार में कलह, क्लेश, कटुता, कर्म में भ्रष्टता और आलिमा ही होती है। तब सतयुग में इसकी विपरीत दिव्यता और सात्विकता कैसे आ जाती है? इस प्रश्न के उत्तर को समझने से मनुष्य अपने कल्याणार्थ जो है वो भी सही पुरुषार्थ कर सकता है। वास्तविकता यह है कि कलयुग के अंत में जब अज्ञान का अंधकार छाया होता है, तब सदा जागती ज्योति परमात्मा अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा की ज्योति जगाते हैं और उन द्वारा अन्य मनुष्य आत्माओं को भी प्रकाशित करते हैं। उसके फलस्वरूप ही भारत में फिर से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। अतः दीपावली जो है वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग का ही स्मरणोत्सव है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिषमा फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है आत्मा रूपी दीप जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। एक होता है शुभ कर्मों का खाता। दीपावली के अवसर पर लोग अपने हिसाब किताब के पुराने बही खाते बंद करते हैं। जो नया बही खाता खोलते हैं वो अभी वास्तव में संगम युग की याद दिलाता है, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, जब परम पिता परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान दिया तो उन्होंने अपने पुराने कर्मों और संस्कारों का लिखा जोखा समाप्त करके शुभ कर्म करना प्रारंभ किया। यहाँ पर एक और हम देखते हैं मनमुटाव की, जो मकड़ी के चाल को प्रेम की चाल से सफाई करना, और एक होता है आत्मज्ञान की डिस्टेंपर से जीवन भवन की पुताई करना, दिव्य ज्ञान गंगा के जल से सारा भवन का धुलाई करना और दिव्य गुणों की बंधन वाले द्वार द्वार बंधवाना, पंच तत्व सोने का दीपक ज्ञान घृत से भरना, और होता है भावों की पाती से जो दिल संकल्प की अग्नि जलाना, पवित्रता लक्ष्मी पूजन कर सुख संपन्न बनाना, और शिव ज्ञान दीपक रोशन कर सब अंधकार मिटाना। एक होता है मुरलीधर की ज्ञान मुरलियां सुन और सुनाओ, और निज आत्मा की जो ज्योति है उसे जगाकर सबकी ज्योति को जगा दो। दृष्टिवृत्ति प्रवृत्ति बनाकर धनुक की लाज बचाओ, सुसंस्कारों को परिवर्तन कर उसे परिवर्तन कर क्या करना है, विजय का तिलक लगाना है, और प्रेम से मीठे मधुर वचन की रोज मिठाई खिलाना है। एक होता है दिव्य गुणों को धारण करके सच्चे दीप जो जलाते हैं वही जलाना है, और इस दीपावली को का जो दीप है उसे घर घर जलाना है। अब हम देखते हैं अंत में जब संगम युग की जो शोभा की जो बेला है, तो हमें चाहिए कि हम ज्ञान द्वारा आत्मा का दीप जगाए और नए संस्कारों का खाता खोले। तो यही है सच्ची दीपावली मनाना। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाती भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये है। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल रे अमीरन भाई चल रे फकीरे चल रे अमीरन टक टक टक पक चल रे फकीरे जीबी चक धीरे धीरे बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी मेरे ओ बंदरिया अपने बंदर से झगड़ा।

हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

में रही जाए। आए आए यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

क्या कमाल है। ए तुसी ए तुसी ए तुसी ग्रेट जी, दिल चुरा के चल दिए वाह क्या कमाल है। चोर जैसी हरकतें मोर जैसी चाल है, माल भी चुराए और आंख भी दिखाए। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना हाय हाय। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

चाहते हैं तो जाइए, हाथ न मलिए जनाब, होंठ न चबाइए, बेकदर हो प्यार क्या है तुम न समझ पाए। हाय हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसा।

गार्डन गुलाब है दोनों खिलके, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा तू चमन दिल के। गली उल्फती ये गुल उल्फत का, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच मोटी यार, सच सच आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच।

0: कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो
1: अजी तुम्हारे
0: होठों पे ये शहर के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो।

और नहीं बस।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूम बन के घूम रो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला।

ये है नकली राजकुमार का छोटा है ये दांत, बचे हम तेरा।

0: सुन हर सुन हर सुन सुन सुन सुन सुन हर दिल को साहस का रुझान दिए जा लेता जादुआए आराम दिए जा हर दिल को साहस का रुझान दिए जा लेता जादुआए आराम दिए जा
1: पटाख पटाख पटाख।

दिल कितनी को हम है, खुद को अपना गम है, देखी का कम है, होने से जो है दिल कितनी को हम है, खुद को अपना गम है, देखी का कम है, जब तक तेरे दम में दम है।

वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के चुनता जाए गमों के कांटे। वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के चुनता जाए गमों के कांटे। सारे झूठे दिल अपना के घूम घूम के यूं ही जिए जा, आंखों के आंखों पर जाम लिए जा, जुल्फों के साए में आराम लिए जा। हर दिल को चाह

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन के घर हरिओ मनोहर मोहन के घर हरिओ मनोहर मोहन के घर हरिओ मनोहर

अब तो सदियों के फासले हैं, यकीन होगा किसे के हम तुम इकरार।